0: से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
0: प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड सरकार द्वारा मुक्त व्यापार समझौते की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे तथा उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर 30 जुलाई को मतदान होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजय गोल मिकेल मेरिनो ने 28वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। ये वक्त है कार्यक्रम विवरण का। आइए आपको जानकारी दे दें आज दिनभर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। पहले बता दें आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:20 पर नमस्कार भोपाल कार्यक्रम होगा, जिसमें आज आप सुनेंगे समाचार पत्रों से ली गई मुख्य सुर्खियां, गीत संगीत और नगर में होने वाली गतिविधियां।

0: फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा, इसका प्रसारण होगा सुबह 8:30 बजे। लोक संगीत में 9:15 पर सुनिएगा चंद्रकला साहू के गाए बुंदेली लोकगीत, इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में सुबह 9:30 बजे सुनिएगा देश के प्रख्यात और बहुचर्चित कवि और गीतकार आलोक श्रीवास्तव से शुभम तिवारी की बातचीत। 10:00 बजे सुनिएगा जिले की चिट्ठी। 10:05 पर होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत सागर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में सुबह 10:30 बजे सुनिएगा मालविका कानन का ख्याल गायन। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम होगा शाम 7:21 पर, जिसमें सुनिएगा बुंदेली लोकगीत। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, इसे आप सुन सकते हैं 7:45 पर। ये थे आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले आज दिन भर के कार्यक्रम। अब आइए डालते हैं एक नजर आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे, इसका प्रसारण होगा सुबह 11:00 बजे। 12:00 बजे सुनिएगा आपकी फरमाइश। संग्रहालय से, इस कार्यक्रम में दिन में 12:30 बजे आप सुन सकते हैं धारावाहिक हंसना मना है, इसका भाग 10। दोपहर 1:00 बजे महिला कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति रहेगा। आकाशवाणी रीवा की ही प्रस्तुति में 1:45 पर सुनिएगा सुगम संगीत। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम, साथ ही साथ 1:30 पर लोक संगीत कार्यक्रम होगा। फिल्मी गीतों का आनंद आप उठा सकते हैं दोपहर 2:00 बजे, शाम 5:33, शाम 6:30 बजे, रात 8:15 बजे। दोपहर 2:30 पर कुछ और फिल्मी नगमे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, ये कार्यक्रम होगा आज शाम 6:00 बजे। रात 8:00 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। 9:30 बजे संस्कृति भारती और रात 10:00 बजे संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में डॉक्टर आर माधुरी देवी का कर्नाटक वीणा वादन। ये दोनों ही कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। एक आपको सूचना दे दें, आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 12 जुलाई 2026 को शाम 7:30 बजे से 8:00 बजे के बीच सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसका विषय रहेगा धान की उन्नत उत्पादन तकनीक एवं सामयिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं, वे दिनांक 12 जुलाई 2026 को शाम 7:30 बजे से 8:00 बजे के बीच आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर 2660902 अथवा 2660903 पर फ़ोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फ़ोन नंबर एक बार पुनः सुने, 12 जुलाई 2026 शाम 7:30 बजे से 8:00 बजे के बीच फ़ोन नंबर 2660902 और 2660903, भोपाल का SDT कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता, 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर में करेंगे माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देर रात उज्जैन में सिंहस्थ निर्माण कार्यों का लिया जायजा। और भाजपा ने दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को बनाया प्रत्याशी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े हैं। श्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद ये यात्रा दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और आपने एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। न्यूजीलैंड के लोगों के बीच आकर उनका भारत के प्रति जो स्नेह है, ये देखकर कोई भी व्यक्ति बहुत ही भावुक हो जाता है और मेरे मन को वो छूने वाला है और इसके लिए भी मैं बहुत आपका आभारी हूँ।
0: उन्होंने बताया कि भारत और न्यूजीलैंड ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर में माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ करेंगे। इस आयोजन में प्रदेश भर से करीब 5,000 युवा हिस्सा लेंगे। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा होगी। युवाओं द्वारा तैयार सुझावों से माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 दस्तावेज बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री इस अवसर पर 4 नई राज्य स्तरीय युवा पुरस्कार श्रेणियों की भी घोषणा करेंगे। प्रदेश के जेल विभाग ने बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भोपाल में 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ये प्रशिक्षण गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के सहयोग से हो रहा है। महानिदेशक जेल डॉ. वरुण कपूर ने कहा कि बंदियों का स्वास्थ्य विभाग की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। प्रशिक्षण में प्रदेश भर के जेलों से 30 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। प्रशिक्षित स्टाफ बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य की पहचान और परामर्श कर सकेंगे। विभाग आगे जेलों में साइको सोशल काउंसिलिंग सेंटर भी स्थापित करेगा। प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत तीसरे चरण की लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई। इसमें 7,630 बच्चों को पसंदीदा निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश मिला। इस वर्ष अब तक 1,25,000 से अधिक बच्चों को प्रवेश आवंटन मिल चुका है। अभिभावक आरटी पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चे 20 जुलाई तक आवंटित स्कूलों में प्रवेश ले सकेंगे। प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल सागर जिले के कई गांवों में करीब 80 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मंत्री राजपूत ने कहा कि जैसी नगर अब एक प्रमुख जंक्शन बन चुका है। 65 करोड़ रुपए की लागत से नया मार्ग जैसी नगर को तीनों दिशाओं से जोड़ चुका है। वहीं मसूराहाई रोड बनने से भोपाल जाने की दूरी 25 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई बैठक में प्रदेश की प्रगति साझा की। ये बैठक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की तीसरी मिशन संचालन समूह बैठक थी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में करीब 5.86 करोड़ आभाईडी बनाई जा चुकी है। लगभग 20,000 स्वास्थ्य संस्थान और 18,000 स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री से जुड़ चुके हैं। बैठक में एबीडीएम की प्रगति और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं पर भी चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधान सभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल देर रात दोपहिया वाहन से और पैदल चलकर उज्जैन शहर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने सिंहस्थ महापर्व के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने फ्रीगंज ब्रिज और कोयला फाटक से कंठाल चौराहे तक चल रहे

0: मार्ग चौड़ीकरण का भी अवलोकन किया। इससे पहले कल उन्होंने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की उपस्थिति में नागदा में उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग का भूमि पूजन किया। लगभग 99 किलोमीटर लंबी ये परियोजना 5,017 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन में फूड इंडस्ट्री पार्क बनने से किसानों को लाभ मिलेगा।
1: 1,250 करोड़ की लागत से उज्जैन में पेप्सिको कंपनी का फूड इंडस्ट्री पार्क का हमने भूमि पूजन किया। जब ये बन के तैयार होगा तो 32 जिलों में आने वाले समय में आलू के लिए भी अपनी खेती में आलू लगाना, उज्जैन में आपको वो भाव मिलेगा जो बंबई और आगे के बड़े नगरों में मिलता। जोरदार अभिनंदन करें, ये आय बढ़ाने के काम हमारी सरकार कर रही।
0: समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेकिबाल समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भाजपा ने दतिया विधानसभा उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। टिकट की घोषणा होने के बाद डॉ. नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने ग्वालियर झांसी हाईवे पर लंबा जाम लगाया। नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को नामांकन फॉर्म भी खरीदा था, लेकिन पार्टी ने अंतिम समय में उनका टिकट काट दिया। प्रदेश सरकार ने सत्र 2026 से सभी शासकीय आईटीआई में महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण शुल्क में 25% की छूट देने का फैसला किया है। इससे महिलाओं को प्रथम वर्ष के शुल्क में 1,335 रुपए की बचत होगी। अब प्रथम वर्ष का कुल शुल्क 4,755 रुपए होगा। राज्य मंत्री गौतम टिटवाल ने कहा कि निर्णय बेटियों को तकनीकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेगा। और अब बात मौसम की। प्रदेश में अगले 3 दिन हल्की बारिश का दौर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कहीं भी भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। मौजूदा सिस्टम कमजोर हो रहा है, जिससे 13 जुलाई तक प्रदेश में रिमझिम बारिश होगी। वहीं 14 जुलाई को कुछ जिलों में भारी बारिश का अनुमान है।

लिए प्रोत्साहित करेगा। और अब बात मौसम की। प्रदेश में अगले तीन दिन हल्की बारिश का दौर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कहीं भी भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। मौजूदा सिस्टम कमजोर हो रहा है, जिससे 13 जुलाई तक प्रदेश में रिमझिम बारिश होगी। वहीं 14 जुलाई को कुछ जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में पहला महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। पहले दिन भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 83 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने भी अर्धशतक जड़े। इंग्लैंड की ओर से सोफी एलिक्सटोन ने 3 विकेट लिए। जवाब में इंग्लैंड ने पहले दिन के खेल तक 1 विकेट पर 21 रन बना लिए हैं। प्रदेश के धावक विनोद सिंह ने चीन के ओरदोस में हुई एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। खेल मंत्री ने उन्हें हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश और देश के लिए गर्व का विषय है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजगढ़ कलेक्टर ने 13 जुलाई को आयोजित होने वाली जिला विकास और निगरानी समिति की बैठक की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैतूल कलेक्टर ने कल उप तहसील बोरदेही में आयोजित खंड स्तरीय समीक्षा बैठक में ग्रामीणों से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की। साथ ही एक पेड़ मां के नाम के तहत आम का पौधा भी रोपित किया। डिंडौरी जिले के 50 मत्स्य पालकों ने राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के अवसर पर कल कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सहभागिता की। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के अंतर्गत मंडला जिले के 196 वरिष्ठ नागरिक आज से 16 जुलाई तक कामाख्या शक्तिपीठ तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। पन्ना जिले में बरसात के मौसम में विभिन्न स्थानों पर झरना और जलप्रपात पर अत्यधिक समीप जाने, सेल्फी और फोटो लेने पर प्रतिबंध लगाया है। झाबुआ जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कल कलेक्टर कार्यालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की। आगर मालवा कलेक्टर ने कृषि, सहकारिता, पशुपालन, उद्यानिकी, जल संसाधन आदि विभागों की समीक्षा बैठक में किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित किया। खंडवा जिले में आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर आज से 18 जुलाई तक परिवार नियोजन और मातृ शिशु स्वास्थ्य को लेकर विशेष जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

सभी सुनने वालों को विकास तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के नमस्कार भोपाल में, और आज का ये सफ़र आप तय करेंगे अपने रेडियो मित्र विकास तिवारी के साथ।

बारिश में सड़कों पर पानी भरने से गड्ढे दिखाई नहीं देते, इसलिए वाहन धीरे चलाएं, सीट बेल्ट हेलमेट का उपयोग करें और फिसलन वाली जगहों पर अतिरिक्त सावधानी रखें। बिजली चमकने, बादल गरजने पर खुले मैदान, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, क्योंकि यही मच्छरों के पनपने की सबसे बड़ी वजह बनता है। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए पूरी बाजू के कपड़े पहनें और मच्छर रोधी उपाय अपनाएं। तेज बहाव वाले नदी नाले, जल भराव वाले स्थान पार करने से बचें, क्योंकि गहरे गड्ढे और बिजली के तारों का खतरा रहता है। और हाँ, बारिश का मौसम केवल मौसम नहीं, रिश्तों को भी तरोताजा करने का अवसर है। कभी परिवार के साथ गर्मा गर्म चाय की चुस्कियाँ, कभी दोस्तों के साथ भीगी शामों की बातें, कभी खिड़की से बरसती बूंदों को निहारने का सुकून, यही तो मानसून की असली खूबसूरती है। तो इस रिमझिम मौसम का भरपूर आनंद लीजिए, लेकिन समझदारी और सावधानी के साथ, क्योंकि सुरक्षित रहेंगे तभी बारिश की हर बूंद खुशी बनकर दिल को छू जाएगी।

श्रोताओं, बारिश की पहली फुहार, मिट्टी की सौंधी खुशबू, ठंडी हवाओं का स्पर्श और चाय पकौड़ों का स्वाद, मानसून का मौसम लगभग हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आता है। बच्चे कागज की नाव बहाने को उत्साहित रहते हैं, युवा बारिश में सेल्फी लेने निकल पड़ते हैं और किसान आसमान की ओर उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं। लेकिन जितनी खूबसूरत यह रिमझिम बारिश है, उतना ही जरूरी है कुछ छोटी छोटी सावधानियां बरतना। बारिश का भरपूर आनंद लें, लेकिन भीगने के बाद देर तक गीले कपड़ों में ना रहें। इससे सर्दी, जुकाम और त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। बाहर का खुला पदार्थ, कटे फल खाने से बचें, क्योंकि इस मौसम में बैक्टीरिया और वायरस तेजी से पनपते हैं। घर का ताजा गर्म भोजन ही सबसे सुरक्षित है।

और श्रोताओं, आज के नमस्कार भोपाल में क्या कुछ खास है आइए आपको बता दें। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस दिवस के बारे में हम बातचीत करेंगे जनगणना निदेशक संजीव श्रीवास्तव जी से, और भोपाल के जयप्रकाश चिकित्सालय में पेपरलेस इलाज शुरू हो चुका है इसके बारे में हमें जानकारी देंगे भोपाल के CMHO डॉक्टर मनीष शर्मा। और श्रोताओं, आयुर्वेद से कैसे रहें स्वस्थ, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे खुशीलाल आयुर्वेदिक महाविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुचि दुबे।

और आपकी पसंद के नए पुराने फिल्मी तराने तो होंगे ही, समाचार पत्रों पर होगा हमारा क्रम सुर्खियां। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं समाचार पत्रों की कुछ खास खबरों पर। बिल्डिंग हाउसिंग परमिशन के लिए बिजली हाउसिंग सोसाइटी की एनओसी अब नहीं लगेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने बिल्डिंग परमिशन की प्रक्रिया को और सरल और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब भवन निर्माण की अनुमति के लिए बिजली विभाग, नजूल विभाग और गृह निर्माण सहकारी समितियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं होगी। भोपाल में होगा ज्योतिष विज्ञान सम्मेलन। मैपकास्ट में आयोजन, 18 राज्यों के 400 विद्वान जुटेंगे। भारतीय ज्योतिष आध्यात्म और प्राचीन ज्ञान परंपरा के विभिन्न आयामों पर मंथन के लिए सप्तम 2 दिवसीय कालिदास राष्ट्रीय महर्षि ज्योतिष विज्ञान सम्मेलन का आयोजन शनिवार से मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद सभागार नेहरू नगर में किया जाएगा। सम्मेलन में देश भर के 18 राज्यों के लगभग 400 ज्योतिषाचार्य, शोधकर्ता और विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे। और मध्य प्रदेश पुलिस ने नशे के खिलाफ 15 दिन की मास्टर प्लानिंग तैयार की है। 15 से 30 जुलाई तक चलने वाले नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत प्रदेश के हर जिले, स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार, मॉल, शॉपिंग स्थल, औद्योगिक इकाइयों और जेलों में जागरूकता कार्यक्रम होंगे। और भीषण गर्मी से निपटने के लिए भोपाल नगर निगम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के बीच शुक्रवार को एक MOU हुआ है। इसके तहत सैटेलाइट डेटा और आधुनिक तकनीक से तैयार शहर के सबसे गर्म इलाकों की पहचान कर हीट हॉटस्पॉट की मैपिंग होगी। इसके आधार पर हीट एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। और मैनेट में 13 से 18 जुलाई तक भारत सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप आयोजित होगी। इसमें स्मार्ट ग्रिड, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग सिस्टम के लिए डिजिटल ट्विन्स, डेटा फ्यूजन जैसी नई तकनीकों पर चर्चा होगी। राजधानी की संगीत प्रेमी जनता के लिए 11 जुलाई की शाम खास होने जा रही है। गुंजन फाउंडेशन की ओर से एक संगीतमय शाम का आयोजन किया जा रहा है जो भारतीय सिनेमा की सदाबहार गायिका सुमन कल्याणपुर को समर्पित होगी। इस कार्यक्रम में शहर के जाने माने फनकार सुमन कल्याणपुर के गाए फिल्मी गीतों की कशिश बिखेरेंगे। और कारवा प्रेजेंटेशन द्वारा शहर में एक नाट्य प्रस्तुति का आयोजन किया जा रहा है। लेखक महेश एल कुंचवार द्वारा लिखित और नजीर कुरैशी के निर्देशन में तैयार नाटक आत्मक क्षण का मंचन शनिवार को होगा। शाम 7 बजे से स्मार्ट सिटी रोड स्थित LBT में यह आयोजन किया जाएगा। तो श्रोताओं, इसके साथ ही यहीं समेटते हैं सुर्खियों को और अब वक्त है आपको एक प्यारा सा गीत सुनवाने का। तो लीजिए पेश है ये प्यारा सा नगमा।

0: नमस्कार, मैं हूं अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
1: श्रोताओं, आज पूरी दुनिया में एक साथ विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य केवल बढ़ती जनसंख्या के आंकड़ों पर चर्चा करना नहीं, बल्कि उन चुनौतियों के प्रति भी लोगों को जागरूक करना है जो तेजी से बढ़ती आबादी के कारण सामने आती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव, शिक्षा, रोजगार, खाद्य सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग जैसे मुद्दे जनसंख्या वृद्धि से जुड़े हुए हैं। आज का दिन परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के ऊपर भी ध्यान केंद्रित करता है। इस दिन के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं मध्य प्रदेश के जनगणना निदेशक संजीव श्रीवास्तव से।
2: सर्वप्रथम 1987 में जब विश्व की जनसंख्या 5 अरब हुई थी, तब 5 अरब दिवस मनाया गया था 11 जुलाई 1987 को। इसके पश्चात 2 वर्ष बाद 1989 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको संस्थागत स्वरूप देते हुए विश्व जनसंख्या दिवस मनाया और उसके बाद से प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है।
1: पूरे देश भर में जनगणना हो रही है, मध्य प्रदेश में भी जनगणना का पहला चरण मकानों की गणना के रूप में पूरा हुआ है। तो किस तरह से ये मकानों की गणना हुई और किस तरह की जानकारियाँ इस बार सामने आई हैं?
2: जनगणना जो वर्ष 1921 में होनी थी और कोविड के कारण नहीं हो पाई, उसे 2026 एवं 27 में किया जा रहा है और ये 2 चरणों में की जा रही है। पहला चरण संपन्न हो चुका है जो 1 मई से 30 मई तक हुआ है। इसमें मकानों की गणना की गई है, विभिन्न शहरों और गांवों को ब्लॉक्स में बांटकर उनकी मकानों की गिनती की गई है और मकानों में रहने वाले लोगों की प्रारंभिक जानकारी एकत्रित की गई है। इसके पश्चात द्वितीय चरण जो है वो 9 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा और 9 फरवरी से 28 फरवरी तक जनगणना में विभिन्न प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न अभी तैयार किए जा रहे हैं और संभवतः 2 या 3 माह में ये प्रश्न उपलब्ध कराए जाएंगे जिनके आधार पर जनगणना कराई जाएगी। 28 तारीख की रात और 1 मार्च को सड़कों पर भी जो बेघर व्यक्ति हैं उनकी भी जनगणना की जाएगी। इस बार की जनगणना पिछली बार की जनगणना से जो पृथक है वो 2 बिंदुओं पर है। एक तो हर बार कागज़ पर प्रश्नावली भरी जाती थी और उसको स्कैन करके जानकारी कंप्यूटर के रीडेबल फॉर्म में लाई जाती थी। इस बार हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मोबाइल ऐप पर जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं जो कि सिंक करने पर सीधे हमारे

0: रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सेंसस के जो हैं उनके डेटाबेस में चली जाएगी। तो इस बार मुझे आशा है कि आंकड़े हमें जल्दी प्राप्त हो सकेंगे। और दूसरा जो अंतर का बिंदु है वह है कि इस बार जनगणना में जाति पूछी जाएगी और यह जाति एससी एसटी ओबीसी जनरल सभी की यह जाति पूछी जाएगी, जिसका समावेश जनगणना के प्रश्नों में रहेगा।
1: जो जातिगत जनगणना है वो कब से शुरू होने की संभावना है उसके?
0: यह जातिगत जनगणना भी मूल जनगणना जो होगी फरवरी में, 9 फरवरी में उसी के साथ होगी और उसी प्रश्नावली में इससे संबंधित प्रश्न शामिल किया जाएगा।
1: जो जनगणना हो रही है उसका क्या लाभ सरकार को मिलता है, क्या लाभ आम जनता को मिलता है?
0: देखिए, जनगणना के जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उससे हमें मालूम पड़ता है कि कहाँ शिक्षा के प्रसार में कमी है, कहाँ निरक्षरता की प्रॉब्लम है, कहाँ पर लोगों के पास घर पक्के नहीं हैं या और कोई सुविधा जो उन्हें नहीं प्राप्त हो रही है, इंटरनेट भी उसमें सम्मिलित है। तो ये सब जानकारी जब हमें प्राप्त होती है जनगणना के माध्यम से, तो सरकार इस क्षेत्र में, इस दिशा में नीतियाँ बनाती है कि कैसे ये सुविधाएँ हमारी देश की जनता को उपलब्ध कराई जा सकें। और इस प्रकार हमारी जनगणना हमको बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े देती है जिसके कारण लोगों के जीवन में बदलाव आता है और वो विकास की ओर अग्रसर होते हैं।
1: हमारे सभी सुनने वालों से कोई अपील आप करना चाहेंगे जो आगामी जनगणना का दूसरा चरण होना है उसके लिए?
0: देखिए, हमारे प्रदेशवासियों ने प्रथम चरण में बहुत अच्छा सहयोग दिया हमारे प्रगणकों को और उनको अच्छे से जानकारी उपलब्ध कराई। यही आशा मुझे उनसे दूसरे चरण में भी है कि जब फरवरी में प्रगणक उनके पास आए तो समस्त जानकारियाँ जो पूर्व से बता दी जाएंगी कि क्या क्या प्रश्न पूछे जाने हैं, वो समस्त जानकारियाँ वो तैयार रखें जिससे कि कम समय में और सही जानकारी हमारे प्रगणकों को उपलब्ध हो सके और इसके आगे हमारी जो नीतियों को बनाने के लिए समय पर आंकड़े जारी किए जा सकें।
1: संजीव जी, हमसे बातचीत करने और इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे जनगणना निदेशक संजीव श्रीवास्तव से विश्व जनसंख्या दिवस पर बातचीत। तो श्रोताओं, मध्य प्रदेश में हो रही जनगणना में आप सटीक और सही जानकारी प्रगणकों को दें ताकि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए बेहतर योजना आबादी के हिसाब से तैयार कर सके।

श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट, डीटीएच और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल, और आकाशवाणी भोपाल से इस समय आप विकास तिवारी के साथ सुन रहे हैं सूचना, ज्ञान और मनोरंजन पर केंद्रित कार्यक्रम जिसका नाम है नमस्कार भोपाल। लीजिए समय मिलाइए, इस समय स्टूडियो की घड़ी में 7:42:10 हुए हैं। और श्रोताओं, अब बात स्वास्थ्य की, चिकित्सा की। समय के साथ आधुनिक तकनीकों ने आम आदमी की का जीवन आसान कर दिया है। शारीरिक बीमारी में आपको अस्पतालों में लंबी कतारों में लगने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन इलाज के लिए आप अपना समय बुक कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाने पर ढेर सारे इलाज के पर्चे

0: जांच रिपोर्ट साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पेपरलेस इलाज की शुरुआत कर चुका है। इसमें क्या सुविधाएं मिली हैं, आइए जानते हैं CMHO डॉक्टर मनीष शर्मा से।
1: बिल्कुल, ये माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो एक प्रोग्राम चलता है ABDM, उसके अंतर्गत ये कार्रवाई की जा रही है और पूरे देश भर में कुछ जिलों को मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। इसमें मध्य प्रदेश को, भोपाल को चुना गया है मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में। तो यहाँ पर पेपरलेस ट्रीटमेंट का एक सोच है, इस हिसाब से कार्य किया जा रहा है। और इसमें सबसे पहला काम जो करना है, जितने भी अपने नागरिक हैं भोपाल के, उन सबका हम लोग ABHA ID बनाना है। ABHA ID अगर बोलेंगे तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ये हर किसी को करना है। और फिर वो एक ऐप है, उसको ऐप से वो अपना खोल के देख सकते हैं और उसके ऐप से ही वो अपनी रिपोर्ट और बाकी सब चीज़ें उस ऐप के माध्यम से देखी जाएगी। और ये ABHA ID जो उनकी बनेगी, ये एक अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ पर स्कैन करके उनका OPD पर्चा बन जाएगा और उसी के हिसाब से डॉक्टर देख के उनकी अन्य जाँचें और दवाएँ उपलब्ध कराएगा।
0: क्या जो नई सुविधा शुरू की गई है, इसमें कतारों से मुक्ति मिलेगी मरीजों को?
1: बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, कतारों से मुक्ति मिलेगी कागज़ के साथ साथ। और ये अच्छी बात ये है कि इसमें हम लोग पूरा, जितने प्राइवेट हैं और जितने पब्लिक हैं, सबको एक साथ हम लोग कर रहे हैं।
0: डिजिटल हेल्थ सिस्टम में और किस तरह की नई सुविधाएं शुरू की जा रही हैं मरीजों के लिए?
1: जिसमें जाँचें वगैरह होती है मरीजों की, जो जाँचें की रिपोर्ट वगैरह होती हैं, वो सब उस पर आभा अकाउंट पे अपलोडेड रहेगी। और किसी अन्य डॉक्टर को अगर देखना होगा तो वो मरीज अगर चाहेगा तो उसके कंसेंट से वो उसको देख सकता है। OTP आएगा मरीज के पास में तो उसको देख सकता है, उसकी रिपोर्ट वगैरह। और अगर पुराना पर्चा देखना होगा तो ऐसी सेम तरह से वो भी देख के OTP के माध्यम से वो देख सकता है। तो बिल्कुल एक पेपरलेस तरीका रहेगा, मरीज को कहीं भी अगर जैसे ग्वालियर में रहता है और बीमार पड़ गया दिल्ली में, तो उसको अपने कागज़ लेके जाने की जरूरत नहीं है, केवल अपना ABHA ID बताएगा और उसमें पूरा डिटेल उसका रिकॉर्डेड रहेगा।
0: ABHA ID बनवाने के लिए एक आम व्यक्ति को, एक आम नागरिक को क्या करना होगा?
1: ABHA ID किसी भी अस्पताल में जाएंगे वहाँ बन रहा है, और अपन खुद भी आप ऐप पे डाउनलोड करके आप स्वयं भी बना सकते हैं।
0: इसमें किस तरह के दस्तावेजों की जरूरत होती है?
1: इसमें आपका मोबाइल नंबर चाहिएगा और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर और आधार लगेगा।
0: और ABHA ID बनने के बाद और ये डिजिटल हेल्थ सुविधाएं शुरू होने के बाद किस तरह की आसानी मरीजों को हो जाएगी और किस तरह का लाभ इससे चिकित्सकों को मिलेगा?
1: देखिए, दोनों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। एक तो जैसे बताया, मरीजों को लाइन से वो नहीं लगना पड़ेगा, और दूसरा डॉक्टर के पास भी जाके उनको जब टोकन नंबर जब आएगा तब वो जाके आराम से डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और इसमें डॉक्टर को भी पर्याप्त समय मिलेगा मरीज को परीक्षण करने के लिए और अच्छे से आराम उनका इलाज करने के लिए।
0: और हमारे सभी सुनने वालों से ABHA ID बनवाने के लिए और ये जो पेपरलेस इलाज की सुविधा शुरू हो रही है, इसका लाभ लेने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, मैं सबसे सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ, सबसे निवेदन करते हैं कि जितने भी अपने भोपाल के निवासी हैं वो सभी लोग अपना ABHA ID बनवाएं। ABHA ID बनवाएंगे तो ये अपने जो हम लोग का उद्देश्य है पेपरलेस जाना, उसमें एक कदम वाले सहयोग का होगा।
0: सर, हमसे बातचीत करने और इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू तिवारी जी, थैंक यू।
0: अभी आप सुन रहे थे भोपाल CMHO डॉक्टर मनीष शर्मा से पेपरलेस इलाज के बारे में जानकारी। तो श्रोताओं, यदि अब आपको अस्पताल में दिखाना है चिकित्सक को, तो ऑनलाइन आप इसके लिए टाइम बुक कर सकते हैं। अगर आपके पास जांचों के पर्चे, ABHA ID अगर आपकी बनी हुई तो उसके अंदर ही शामिल रहेंगे, तो आपको पर्चे भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी ज़िंदगी में अब इस सफ़र पर आप बिना कागज़ और बिना उसके आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं।

जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर।

0: और क्या ये कटु तिक्त कषाय रसों का सेवन कर सकते हैं। कटु से अर्थ होता है काली मिर्ची का जो रस होता है ना, मतलब लाल मिर्ची चिरपरा, तिक्त यानी कड़वा, करेला जो जिसमें करेले में जैसा रस होता है, तो ये इनके लिए लाभकारी है। इनके भविष्य में इनमें ओबेसिटी होने की संभावना होती है, इनके लिए इंटेंस वर्कआउट बहुत अच्छा रहता है। कषाय रस ले सकते हैं, हल्का भोजन और मसालों का प्रयोग, सूप ले सकते हैं, मिलेट्स का बहुत चल रहा है, मूंग की दाल, ये सब लिया जा सकता है। इनके लिए अदरक है, शुंठी है, मेथी दाना है, ये बहुत ही अच्छे मतलब की पदार्थ हैं। जैसे कि इस समय बरसात में आप पुदीने का हम लोग सभी शरबत पीते हैं ना, तो अगर वात वाला है तो वो जो पुदीने की चटनी बन रही है या उसमें पुदीना है, धनिया है और आपका पिंड खजूर और द्राक्षा, इसमें काला नमक काली मिर्ची डाल करके थोड़ा अजवाइन डाल के वो ले वात वाला। पित्त वाला इसको ऐसे ही ले बिना अजवाइन के भी लेगा तो बढ़िया रहेगा, मतलब पिंड खजूर, द्राक्षा, पुदीना, धनिया, काला मिर्च और काला नमक। जबकि कफ वाला जो है वो इसमें अदरक को ऐड ऑन कर सकता है इस चटनी में। तो एक ही चटनी है लेकिन डिफरेंट प्रकृति के लोग अपने हिसाब से उसका प्रयोग करें तो लाभ मिलता है। इस तरह से आप प्रकृति जान के आप अपना भोजन और अपने आहार विहार दोनों को और नियंत्रित या पर्सनलाइज्ड कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खुशीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुचि दुबे से बातचीत। तो श्रोताओं, आपकी रसोई में ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। समय समय पर अपनी प्रकृति के अनुसार अपने वात, पित्त और कफ दोषों को दूर करने में आप इनका उपयोग कर सकते हैं और स्वस्थ बने रह सकते हैं।

तो श्रोताओं, आज का नमस्कार भोपाल आपको कैसा लगा हमें बताना ना भूलिएगा। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। सुझाव भेजने के लिए हमारा पता है नमस्कार भोपाल द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र श्यामला हिल्स भोपाल। तो श्रोताओं, इसके साथ ही आज के नमस्कार भोपाल को यहीं समेटने की दीजिए अनुमति। कल फिर एक नई प्रस्तुति के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। थोड़ी देर में समाचार प्रभात आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: हमें बचाना है तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं। अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें। जलाशयों से गाद निकालें। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरे आज नौसेना में शामिल होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की। मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
3: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
5: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। ये मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
3: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
5: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है। मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये।

0: और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
2: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
3: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक जोन है, हमारे आईलैंड टेरिटरीज है और यह जो रीजन है वह आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। इस स्वयं आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका

0: ने ईरान से होर्मुस जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए दो शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं, वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
1: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2,000 रहेंगे, 5,000 रहेंगे, 10,000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
3: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थीं। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायार मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेस्सी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर।

0: States, a Tribune. And finally, the Statesman cites a major milestone for breed conservation and preservation of two Himalayan Gaddi dogs who are integral to the culture and pastoral heritage of the Western Himalayas, getting official Kennel Club recognition. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and New Zealand signed 5 MOUs in key areas including defence, disaster management and animal husbandry to boost economic and strategic cooperation. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon in Auckland, says India and New Zealand can play important role in strengthening peace and security in Indo-Pacific region. Indian Navy to commission indigenous stealth frigate Mahendragiri in Vishakhapatnam today. Home Minister Amit Shah reviews progress in rollout of Bureau of Port Security, directs stronger coastal security measures. In FIFA World Cup, Spain books spot in semi-finals, defeating Belgium 2-1. Norway to face England in third quarter-final tonight. And in Wimbledon tennis, Czechia Karolina Muchová to face compatriot Linda Noskova in women's singles final today. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरमई सवेरा। नमस्कार दोस्तों, सुरमई सवेरा में अब से लेकर 9:15 तक आपके साथ हूं मैं छाया पाठक। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सुरमई सवेरा यानी सुरों से भरा हुआ सवेरा, सुर अर्थात संगीत, ऐसा संगीत जो मन को सुकून दे, शांति दे, निराश मन को एक नई ऊर्जा, नए उत्साह से भर दे। थोड़ा सा सुकून हो, थोड़ा सा संगीत हो और बहुत सारा अपनापन हो, इसी एहसास के साथ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारे गीत और बहुत सारी बातें। इस नई सी हल्की सी ठंडी हवा के साथ आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। मित्रों, हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, कुछ नया सीखने का, कुछ बेहतर करने का। हम चाहते हैं कि आज का दिन आप सभी के लिए सुकून और सफलता भरा हो। चाय की खुशबू हो या रास्ते की हलचल, हम हर पल आपके साथ रहेंगे।

मित्रों, ज़िंदगी आसान नहीं होती, लेकिन यही तो इसकी खूबसूरती है। कभी दुख, कभी सुख, कभी खुशी, कभी निराशा। हमें ये याद रखना होगा कि हर संघर्ष हमें कुछ ना कुछ सिखा जाता है, हर गिरावट हमें मजबूत बनाती है पहले से ज़्यादा। संघर्ष ही हमें ये बताती है कि हम सफलता की ओर अग्रसर हैं। निराशा ही हमें आशा की ओर बढ़ने के लिए संकेत करती है। अगर आज हमारा मन थोड़ा भारी है तो क्या हुआ, ये हमें याद रखना होगा कि ये दिन भी गुजर जाएगा, हमारी मेहनत रंग लाएगी, बस हमें खुद पर भरोसा रखना है।

श्रोताओं, आज की इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम अक्सर प्रकृति को भूल जाते हैं। प्रकृति यानी पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, खुला आसमां, खुली हवा हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। और हाँ, ये अनमोल भी है। आज हमने इन्हें नहीं संभाला तो आने वाला कल हमारे लिए बहुत मुश्किल भरा हो सकता है। हमारी छोटी छोटी आदतें जैसे पानी बचाना, पौधा लगाना, पौधे की देखभाल करना, पौधों को कटने से बचाना आदि ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी भोपाल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरमई सवेरा। हम उम्मीद करते हैं कि आपका भी सवेरा ये सुरमई होगा। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, शिक्षा जीवन की वह रोशनी है जो अंधेरे रास्तों को भी आसान बना देती है। ये हमें केवल किताबें नहीं बल्कि कुछ सोचने समझने की दिशा भी सिखाती है। हर शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है और हर विद्यार्थी एक असीम संभावना। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन ये भी जान लीजिए कि हमारा लिया हुआ ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे किसी भी चीज़ का ज्ञान हो। और यदि ये ज्ञान, ये शिक्षा खेल से संबंधित हो तो फिर तो सोने पर सुहागा, क्योंकि खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। यह न केवल शारीरिक रूप से हमें फिट पर रखते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी हमें मजबूत बनाते हैं। खेल ही हैं जो हमें अनुशासन और टीमवर्क जैसे गुण सिखाते हैं। नियमित रूप से खेल खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। खेलने से हमारे अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ता है और जो हमारा दिन भर का तनाव है वो भी कम होता है। बहुत से खेल होते हैं जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी। ये सब खेल हमें मिलजुल कर खेलने, एक दूसरे का सहयोग करने की भावना भी सिखाते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अगर आप इस समय गाड़ी चला रहे हैं तो सड़क पर पूरा ध्यान दीजिए। सुरक्षित ड्राइविंग आप और आपके अपनों को सुरक्षित रखती है। तेज़ी मंजिल नहीं दिलाती बल्कि सावधानी दिलाती है। हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित और सुकून भरा सफ़र करें। सीट बेल्ट, हेलमेट, ट्रैफिक सिग्नल, इन सब नियमों का पालन करें। संगीत का आनंद लें लेकिन ट्रैफिक नियमों का पालन ज़रूर करते रहें। हम हैं आपके साथ हर रास्ते पर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल उज्जैन शहर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने सिंहस्थ महापर्व के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने फ्रीगंज ब्रिज और कोयला फाटक से कंठाल चौराहे तक चल रहे मार्ग चौड़ीकरण कार्य का अवलोकन भी किया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई बैठक में प्रदेश की प्रगति साझा की। ये बैठक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की तीसरी मिशन संचालन समूह बैठक थी। प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल सागर जिले के कई गांवों में करीब 80 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मंत्री राजपूत ने कहा कि जैसी नगर अब एक प्रमुख जंक्शन बन चुका है। प्रदेश के जेल विभाग ने बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भोपाल में 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ये प्रशिक्षण गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के सहयोग से हो रहा है। प्रशिक्षण में प्रदेश भर की जेलों से 30 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। प्रदेश में अगले 3 दिन हल्की बारिश का दौर रहेगा। मौसम विभाग के कहीं भी भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। और प्रदेश के धावक विनोद सिंह ने चीन के ओरदोस में हुई एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

कार्यक्रम सुरमई सवेरा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। श्रोताओं, संगीत केवल धुन नहीं होता, यह होता है एहसासों की भाषा। ये कभी खुशी बनकर मुस्कान देता है तो कभी उदासी में हमारा सहारा बन जाता है। हर गीत की अपनी एक कहानी होती है जो सीधे हमारे दिलों तक पहुंचती है। तो अपने मन को थोड़ा हल्का कीजिए, यादों को खुलकर महसूस कीजिए और तैयार हो जाइए इस खूबसूरत से गीत के लिए।

प्रतिष्ठा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी।

0: वो भी ऐप से। वाह, फसा।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आज यानी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य केवल बढ़ती जनसंख्या के आंकड़ों पर चर्चा करना नहीं, बल्कि उन चुनौतियों के प्रति लोगों को जागरूक करना भी है जो तेजी से बढ़ती आबादी के कारण हमारे सामने आती हैं। इस दिवस की शुरुआत उस समय हुई जब दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही थी और ये महसूस किया गया कि इस विषय पर यदि वैश्विक स्तर पर चर्चा नहीं की गई, लोगों में जागरूकता नहीं फैलाई गई, तो ये दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी। आज ये दिन परिवार नियोजन, महिलाओं के स्वास्थ्य, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने जैसे विषयों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कराता है। विशेषज्ञों का क्योंकि मानना यह है कि केवल जनसंख्या ही संख्या नहीं, बल्कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक हम अपने स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, रोजगार पर, हमारे आसपास के पर्यावरण पर, हमारी खाद्य सुरक्षा पर और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करना नहीं सीखेंगे, तब तक हमारी ये जनसंख्या समस्या यूं ही बरकरार रहेगी।

मित्रों याद रखें, जिंदगी में रुकावटें नहीं होती बल्कि हमारे हौसलों की परीक्षा लेती हैं वे। अगर आज हम थोड़ा थक गए हैं तो याद रखें हम अकेले नहीं हैं। हमारी छोटी छोटी कोशिशें ही हमारे जीवन में बड़े बदलाव की शुरुआत बनती हैं। थोड़ा सा समय, थोड़ी सी संवेदना किसी की दुनिया में बदलाव ला सकती है। इसी भावना के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत।

श्रेया घोषाल और विनोद राठौर की आवाज़ में गाए मुन्ना भाई MBBS फिल्म के इस गाने के साथ ही कार्यक्रम सुरमई सवेरा यहीं समाप्त करने की छाया पाठक को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं चंद्रकला साहू के गाए बुंदेली लोकगीत। पहले सुनते हैं देवी।

0: लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे चंद्रकला साहू के गाए बुंदेली लोकगीत। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सुबह के 9:30 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम इनसे मिलिए। इनसे मिलिए में आज हम आपको सुनवा रहे हैं देश के प्रख्यात और बहुचर्चित कवि और गीतकार आलोक श्रीवास्तव से शुभम तिवारी की बातचीत।
1: श्रोताओं, बड़े हर्ष की बात है और हमारा सौभाग्य है कि आज आकाशवाणी भोपाल के स्टूडियोज में देश के यशस्वी और बहुचर्चित कवि और गीतकार श्री आलोक श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। आप कविताओं को ना केवल लिखते हैं, ना केवल उसे प्रस्तुत करते हैं, बल्कि उन्हें जीते भी हैं। आपकी कविताओं में हमें कई तरह की अर्थ छवियाँ देखने को मिलती हैं और ये छवियाँ ही हैं जो बरसों से हम पाठकों के, हम श्रोताओं के भाव जगत को सजाती संवारती रही हैं। तो आज अपनी यशस्वी कलम के साथ आलोक जी हमारे साथ हैं। हमारे राम जो गीत है, जो बड़ा चर्चित रहा पिछले कुछ वर्षों में, वो आपकी लेखनी से ही आया है। साथ ही शिव तांडव स्तोत्रम भी आपकी लेखनी से आया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं उन पर जाऊंगा तो ये पूरा साक्षात्कार ही ऐसा निकल जाएगा। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी भोपाल का विशेष तौर से, और मेरे लिए ये बहुत ही जज्बाती क्षण है कि अपनी रचना यात्रा का आरंभ
1: जी
2: आज से 35 साल पहले मुझे रोमांचित करता था। मुझे याद है कि मैं विदिशा से आकाशवाणी भोपाल आता था और यहाँ के कविता पाठ में, यहाँ की गोष्ठियों में, कवियों की उसमें शामिल होता था। तो आज जब जैसे ही मैं इस भवन में आया
1: जी,
2: एक बहुत चिरपरिचित गंध ने मुझको रोमांचित किया। और एक कहते ना कि जैसे बहुत सारी स्मृतियाँ, बहुत सारे चेहरे आपके सामने से गुजरने लगे। हाँ, ये शायद इसलिए और अधिक है, ये भावना, ये जज्बात इसलिए और अधिक है कि जब आप कुछ बन जाते हैं तो दुनिया आपके साथ होती है
1: जी,
2: लेकिन जब आप कुछ नहीं होते, उस वक्त जो लोग आपके साथ होते हैं उनमें से एक आकाशवाणी भोपाल भी है।
1: क्या बात है।
2: तो मैं उसका शुक्रगुजार हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ कि देखिए, टीयर्स इन माय आईज, कि इतने सम्मान से, इतने स्नेह से आपने मुझे याद किया और इस कारण मैं इन लम्हात को, इन जज्बात को जी सका जो लगभग जिसको 30 वर्ष से अधिक हो गए।
1: बिल्कुल, आपकी जो भावनाएं हैं हम उनकी कद्र करते हैं और हमारे श्रोता भी आपकी भावनाओं से भाव विभोर हो गए होंगे आपकी ही तरह। आकाशवाणी भोपाल से जुड़े आपके विशेष संस्मरण रहे हैं, अभी आप थोड़ी देर पहले जब माइक ऑन नहीं था तब आप चर्चा कर रहे थे आपकी लेखनी की, जो आकाशवाणी भोपाल उसमें कहीं ना कहीं माध्यम बना है, थोड़ा सा उस बारे में बताएं।
2: मेरा बचपन विदिशा में गुजरा है
1: जी।
2: उस समय जो सशक्त माध्यम होते थे उनमें आकाशवाणी महत्वपूर्ण किरदार अदा करता था। आकाशवाणी पर आना, अपनी आवाज़ को सुनना, ये था कि जब हम लौट के विदिशा जाते थे तो हमें याद है कि अखबार में खबर तक छपती थी कि आज आकाशवाणी से प्रसारित होगा नगर के युवा कवि आलोक श्रीवास्तव का काव्य पाठ। तो
1: एक बड़ा रोमांचकारी।
2: हाँ, तो मैंने बताया ना कि वो एक बड़ा जज्बाती लम्हा होता है आपके लिए, और जो सचमुच अपने अंदर तक अपनी जड़ों को महसूस करते हैं वो जब ऐसी जगहों पर आते हैं तो भावुक होते हैं। और चूंकि मैं अपने बड़े भाई, जो हमारे प्रदेश के, हमारे सूबे के ख्यात गीतकार थे आनंद श्रीवास्तव सहर, उनके साथ भी आया करता था, तो वो इसमें

0: स्मृतियाँ भी ताज़ा हो रही हैं, मधुब जी की स्मृतियाँ ताज़ा हो रही हैं जो हमको यहाँ बुलाया करते थे। ये बिल्कुल वैसा है कि यात्रा पर निकला हुआ कोई बालक एक लंबे अरसे के बाद अपनी माँ की गोद में आकर बैठे,
1: बिल्कुल
0: तो यात्रा की सारी थकान दूर होती लगती है।
1: बिल्कुल। अब जो संवेदनशीलता मुझे आपकी आंखों में दिखाई दे रही है, वो एक कवि की संवेदनशीलता को चरितार्थ कर रही है।
0: जी
1: आपके रचनाक्रम पर थोड़ा सा आते हैं। आलोक जी, आपका नाम ही आलोक है, और ऐसा कहा जाता है कि जो कवि होता है वो ताउम्र प्रकाश की ही साधना करता है।
0: क्या बात है।
1: तो जो आपकी रचनाएं होती हैं, क्या उसमें भी जो केंद्रीय विषय होता है वो ये उजाले और अंधेरे के बीच में एक जो द्वंद्व होता है, क्या यही केंद्रीय विषय आप जनरली रखा करते हैं?
0: अगर आप इसको उजाले को संवेदना से जोड़ दें तो और बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कारण ऐसा है कि मैं पेशे से तो पत्रकार हूँ और पैशन से पोएट हूँ। एक सवाल जो मेरे सामने हमेशा आता है कि जैसे आपने अभी द्वंद्व की बात की, तो एक द्वंद्व होता है, एक सवाल आता है सामने कि आप पत्रकार हैं और आप कवि भी हैं, तो इन दोनों में द्वंद्व नहीं होता। तो मैं इसका उत्तर ऐसे देता हूँ कि द्वंद्व जो है वो ऐसी चीज़ों में होता है, ऐसे पेशों में होता है जो प्रतिस्पर्धा रखते हों। मुझे लगता है कि एक कवि और एक पत्रकार दोनों रूप से अगर आप बहुत अच्छी दृष्टि नहीं रखते हैं, आप बेदारी नहीं रखते अपने आसपास के समय समाज की, तो आप ना तो बहुत अच्छे पत्रकार हो सकते हैं ना बहुत अच्छे रचनाकार हो सकते हैं। रही बात जो आपने उजाले अंधेरे की बात की, उसमें मैं समझता हूँ कि संवेदना जो है ना वो किसी भी कलाकार के लिए उसके सृजन का पहला और अंतिम प्राण तत्व है। अगर वो संवेदनात्मक दृष्टि नहीं रखता होगा तो वो कहीं ना कहीं चूकेगा, क्योंकि जिस संवेदना से आप समाज को समय को देखते हैं वही तो आपको विवेक दिया है ना,
1: जी
0: सृष्टि ने आपको रचनाकार बनाया। रचनाकार बनाया, रचनाकार हम परमपिता परमात्मा के लिए कहते हैं, तो इतना बड़ा डेजिग्नेशन जब परमात्मा ने आपको दिया है रचनाकार का, तो आपके अंदर संवेदना भी होनी चाहिए। और एक बात जो मैं यहाँ कोट करूँगा, मेरी माँ हमेशा कहती थी, वो ये कहती थी कि अपने अंदर का जो बालक है उसे कभी नहीं मरने देना। समझदार हो अच्छी बात है, पर वो जो बालक से उनका आशय था, तो मैं बहुत बाद में समझा कि वो ऐसा क्यों कहती थी, क्योंकि जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है, वो बहुत संवेदनशील होता है, तो उनका अर्थ बालक से संवेदनशीलता को जोड़ते हुए था
1: बिल्कुल
0: कि अपने अंदर का जो बच्चा है वो मत मरने देना, वरना तुम्हारी दृष्टि
1: बिल्कुल
0: वो
1: क्षीण
0: हो
1: हो
0: जाएगी,
1: जाएगी।
0: क्षीण हो
1: जी
0: जाएगी। तो मुझे द्वंद्व से कहीं अधिक ये लगता है कि मेरे अंदर वो सेंसिटिविटी हो जो संवेदना मेरे समय और मेरे समाज को देखने की दृष्टि संपन्न करती है। तो मुझे द्वंद्व नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि समाज में जितना भी अंधेरा है उसे मैं अपनी रचनाओं के आलोक से पाट दूं, इसीलिए मैं हर क्षण को जीता हूं। आपने महसूस किया होगा कि जैसे ही मैं इस कमरे में आया तो मेरे भाव
1: भावुक
0: परिवर्तित
1: हो
0: हो
1: गए।
0: रहा।
1: जी
0: तो ये जो जीने की जो वो है ना, अगर मैं उस लम्हे को नहीं जीता तो शायद मैं भावुक नहीं होता।
1: बिल्कुल
0: तो इसीलिए एक रचनाकार के तौर पे मैं संवेदनाओं को ओढ़ता बिछाता हूँ, और मेरा ऐसा अखंड विश्वास है कि जो संवेदनशील व्यक्ति होता है उसके अंदर चीज़ों को जल्दी समझ के और सुधारने की
1: क्षमता होती है।
0: क्षमता होती है,
1: जी
0: ऐसा मेरा मानना है।
1: आलोक जी, हर कवि का अपना एक आदर्श होता है, और उस आदर्श का वो अनुगमन करके, उसका अनुकरण करके धीरे धीरे अपने स्वधर्म को पहचानता है, अपनी मौलिकता को पहचानता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके आदर्श कौन रहे हैं जिससे जो धीरे धीरे आपको पहचान मिली है वो आगे बढ़ती गई है?
0: देखिए, मेरे साथ सबसे अच्छा जो, जैसा मैं समझता हूँ और मुझे लगता है कि ये भोपाल, विदिशा और इस अंचल से जुड़े हुए हर रचनाकार की विशेषता है। इस अंचल की एक बहुत ही बड़ी खूबसूरती है और वो है हिंदी उर्दू का मिला जुला परिवेश, जिसको उर्दू में हम मुश्तरका तहजीब कहते हैं या गंगा जमनी
1: तहजीब
0: तहजीब
1: कहते
0: कहते
1: हैं। जी
0: हैं। आप देखिए यहाँ के लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका एक्सेंट देखिए,
1: बिल्कुल
0: मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट जो दूसरे प्रांतों में जिस तरह बोला जाता है, कोई ना कोई उसमें

0: अवरोह होता है। हमारे मध्य प्रदेश में जो उच्चारण है, जो बोलने की शैली है, वो कितनी साफ सुथरी है। हाँ, मालवा के कोई व्यक्ति मिलेंगे आप तो आप कह देंगे कि आप इंदौर उज्जैन के हैं क्या। भोपाल का जो टिपिकल भोपाल का एक्सेंट है उससे भी आप पकड़ लेते हैं, पर अगर आप मोटा मोटी देखें एक मानक के तौर पर, तो हमारे यहाँ हिंदी और उर्दू बहुत साफ बोली जाती है
1: जी।
0: तो जब मेरा, जिसको मैं कहूँगा कि मेरी बुनावट हो रही थी, जब मैं बन रहा था अपने अंदर, मेरे अंदर कवि जन्म ले रहा था, ये मेरी खुशकिस्मती है, मैं हमेशा कहता हूँ, कि मुझे ऐसे लोगों को पढ़ने का मौका मिला कि जिनको बचपन में मैंने जब पढ़ा
1: जी,
0: और जब मैं बड़ा हुआ और कवि बना तो फिर उनके साथ पढ़ा, फिर चाहे वो डॉक्टर बशीर बद्र साहब हों, निदा फाजली साहब हों, जावेद अख्तर साहब हों, गुलजार साहब हों, तो ये ऐसे नाम थे, हिंदी बेल्ट के नीरज जी हों,
1: दुष्यंत जी,
0: दुष्यंत तो बहुत, दुष्यंत जी के तो को तो मैं बहुत ही प्रणम्य भाव से निवेदन करता हूँ। दुष्यंत जी की पुण्यतिथि और मेरा जन्मदिन एक ही दिन है, 30 दिसंबर को, तो इसे भी मैं अपना लगता है कि कोई हिंदी गजल का कोई लिंक जुड़ा हुआ है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: ये जो हिंदी उर्दू के बड़े शिखर पुरुष रहे, जो मेरे, मैं जब पोएट्री के तौर से या कवि के तौर से जब मैं आंखें खोल रहा था, तो जो मुझे लेजेंड्स दिखते थे, कोई 10 या 15 बरस बाद मैं फिर उनके साथ बैठा हुआ देख रहा था खुद को, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे अच्छे बड़े लोगों की सोहबत का, शहद चखने का मौका मिला, जिससे मेरी ज़बान और मेरा डिक्शन मीठा हुआ। तो मेरा शेर भी है कि असर बुज़ुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है, पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है।
1: क्या बात है। बात को आगे बढ़ाते हैं आलोक जी, और जानना चाहेंगे, थोड़ी सी बात करना चाहेंगे जो नवोदित पाठक हैं या नवोदित लेखक हैं उनके बारे में। हम यहाँ पर एक तरीके से दो वर्ग देखते हैं। एक वर्ग तो ऐसा है जो बहुत अच्छा पढ़ रहा है और पुस्तक मेलों में हमें भीड़ दिख रही है कि पुस्तक की जो पठनीयता है वो बढ़ रही है, लेकिन एक दूसरा वर्ग है जहाँ पर हम देखते हैं कि पठनीयता का संकट थोड़ा सा गहराता जा रहा है और बिना पढ़े या बहुत कम पढ़ लिख कर लोग लिखने में आ जाते हैं और फिर उसी लेखन को, वो जो थोड़ा बहुत उन्होंने लिखा है, उसी को सर्वमान्य करना चाहते हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं और क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों से?
0: देखिए, शास्त्रीय संगीत हमारे भारत की जो कला परंपरा है उसका प्राण तत्व है। शास्त्रीय संगीत एक कठोर साधना मांगता है। आप बहैसियत गायक पहचाने जाएं ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप बहैसियत प्रतिष्ठित गायक पहचाने जाएं या प्रतिष्ठित शास्त्रीय गायक पहचाने जाएं, इसके लिए आपको रियाज की ज़रूरत है। मैं साहित्य को, चाहे वो हिंदी हो या उर्दू हो, मैं शास्त्रीय संगीत की तरह मानता हूँ। आप जितना पढ़ेंगे उतना ही अच्छा गढ़ेंगे। और मुझसे बहुत पहले डॉक्टर बशीरबद्र साहब ने एक बात कही थी कि 95% पढ़ो और 5% गढ़ो।
1: क्या बात है?
0: अब हो उल्टा रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो दूसरी कौम आई है अभी जो रील लाइफ से आई है, तो देखिए क्या है, जो रील लाइफ है वो कितने ही मिलियंस में तकसीम हो जाए वो रियल लाइफ का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि रियल लाइफ जो है वो मानवीय संवेदनाओं, अनुभवों से जुड़ी हुई है। आप रियल लाइफ में मिलियंस और बिलियंस की रीच तो पा लेंगे, लेकिन जो दिलों को छू के बैठ जाने का जो एक आर्ट है ना, उसे आप अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके लिए तो आपको, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, पहले बताया आपको, कि आपके अंदर एक अच्छी दृष्टि होनी चाहिए, आपका, आपके समय में क्या लिखा जा रहा है, ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। राइटिंग एक पैशन है,
1: बिल्कुल,
0: वो आप उसको सतही छू के नहीं गुजर सकते। यहाँ चलो जा रहे न्यू मार्केट चाय पीने, तो थोड़ा सा यहाँ भी टहल लेते हैं रविंद्र भवन में क्या हो रहा है। नहीं, रविंद्र भवन में अगर कोई शास्त्रीय संगीत या कोई बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यिक कार्यक्रम हो रहा है, तो उसको आपको अलग से बैठ के देखना, सुनना पड़ेगा। पुस्तक और अध्ययन और साहित्य वही है कि अगर आप

0: अच्छा पढ़ेंगे नहीं
1: जी
0: तो अच्छा गढ़ेंगे नहीं, फिर आप वैसे ही गढ़ेंगे कि आएंगे एक रील बनाएंगे वायरल हो जाएगी, आप जैसे ही कुछ लोग होंगे जो आपको प्रसिद्धि दे देंगे,
1: बिल्कुल।
0: आप आत्ममुग्ध होकर निकल जाएंगे।
1: ये जो आत्ममुग्धता की आपने बात की, इससे एक कदम आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक समस्या और देखने को मिलती है नवोदित लेखकों में। अभी पिछले दिनों आकाशवाणी स्टूडियोज़ में ही प्रसिद्ध व्यंग्यकार पद्मश्री डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी आए हुए थे और श्रीलाल शुक्ल जी पर हम उनके साथ एक भेंट
0: चर्चा
1: वार्ता
0: कर
1: कर
0: रहे
1: रहे
0: थे।
1: थे। तो जब उनसे हमने निवेदन किया कि श्रीलाल जी के संस्मरणों को साझा करें, तो उन्होंने एक बात कही जो श्रीलाल जी इनको बता रहे थे शिक्षा स्वरूप। और श्रीलाल जी ये कह रहे थे कि मैंने अपने 10 साल जो हैं वो राग दरबारी के नशे में ख़राब कर दिए, उसके सुरूर में ख़राब कर दिए कि मैं इतना उससे बंधा रहता था कि उससे बाहर ही नहीं निकल पाया। और 10 साल बाद मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने अपना रचना धर्मिता का समय ख़राब कर दिया। यही स्थिति आपको भी देखने को मिलती होगी आपके आसपास के ऐसे लेखकों में जो जिन्होंने नई नई सफलता का स्वाद चखा है, उनके बारे में क्या कहेंगे?
0: नहीं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मैं अपने अनुभव बताऊँगा कि एक तो मैं सबसे पहले तो श्रीलाल शुक्ल जी ने जो ज्ञान जी से कहा बिल्कुल सही कहा, हमने चर्चा के शुरू में रचनाकार शब्द इस्तेमाल किया था, ठीक है। रचनाकार क्या करता है? उसका कार्य है सतत क्रिएट करते रहना। परमात्मा अगर अपनी अपना सृजन रोक देगा तो सृष्टि का चलना ही मुश्किल हो जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: मैं बहुत आस्थावान हूँ इन मामलों में, मैं एक डिवाइन रूल को फॉलो करता हूँ, मानता हूँ। रचनाकार अगर अपनी एक रचना पर अड़के रह जाएगा,
1: जी
0: टिक के रहे, मैंने तो साहब ये शिव तांडव स्तोत्र जो है इसका भावानुवाद ऐसा कर दिया है कि बस नहीं, अभी रुद्राष्टकम रखा हुआ है, करो ठीक है।
1: बिल्कुल
0: उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्रम रखा हुआ, करो। उसके बाद दूसरे मंत्र हैं जो बहुत सहज हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे तो युवाओं को समझ आएंगे और उनको उसका अर्थ पता चलेगा तो वो शायद और गहरे जुड़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो क्रिएटिव व्यक्ति जो होता है वो सतत प्रवाहमान होता है। और दूसरी बात कि अगर आप क्रिएटिव हैं, आपको क्रिएशन का भूत सवार है, तो आप कैसे टिक सकते हैं? बिल्कुल, वो उन्होंने वो हमारे क्लासिक हैं, हमारे अग्रज हैं, वो सही कह रहे हैं, मैं उनकी उनसे पूर्णतः सहमत हूँ। आप ये सोचो कि आपने जो आज क्रिएट किया है उससे बेटर आप क्या कर सकते हो,
1: बिल्कुल
0: अपने ही रूल्स तोड़ो। मैं आपको बताऊं, मेरी माताश्री जो थी वो मेरी मेरे कवित्व की बहुत बड़ी प्रेरणा थी। प्रेरणा क्या थी? उन्हीं के कारण मैं कवि बना। जब उनकी मृत्यु हुई 1997 में, मैं डिप्रेशन में आ गया
1: अच्छा
0: और लगभग इसी भोपाल में रहता था, तो 3 साल तक मैंने कुछ नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा मैंने। तो मेरे एक संगीतकार मित्र हैं, मैं हमेशा कोट करता हूँ उनको, मिलिंद जोशी,
1: अच्छा
0: मराठी सिनेमा के बहुत बड़ा हस्ताक्षर हैं
1: जी
0: और बहुत प्रतिष्ठित नाम है। उन्होंने मुझसे कहा कि जब तुमसे कुछ क्रिएट ना हो तो तुम रिक्रिएट करो, जो तुमने क्रिएट कर रखा है उसी को देखो,
1: क्या बात
0: उसकी आलोचना करो खुद,
1: है।
0: उसकी विवेचना करो, उसकी समीक्षा करो और फिर उसे नया करो। तो आप मेरी किताबें जो हैं, आमीन हैं या आसान हैं या आफरीन हैं, इन किताबों को या मेरी रचनाओं को देखेंगे तो जो रचना मेरी 1997 में प्रकाशित है वो आपको अब वैसी नहीं मिलेगी। उसमें एक दो शेर कोई नया जुड़ा होगा, कोई पुराने शेर की रिपेयरिंग हो चुकी होगी,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि मनुष्य अपने आप में भी परिष्कृत होता है ना।
1: बिल्कुल
0: आयु बढ़ती है तो आपका वेट भी बढ़ता है, वेट घटता भी है, चेहरा भी बदलता है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: नदी हर
0: जब
1: क्षण बदलती है,
0: न
1: नदी हर क्षण
0: नदी
1: बदलती
0: हर हर क्षण बदलती है, क्या होता है कि बदलाव जो आपके अंदर है, जब वो आपके अंदर शारीरिक रूप से आ रहा है तो वो मानसिक रूप से भी आएगा,
1: बिल्कुल।
0: वो संवेदनात्मक रूप से। कल मुझे इस शीशे के उस तरफ देखने की मेरी दृष्टि अलग थी, आज मैं 25 साल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रहा हूँ,
1: बिल्कुल
0: प्रतिष्ठित चैनल में रह चुका हूँ,
1: जी
0: तो अब मेरी दृष्टि है, कंसोल है, वो बैठे हैं, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये है। तो वो जो अनुभव है जीवन का, जिसको हम जीवन अनुभव कहते हैं, वो रचना में भी जुड़ता है, तो वो परिष्कृत करता रहता है आपको। रुकना तो नियति है ही नहीं ना, मतलब आप रुकने का कर्म तो आपको करना नहीं है, मनुष्य नहीं रुकता, हम ही चलते रहते हैं, उम्र बढ़ती रहती है। गुलजार साहब का बड़ा अच्छा शेर है इस पर,
1: जी
0: वो उम्र कम कर रहा था मेरी, वो उम्र कम कर रहा था मेरी, मैं साल अपने बढ़ा रहा
1: क्या बात है, क्या बात है। श्रीलाल जी ने भी कहा है ना कि आदमी को समय के साथ बड़ा होना चाहिए, बूढ़ा नहीं।

0: हाँ बिल्कुल।
1: आपके रचनाक्रम पर एक बार फिर लौटते हैं और एक
0: तो अभी तक
1: सवाल,
0: क्या कर
1: और
0: रहे
1: एक अभी तक हम नवोदित
0: थे?
1: लेखकों के बारे में थोड़ा सा जानना
0: चलिए
1: चाह रहे थे आप,
0: ठीक है
1: थोड़ा सा आपकी कविताओं में थोड़ी सी बारीकियों पर बात करना चाह रहे हैं। कुछ कविताएं जो हैं वो जो रची जाती हैं उसमें एक रसिक हृदय होता है, और कुछ कविताएं जो हैं वो तात्कालिक सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर रची जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी रचा जाता है या जो भी कवि रचनाकर्म करता है उसके अपने कुछ उपकरण होते हैं। आपकी कविता में आप किस प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं?
0: मैं विषय को पहले देखता हूँ, और सबसे पहले तो ये कि मैं दो तरह की रचनाएं करता हूँ। देखिए,
1: जी
0: मेरा पेशा जो है वो फिल्म राइटिंग भी है ना, मैं लिरिसिस्ट भी हूँ और एक मैं पोएट भी हूँ। तो अब उपकरण मेरे लिए क्या है कि अगर मुझे कोई गज़ल कहनी है अपने लिए, और या फिर मुझे कोई ऐसी ऐसा गीत या ऐसी नज़्म कहनी है जिसका कोई असाइनमेंट नहीं है, तो उसमें तो फिर वो मैं उस जॉनर में जाऊं, सोचूं, कोई चीज़ मुझे मुतासिर करे, प्रभावित करे, आपसे मिलना मुझे अच्छा लगा, हो सकता है एक आध शेर मैं आपके लिए कह लूं, इस पर तो मेरा अधिकार है। ये तो मैं इसको आने आने देता हूं, इसको मैं बहुत फोर्स नहीं करता। तो आप ये कहिए कि इसमें मेरा जो उपकरण है वो संवेदना है। आपने मुझे कितने अच्छे से छुआ, कितने अच्छे से प्रभावित किया, मुझे कितना अच्छा लगा आपके साथ, आपका ऑरा कैसा है, मेरा बात करने का मूड है या नहीं है। अब हो सकता है कि मैं घड़ी देखूं, कहूं नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ी देर बाद बंद करते हैं, ठीक है। और एक ये है कि मैं आपसे बात करने के लिए स्टूडियो में दाखिल हुआ कि बस 10 मिनट में निकलूंगा, और आपका ऑरा इतना अच्छा लगा, आपकी बातें इतनी अच्छी लगी कि हम पता चला आधा घंटा 1 घंटे बात करते रहे। तो ये ही रचना के साथ भी होता है कि मुझे किस चीज़ ने छुआ, और उसकी कोई उसका कोई उपकरण नहीं होता। मैं आपको एक एक मैं एक बहुत जिसको कहते हैं ना साहित्य में राजनीति के दौर से गुजर रहा था। कोविड के आसपास हुआ ये कि सुबह 5 बजे कुछ शेर आने शुरू हुए। मैं एक दो शेर सुना भी देता हूँ कि है ज़माना किस कदर मेरे खिलाफ, है ज़माना किस कदर मेरे खिलाफ, और उस पर तू इधर मेरे खिलाफ,
1: क्या बात है,
0: हो
1: क्या बात
0: गए दीवारों दर मेरे खिलाफ, हो गए दीवारों दर मेरे खिलाफ, मैं हूँ घर में और घर मेरे
1: क्या
0: खिलाफ,
1: बात है, बहुत बढ़िया।
0: मैं भी मैं हूँ, कौन सा मर जाऊँगा, होने दो सब हैं अगर मेरे खिलाफ,
1: बहुत बढ़िया।
0: और हर खबर से बेखबर हूँ आजकल, उड़ रही है ये खबर मेरे खिलाफ।
1: क्या बात,
0: अब ये जैसे वर्षा होती है ऐसे उतरे सुबह 4:30-5 बजे। मैंने अपनी पत्नी को उठाया और उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये तो बड़ी जल्दी जल्दी हो गई ये गज़ल। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं करीब 1-1.5 महीने परेशान रहा, क्योंकि इतनी रफ्तार से आए थे ये शेर,
1: जी
0: और बिल्कुल बग़ैर का के कू की के। तो मैंने अपने बहुत सारे जो मेरे जिनके साथ मैं मुशायरे वगैरह में और अदबी सफ़र करता हूँ, मैंने उनको फ़ोन लगाया और उन्हें शेर सुनाया ये वाले कि भाई देखना कहीं किसी की है तो नहीं ये गज़ल मैंने सुन रखी हो
1: जी जी जी
0: मेरे आहंग में, मेरे
1: जी जी
0: सबकॉन्शियस में पड़ी
1: पढ़ी और
0: हो,
1: वो निकल कर आ
0: अचेतन
1: गई।
0: में पड़ी हो
1: जी
0: और वो निकल आई हो। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि देश के मूर्धन्य साहित्यकार, जिनमें मैं नाम ले रहा हूँ, मंसूर उस्मानी साहब,
1: जी
0: अकील नुमानी साहब, वसीम बरेलवी साहब, इनको सबको मैंने फ़ोन लगा दिए कि साहब ये 15-20 मिनट में 5-7 शेर हो गए,
1: जनरली ऐसा
0: कहीं
1: होता नहीं।
0: जनरली ऐसा होता नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई वो तुम जिस दौर से गुज़र रहे हो उस दौर ने तुम्हारे यहाँ उस
1: अतिक्रमण
0: उसके
1: कर
0: अतिक्रमण कर लिया,
1: लिया
0: आमद हो गई।
1: बिल्कुल,
0: अब ये उसका बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है कि वो आ गया,
1: तात्कालिक
0: क्योंकि
1: परिस्थितियों की।
0: हाँ तो आ गई। ये हो गए मेरे इमोशंस। अब आइए कि मान लीजिए महाकुंभ का गीत आ गया जो बड़ा वायरल हुआ।
1: बिल्कुल
0: अब बतौर गीतकार मेरे पास एक असाइनमेंट आया कि साहब 144 वर्षों बाद ऐसा सुयोग बनाया कि जो इलाहाबाद प्रयागराज है
1: बिल्कुल
0: वहाँ महाकुंभ होने जा रहा है, और इसका जो एंथम है, इसका जो शीर्षक गीत है, वो आपको लिखना है। जब आप लिख लेंगे तो फिर देखेंगे कि किससे गवाना है। बाद में उसे कैलाश खेर जी ने गाया। अब वो असाइनमेंट है। अब उस असाइनमेंट में आपको ऐसे दाखिल होना होता है जैसे आपसे बात करने के लिए मैं इस कमरे में दाखिल हुआ। तो फिर मुझे उसके लिए पढ़ना भी पड़ता है कि आखिर महाकुंभ की विशेषताएं क्या क्या हैं। छोटा सा गीत है, 3 मिनट
1: बिल्कुल
0: का, 3.5 मिनट का,
1: जी
0: उसमें आपको वो कूचे में सागर समेटना है,
1: बिल्कुल
0: वो है असाइनमेंट। तो वहाँ उपकरण क्या लगा, वहाँ उपकरण ये लगा

0: इधर आप देखिए, फिर कितना कितनी खूबसूरत बातचीत है कि आपने एक प्रश्न किया था मुझसे नए जनरेशन के पोएट्स का।
1: जी
0: अब यहाँ वो एक्सपीरियंस काम आता है,
1: बिल्कुल
0: कौन सा, जो आपने पढ़ के आए हो, आप जो आपके गुरु ने कहा कि 95% पढ़ो, 5% गढ़ो।
1: बिल्कुल
0: तो यहाँ जब आपको ये असाइनमेंट मिला कि जहाँ आपको एक डिमांडिंग सॉन्ग लिखना है, तो वहाँ ये वाली जो स्टडी है, जो रियाज है, वो यहाँ काम आएगा। ये किए बिना आप ये नहीं कर सकते, है ना।
1: निश्चित
0: जैसे अभी स्टूडियो के बाहर एक बालक था, वो पूछ रहा था कि मुझे लिरिकल
1: बिल्कुल
0: नहीं आता, तो वो लिरिकल नहीं आएगा उसके पास तब तक जब तक वो लिरिक्स पढ़ेगा नहीं। उसको सुनना भी पड़ेगा, उसको पढ़ना भी पड़ेगा, तब आएगा। इसीलिए आप देखिए, हमारे हिंदुस्तानी सिनेमा संगीत के गानों के जितने सुपरहिट गीत हैं, वो आपको क्यों जबानी याद है? आज सोचा तो आंसू भर आए, कैफी साहब, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, दिल की
1: बिल्कुल
0: नाजुक रगें टूटती हैं, याद इतना भी कोई ना आए। रीजन, ये लोग इतना पढ़ चुके थे, इतना पढ़ चुके थे कि कविता का जो छंद है और वो जो संगीत के जो सुर हैं, वो सब गड्ढमड्ढ हो गए थे, घुल मिल गए थे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को तो साहिर, इस लोक को तो अपना ना सके, उस लोक में भी दुख पाओगे। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे,
1: बहुत बढ़िया,
0: है ना।
1: मुंह
0: कभी
1: जबानी
0: कभी
1: याद।
0: मेरे दिल में ख्याल
1: जी
0: आता है कि
1: जी
0: जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजर नहीं पाती तो शादाब हो भी सकती थी।
1: बिल्कुल
0: तो ये इसमें उस कवि का, उस रचनाकार का यहां से यहां तक का जो सफर है पढ़ने का,
1: वो काम आ
0: वो
1: रहा है।
0: काम आता है।
1: बिल्कुल हम लोग बहुत समृद्ध हुए, आपने जो इतना विश्लेषण किया और एक इनसाइट्स हमारे श्रोताओं को और हमें भी दी।
0: बहुत शुक्रिया।
1: हम जानना चाहेंगे आपसे कि इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आगे के प्रोजेक्ट्स में आप क्या-क्या करने वाले हैं।
0: देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ एक एक एनडीए होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ठीक है।
1: अच्छा
0: तो हमारी चीज़ें जब तक नहीं आ जाती,
1: जी
0: और अक्सर ऐसा होता है कि चीज़ें आ गई और फिर वो उस तरह का आकार नहीं लिया, तो हाँ। लेकिन ये है कि इसी प्रदेश में और देश में दो बड़े गीत आ रहे हैं जो बहुत जल्द आपको सुनने के लिए मिलेंगे, तो उसको आने दीजिए
1: जी
0: जी।
1: अंत में हम निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि आपकी कोई प्रतिनिधि रचना जो है उसका पाठ हमारे श्रोताओं के लिए।
0: मैं जब यहाँ आता था आकाशवाणी में,
1: जी
0: जब निरंतर आता रहता था, तो एक रचना मैंने यहाँ सुनाई थी जो मेरी माँ पर थी, अम्मा। तो आज लगभग 30 साल बाद मैं आया हूँ, तो मैं अब जब आया हूँ तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना इन्हीं माइक्स पर, ये
1: जरूर
0: माइक जो हैं उनका रचनाओं को पहचानते होंगे।
1: जी जरूर
0: तो धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा, धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा, सूनापन तन्हाई अम्मा। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि हम पंच तत्व से बने हैं, उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है, उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। धरती अंबर आग हवा जल जैसी ही सच्चाई अम्मा, सारे रिश्ते जेठ दोपहरी गर्म हवा आतिश अंगारे, ऑल रिलेशंस, सारे रिश्ते जेठ दोपहरी गर्म हवा आतिश अंगारे, झरना दरिया झील समंदर भीनी सी पुरवाई
1: अम्मा
0: अम्मा। और चूंकि मैं संयुक्त परिवार में पला बड़ा हूँ विदिशा भोपाल में, तो उसकी एक कथा व्यथा है यह कि घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे, घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे, चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई
1: क्या
0: अम्मा।
1: बात।
0: और बाबूजी गुजरे, आपस में सब चीज़ें तकसीम हुई, तब बंटवारा हो गया। बाबूजी गुजरे, आपस में सब चीज़ें तकसीम हुई, तब मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से आई अम्मा।
1: क्या बात, क्या बात है आलोक श्रीवास्तव जी। जो आपसे इतनी देर बात हुई
0: हाँ
1: और जो आपकी रचना को हमने सुना, हमारे श्रोताओं ने सुना, उसके बाद यही कहा जा सकता है कि जो आपका रचना कर्म है वो कर्म नहीं है, वो धर्म भी है। और ऐसा कहा जाता है कि जब भी कर्म धर्म से मिल जाता है तो वह अपने लक्ष्य तक, अपने गंतव्य तक ज़रूर पहुँचता है।
0: हाँ कर्म धर्म से मिल तो जाए, पर कर्म धर्म से मिले मर्म के साथ,
1: क्या बात,
0: तब वो लंबी यात्रा करता है।

0: तो मैंने कोशिश हमेशा यही की कि मेरा जो कर्म है वो धर्म से जुड़े लेकिन मर्म के साथ।
1: आपसे निवेदन करेंगे कि आप इसी तरह हम सभी का, सभी पाठकों का, सभी श्रोताओं का मार्गदर्शन करते रहें। आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें। पूरे आकाशवाणी भोपाल परिवार की तरफ से आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर कि आपने अपनी अपनी जड़ों से जुड़ने का मुझे एक मौका और दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
2: इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे देश के प्रख्यात और बहुचर्चित कवि और गीतकार आलोक श्रीवास्तव से शुभम तिवारी की बातचीत। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

0: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है धार जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील सचान, वाचन स्वर दीपा सिंह। धार जिले में इन दिनों खेतों में खूब रौनक दिखाई दे रही है। किसान खरीफ की फसलों की बोनी में पूरी तरह जुटे हैं। इस साल जिले में 5,15,000 हेक्टेयर में बोनी का लक्ष्य रखा गया है। सबसे ज्यादा रकबे में सोयाबीन, कपास और मक्का बोया जा रहा है। अब तक करीब 90% काम पूरा हो चुका है। हालांकि निमाड़ के कुछ इलाकों में कम बारिश के कारण किसानों की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। खेतों की हलचल के बीच गांव में रोजगार की नई उम्मीद भी जागी है। तिरला में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम में लोगों को 125 दिन की रोजगार गारंटी और डिजिटल भुगतान जैसी नई व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। इसके अलावा साइबर ठगी से बचने के आसान उपाय भी बताए गए। दूसरी ओर किसानों को सहकारिता से जोड़ने के लिए कोशिश भी तेज हुई है। मध्य प्रदेश अपेक्स बैंक के प्रशासक महेंद्र सिंह यादव धार पहुंचे और सहकारी बैंक के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और नए सदस्यों को अंश प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस मौके पर बैंक परिसर में पौधरोपण भी किया गया। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर जिले में प्रबुद्धजन संकल्प सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार और समाज सेवा से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। सरकार की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी भी लगाई गई। वक्ताओं ने विकसित भारत के निर्माण में हर नागरिक की भूमिका पर जोर दिया। अब चलते हैं पीथमपुर, जहां उद्योगों की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पीथमपुर में ल्यूकोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 272 करोड़ रुपए की नई विनिर्माण इकाई का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीथमपुर प्रदेश के औद्योगिक विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है। पीथमपुर की एक और बड़ी तस्वीर भी सामने आई है। यहाँ बन रहे पीएम मित्रा पार्क का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव भी आ चुका है। अनुमान है कि इससे 46,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अधिकारियों ने विकास कार्यों का जायजा लिया और काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। अब बात सेहत की। धार जिले में पल्स पोलियो अभियान पूरे उत्साह के साथ चलाया गया। 5 साल तक के 3,40,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाई गई। इसके लिए जिले भर में 2,500 से ज्यादा बूथ बनाए गए थे। हजारों स्वास्थ्य कर्मियों ने घर घर पहुंचकर अभियान को सफल बनाया। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए भी अच्छी खबर आई। धार में युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया। बड़ी कंपनियों ने युवाओं के इंटरव्यू लिए। 48 युवाओं को मौके पर ही नौकरी के ऑफर लेटर दिए गए। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत जिले के 471 हितग्राहियों के खातों में 10,31,00,000 रुपए से ज्यादा की राशि भेजी गई। ये सहायता सीधे बैंक खातों में पहुंचाई गई। सामान्य मृत्यु, दुर्घटना और दिव्यांगता से जुड़े मामलों में लोगों को ये मदद मिली है। प्रशासन का कहना है कि पात्र परिवारों को समय पर सहायता मिलना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। धार जिले में पशुपालन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया गया है। प्रदेश भर के साथ धार जिले में भी 13 जुलाई से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। यह अभियान दुग्ध उत्पादन दोगुना करने के लक्ष्य से चलाया जा रहा है। 3-4 पशु रखने वाले पशुपालकों से विभागीय टीमें संपर्क करेंगी और पशुपालकों को पशु स्वास्थ्य, नस्ल सुधार और पोषण की जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड पर्यटन क्विज 2026 का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ना है। विद्यालयों के लिए ऑनलाइन पंजीयन 25 जुलाई तक किया जा सकता है। जिला स्तरीय क्विज का आयोजन 7 अगस्त को होगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। पिछले वर्ष इस क्विज में 24,000 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। विजेता टीमों को निःशुल्क पर्यटन भ्रमण का उपहार भी दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जंगल बचाने की मुहिम भी रंग ला रही है। वन विभाग ने 7

परिक्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए करीब 590 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इसी बीच जमीन पर सागौन के पौधे लगाए जाएंगे। और आखिर में सड़क सुरक्षा से जुड़ी एक अहम खबर, अब धार जिले में बिना हेलमेट दोपहिया चलाने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। प्रशासन ने नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान शुरू कर दिया है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे धार जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील सचान का था, वाचन स्वर दीपा सिंह का।

हंसा करो कि उदासी भली नहीं होती, हंसा करो कि उदासी भली नहीं होती, बुझे दिए की कोई जिंदगी नहीं होती। हवा की दोस्ती जलते हुए चिरागों से गर हो भी जाए तो संजीदगी नहीं होती। सभी श्रोताओं को छाया पाठक का नमस्कार। श्रोताओं, इंसान का जन्म मुस्कुराने के लिए ही हुआ है। कहते भी है ना कि जरूरत होती है यदि मुस्कुराए नया व्यक्ति, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ना मुस्कुराए और कहीं और मुस्कुराए। मुस्कान हर व्यक्ति के अंदर मौजूद होती है, बस ज़रूरत होती है उसे बाहर निकालने की। और कहते हैं कि मुस्कुराना एक कला है, एक अदा है, मगर ये आसान नहीं होता, बशर्ते अगर आप मुस्कुराना चाहें।

मित्रों, आपके अपनों में आपके आसपास कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी बेपरवाह निष्पक्ष मुस्कान हमारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखेर देती होगी। श्रोताओं, मुस्कान के बदले मुस्कान देना मानवीय प्रकृति है। मुस्कान उत्साह, दोस्ती, अच्छे एहसास और उन सभी सकारात्मक भावनाओं का संकेत है जिनकी आवश्यकता हमें इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमेशा ही रहती है। निश्चित रूप से मुस्कान हमें मिलनसार बनाती है। हम सभी उनके साथ बातें करने में, खेलने या काम करने में बहुत सुविधा महसूस करते हैं, है ना? इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? ये देखिए ना, जो लोग हमेशा मुस्कुराते हैं, कोई भी किसी ऐसे शख्स के साथ रहकर काम करना हमें पसंद नहीं आता जिसके चेहरे पर हमेशा अप्रसन्नता और गुस्से के भाव हों। हंसते मुस्कुराते चेहरे किसको भला अच्छे नहीं लगते? ये कौन मुस्कुराहटों का कारवां लिए हुए, शबाब शेर रंगो नूर का धुआं लिए हुए, कदम कदम पे जल उठी है लौज ज़मीने रह गुज़र, अदा अदा में बेशुमार बिजलियां लिए हुए।

मित्रों, आकाशवाणी भोपाल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत सागर। आपके साथ हूँ मैं, छाया पाठक। क्या आपको पता है कि मुस्कान के भी कई प्रकार होते हैं? जैसे शरारती मुस्कान, मजबूरन मुस्कान, शिष्ट मुस्कान, मुश्किल मुस्कान, विनम्र मुस्कान, तो शातिर मुस्कान, खिली खिली मुस्कान और असली मुस्कान। असली मुस्कान वो होती है श्रोताओं, जो सीधे दिल से निकलती है और चेहरे पर बिखर जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ मुस्कान ऐसी भी होती है

दोस्तों, मुस्कान न सिर्फ खुशी का संकेत है बल्कि व्यक्तित्व भी बताता है। इसलिए अपने व्यक्तित्व को बहुत ही सौम्य बनाने के लिए, बहुत ही अपनेपन से बनाने के लिए ज़रूरत है एक मीठी सी मुस्कान की। दोस्तों, मुस्कुराकर विश्व में सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाला संकेत है। हर संस्कृति के लोग इस बात को समझते हैं। ये वो आने वाला भाव है, मुस्कुराहट है, जो हर किसी के व्यक्तित्व को सामने दर्शाती है। जब भी हम रात को बिस्तर पर सोने जाएं, तो याद करने की ये कोशिश करें कि हम आज दिन भर में कितनी बार मुस्कुराएं। अगले दिन हम उससे 3 गुना ज़्यादा मुस्कुराएं। हम देखेंगे कि हम हमेशा मुस्कुराने वाले व्यक्ति के रूप में पहचाने जाएंगे। यदि हमने मुस्कुराने की, हंसने की आदत बना ली, एक बार बना ली, तो ये अवश्य जानिए कि आपके आसपास के लोग हमेशा आपके बारे में कुछ यही कहते नजर आएंगे।

दोस्तों, एक मोहक मुस्कान से किसी का भी दिल जीता जा सकता है, बिगड़ा काम बनाया जा सकता है। आप चाहें तो आज ही आजमा कर देखें। हंसी खुशी खुशहाल जीवन जीने के लिए ज़रूरी है आत्मविश्वास के साथ, चेहरे पर खिली खिली मुस्कान के साथ जीना।

और श्रोताओं, एक मनमोहक मुस्कान की अपेक्षा के साथ विदा लेती हूँ आपसे। आज्ञा दीजिए छाया पाठक को कार्यक्रम से। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत सागर। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आपको एक सूचना दे दें, पुलिस आयुक्त नगरी पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी

प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली, धार्मिक, सामाजिक, जाति अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण साझा, लाइक, कमेंट अथवा फॉरवर्ड ना करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में सुनिए मालविका कानन का ख्याल गायन, राग देसी।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में अभी आप सुन रहे थे मालविका कानन का राग देसी में ख्याल गायन। तबले पर संगत की थी आनंद गोपाल बंदोपाध्याय ने। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने अपने संबंधों को सामरिक साझेदारी का दर्जा दिया। दोनों नेताओं ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय वस्तु और सेवा व्यापार को बढ़ाकर 35,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य भी तय किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित है। प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत तीसरे चरण की लॉटरी प्रक्रिया सम्पन्न हुई। इसमें 7,630 बच्चों को पसंदीदा निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश मिला। प्रदेश सरकार ने सत्र 2026 से सभी शासकीय आईटीआई में महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण शुल्क में 25% की छूट देने का फैसला लिया है। इससे महिलाओं को प्रथम वर्ष के शुल्क में 1,335 रुपए की बचत होगी। अब प्रथम वर्ष का कुल शुल्क 4,755 रुपए होगा। भोपाल के मध्य प्रदेश

अति संग्रहालय में जनजातीय चित्रकार की प्रदर्शनी जारी है। इसमें भील जनजातीय चित्रकार सुनीता परमार के चित्रों की प्रदर्शनी का संयोजन किया गया है। ये प्रदर्शनी 30 जुलाई तक रहेगी और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 13 जुलाई तक रिमझिम बारिश होगी। 14 जुलाई को कुछ जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म से लिया है, जिसे गाया अरिजीत सिंह ने। मनोज मुंतशिर के बोल हैं, संगीत अमाल मलिक का।

अगला गीत बॉडीगार्ड फिल्म से लिया है, जिसे गाया राहत फ़तेह अली खान और श्रेया घोषाल ने। शब्बीर अहमद और नीलेश मिश्रा ने इस गीत को लिखा, संगीत हिमेश रेशमिया का।

अगला गीत हर्षदीप कौर ने गाया है, इनका साथ दिया अरिजीत सिंह ने। अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा है और जैम का संगीत, फिल्म है रईस।

दम लगा के हईशा, इस फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है पद्मावत फिल्म से, जिसे आवाज़ें दी श्रेया घोषाल और स्वरूप खान ने। AM तुराज का गीत है, संगीत संजय लीला भंसाली का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में हम आपको सुनवा रहे हैं। शब्द रचना समीर की है, संगीत तैयार किया नदीम श्रवण ने, फिल्म का नाम धड़कन।

कार्यक्रम का अगला गीत तुम बिन फिल्म से है। निखिल विनय का संगीत है, फैज़ अनवर ने इस गीत को लिखा। आवाज़ें सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की।

0: राजनीति फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक 11 जुलाई को मनाया जाने वाला ये दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और सतत विकास की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने अपने संबंधों को सामरिक साझेदारी का दर्जा दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल भिंड जिले के लाहार का दौरा करेंगे। वे यहां आयोजित एक कार्यक्रम से लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत तीसरे चरण की लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई। इसमें 7,630 बच्चों को पसंदीदा निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश मिला। राज्य सरकार ने सत्र 2026 से सभी शासकीय आईटीआई में महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण शुल्क में 25% की छूट देने का फैसला लिया है। इससे महिलाओं को प्रथम वर्ष के शुल्क में 1,335 रुपए की बचत होगी। प्रदेश के जेल विभाग ने बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भोपाल में 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ये प्रशिक्षण गुजरात राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के सहयोग से हो रहा है। प्रशिक्षण में प्रदेश भर की जेलों से 30 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। और प्रदेश के धावक विनोद सिंह ने चीन के ओरदोस में हुई एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

देश सुनने वाले सभी श्रोताओं को छाया पाठक का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कटी पतंग फिल्म का गीत, जिसे गाया किशोर कुमार ने। संगीत आर डी बर्मन का है और आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा। सुना चाहा छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। इसे गीत की फरमाइश भेजी सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया अस्मा, सालिया शोएब खान, पोतरा मुजताबा खान, राव भाई शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने।

अगला गीत इन सभी श्रोताओं की पसंद का है। छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी, बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ से ये पत्र आया, सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, माही पूजा छुटकी, शरद डोडवानी, श्रेया पूनम वाधवानी और समस्त माखीजा परिवार ने। इन श्रोताओं की पसंद है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया धरती फिल्म का गीत, जिसे लिखा हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ, आनंद बख्शी की शब्द रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीत दिया, फिल्म का नाम महबूब की मेहंदी। सुनना चाहा है पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप बेबी आरजू जाजोरिया, राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से ये पत्र आया, मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित और समस्त राजावत परिवार ने।

कार्यक्रम का अगला गीत इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर है। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले। सपना संगीता रोड इंदौर से पतराया लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया का। इन श्रोताओं की पसंद है।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश। अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं हीर रांझा फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। कैफी आजमी ने इस गीत को लिखा है, संगीत तैयार किया मदन मोहन ने। सुनना चाहे कंवर कॉलोनी।

0: गढ़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य आदित्य शिवानी और मीरू राज श्रीमाली ने घंटाघर चौक खंडवा से ये पत्र हम तक पहुंचाया। संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने
1: तो

0: सिरिंजेस ही यूज हों।
1: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।
1: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
2: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
1: मतलब
2: ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जग

0: रखना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अब सुनिए धारावाहिक हंसना मना है की 10वीं कड़ी।

दोस्तों नमस्कार, आप सभी को आज की इस खास और बहुत खास महफिल में शामिल करते हुए मुझे यानी आपके दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी को बेहद खुशी हो रही है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मनमांगी मुराद मिल गई हो, मीठे मीठा रसगुल्ला मिल गया हो। यूं तो कहने को इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है हंसना मना है, मगर हमारी कोशिश आपको ज्यादा से ज्यादा हंसाने की होगी। एक थानेदार साहब थे, रिटायर्ड थानेदार, यानो सर्विस से फुर्सत हो गए थे और बड़ा मजा ले रहे थे घर में रिटायरमेंट का, बाल बच्चों के साथ बड़ा आनंद ले रहे थे। एक बड़ी बढ़िया सी बात यह है उन थानेदार में कि उनको संगीत का बड़ा शौक था, बड़े प्यारे गाना वाना सुनते थे, रोज आकाशवाणी सुने, दिन भर फिल्मी गाने सुने, गजलें सुने, लोक संगीत सुने, बड़े शौकीन संगीत के। उनको एक दिन कुछ ऐसा लगा कि एक नौकर रख लिया जाए घर में जो मेरी मदद करे, घर के दूसरे काम काज भी करे। ठीक है साहब, पेपर में एक विज्ञापन निकलवा दिया गया कि एक कर्मचारी की आवश्यकता है, मिलिए। उन्होंने थानेदार साहब ने अपना पता उस पेपर में दे दिया। अब एक गोपाल नाम का व्यक्ति उस अखबार को, उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ के, विज्ञापन को पढ़ के उनके घर पहुंचा। जब घर तो पहुंचा, वार्तालाप शुरू हो गई। कहले कहिए। कहले थानेदार साहब नमस्कार, मेरा नाम गोपाल है और आपका विज्ञापन पढ़ के मैं आपकी सेवा में आ गया हूँ। कहले ठीक है, आप हमारे यहाँ काम करने आए हैं, बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हम थानेदार रहे हैं पहले, और उधम हमारे घर में उधम नहीं करिएगा, वो चोरी वगैरह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पुराना थानेदार हूँ। तो गोपाल बोलता साहब हमने आज तक चोरी नहीं की, हमने तो झूठ भी नहीं बोला, चोरी भी नहीं की, आप चिंताओं से मुक्त रहें, आप हमको अपने घर में बस सर्विस में सेवा में ले लें बस। तो थानेदार साहब बोलते ठीक है आप आओ नौकरी में, कल से आ जाओ आप। लेकिन बात यह है कि हम हैं संगीत के शौकीन, वो बहुत ज्यादा संगीत के शौकीन हैं, बस हमको 24 घंटे एक ही नशा रहता है संगीत का। आकाशवाणी हम दिन भर सुनते हैं और जब जब समय मिलता है हम दूरदर्शन देखते हैं, उसमें भी गाने बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, बड़े प्यारे प्यारे भजन आते हैं। है कहले ठीक है साहब, जो आप देखते वो हम भी देखेंगे। नहीं नहीं, तुमको तो काम करना होगा, देखने का समय सिर्फ हमारे पास है। है चलो ठीक है, तो शर्त यह रहेगी हमारे आपके बीच में मिस्टर गोपाल के जैसे कोई आ रहा है हमारे घर में तो तुमसे हम बोलेंगे भाई कौन आया, जरा दरवाजे पे जाओ, तो तुम उसको देखना और हमको गाना गा के बताना कि वो कौन आया है। यानी समझाने थानेदार साहब, ओहो क्या उसमें समझाना, कोई आ रहा है हमको गाना गा के बताओ कि वो कौन आया है। अगर हमने कोई चीज तुमसे घर में बुलवाई है, ये ले आओ वो ले आओ, तो तुम सब गाना गा के ले गाना गाते गाते आओ, फिर हमको दो। समझ गए? तो गोपाल थोड़ा सा समझ गया, थोड़ा नहीं समझा, उसने हल्का सा झूठ बोल दिया, कहा अरे बिल्कुल साहब, अरे वाह वाह थानेदार साहब, बड़ा छोटा सा आपने छोटी सी बात कही है, गाना गा के बात करने की है ना, कोई आ रहा है गाना गा के बताओ, कोई जा रहा है गाना गा के बताओ, आप चिंताओं से मुक्त रहे थानेदार साहब। अरे हम तो संगीत जानते हैं, हमने 5 साल शास्त्रीय संगीत सीखा है। अरे फिर तो गोपाल बहुत अच्छी बात है, कल से तुम्हारी सर्विस पक्की, 15 दिन महीने भर काम करो, उसके बाद तुम्हारी तनख्वाह के बारे में विचार किया जाएगा। ठीक है साहब। इस तरह से एक दिन तो निकल गया, दूसरे दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया तो थानेदार साहब ने गोपाल को बोला, अरे गोपाल, अरे जरा देखना भाई दरवाजे पे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, जरा देखो भाई कौन आया है। जी थानेदार साहब जा रहा हूं आ रहा हूं। उसने दरवाजा खोला, जो सज्जन थे उनको देखा, अब बता रहा है वो थानेदार को कौन गोपाल की कौन आया है, किस तरह से गाना गा के।

उसको बोलो गोपाल कि वो बाद में आएगा, अभी कुछ मूड नहीं है पैसे वैसे का देने का। हम उसका पैसा दे देंगे, रुपया चार रुपया पाँच रुपये की कोई बात नहीं है। अभी उससे बोलो अभी जाए, अभी हम पेपर पढ़ रहे हैं, चाय कॉफ़ी लेना, नाश्ता लेना। ठीक साहब, गाना गा के एक दिन तो निकल गया, दो दिन निकल गया, चार दिन निकल गया। अचानक माहौल होली का आया, होली के माहौल में थानेदार साहब कुछ उल्टा सीधा कुछ खा पी के कहीं से आ गए थे, तो उसी खाने पीने के चक्कर में वो रात को आके घर में सो गए, और न जाने कहाँ से कोई अंगार चिंगारी कोई कहीं से भड़की, कुछ क्या इत्तफाक हुआ, थानेदार साहब के मकान में लग गई आग। तो सबसे पहले जो धुआं था वो गोपाल की नाक में पहुंचा, उसके कमरे में पहुंचा, वो घबरा गया, समझ गया कि ये चारों तरफ लगता है आग लग गई है। और वो दौड़ता भागता थानेदार साहब के दरवाजे पे, यानी उनके कमरे के दरवाजे पे पहुंचता है और आवाज लगाता है, लेकिन घबरा भी ये जाता है कि कहीं अगर मैंने गाना गा के नहीं बताया तो मेरी नौकरी ना छूट जाए। तो पहले तो खैर सादे तरीके से चिल्ला रहा है, किस तरह से, अरे थानेदार साहब, अरे थानेदार साहब, दरवाजा खोलिए थानेदार साहब, थानेदार साहब दरवाजा खोलिए, अरे आपके घर में आग लग गई है थानेदार साहब। तो थानेदार साहब ने जैसे ही दरवाजा खोला, गोपाल सामने, थानेदार सामने, गोपाल घबरा गया। थानेदार ने बोला, अरे क्या बात है गोपाल, हम तो सो रहे थे भाई, मेरे को ओफो काय को जगा दिया गोपाल। तो गोपाल अपनी सर्विस के चक्कर में गाना गा के बता रहा है आग लगने का, किस तरह से,

छोटे छोटे कलाकार, एक सपना हमारे दिल दिमाग में हमेशा बैठा रहता है कि हम बड़े बड़े शहरों में जाएं, शहर में जाएं, शहर से बाहर जाएं, देश में जाएं, देश से बाहर जाएं, हमारे कार्यक्रम हों, लोग हमको सुने, रेडियो स्टेशन वाले हमें बुलाएं, हैं टेलीविज़न वाले हमें बुलाएं। ये तो खैर ठीक ठीक है, फिल्मी दुनिया में हमारे गाने हों, फिल्मों से के माध्यम से अब कोई हीरो एक्टिंग कर रहा है हीरोइन के साथ, उसके बैकग्राउंड में उसके प्लेबैक में हमारी आवाज़ हो, ऐसे सपने तो खैर सभी लोग देखते हैं, ख़ास करके मैंने ज़रूर देखे, एक बार नहीं सैकड़ों बार। और उस सपने को पूरा करने के लिए पहुँच गया फिल्मी दुनिया में बॉम्बे। बॉम्बे जाने के बाद यानी मुंबई जाने के बाद मैंने कुछ पता लगाया कि भाई यहाँ किसको आवश्यकता है नए गायक कलाकार की। चलिए जब मालूम तो हो गया, एक डायरेक्टर साहब के घर पहुँचा, निवेदन प्रार्थना की कि साहब 10-5 मिनट का वक्त दे दीजिएगा, मैं बहुत अच्छा गायक कलाकार हूँ, अपने इलाके का बहुत बढ़िया गायक हूँ, सभी लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, जब भी मैंने अपने महल्ले में अपने इलाके में गाना

है, किसी ने फूल माला पहनाई है, किसी ने चाय पिलाई है, किसी ने कॉफी पिलाई है, किसी ने आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद दिया है। बहुत सारे मेरे प्रोग्राम छोटे छोटे होते रहते हैं। डायरेक्टर ने बोला भाई ऐसा है, मैं फिल्मी शूटिंग में जा रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ, अब आप यहाँ कहाँ आ गए हैं, आप बाद में आइए तो 2-3-4 महीने के बाद। तो मैंने उससे बार बार कहा ऐसा मत करिए साहब, 3-4 महीने के बाद तो मेरे सपने अगर पूरे नहीं हुए तो मेरा तो प्राणांत हो जाएगा, बस 5-10 मिनट दे दीजिए। ठीक है अब तुम बोलते हो तो 5-10 मिनट दे देते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी गाना भाई, मुझे कहीं और जाना है। ठीक है सर, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो हारमोनियम तबले वाले मिलेंगे? हाँ बुला देता हूँ, सब यहीं बैठे हुए हैं। चलो भाई ढोलक नवाज, भाई तबला नवाज, भाई ऑर्गन वाले, भाई हारमोनियम वाले, भाई सब कलाकार बंधु आ जाओ सर, इसकी मदद कर दो, ये कोई बच्चा आया है नया गाने वाला। तो हाँ चलो शुरू करो। तो सर पुराना गाना सुनाओ। अरे कोई भी गाना सुनाओ यार, पुराना गाना सर, अफसाना वाला।

ये अफसाना में माँ माँ सब क्या है भाई साहब, ये कितना अच्छा गाना अपने जमाने का गाना है, इसमें दूसरा गाना तुमने कहाँ से जोड़ दिया है? अगर आपकी तैयारी नहीं तो आपको नहीं आना था। नहीं सर, माफी चाहते हैं सर, क्या है कि मैं 250-300 गाने याद करके आया था सर, अपने जिस गांव में मैं रहता हूँ ना सर, वहाँ से 250 गाने याद करके आया था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो डायरी में खो गई सर, रेलवे ट्रेन में सर, वो बस में खो गई सर, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रही। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम दूसरा गाना कोई गाओ जो तुमको पूरा आता हो। गाएंगे ना सर, बहुत अच्छा वाला गाना गाएंगे सर, वो चोर चोर वाला गाना गाएंगे। कौन सा चोर चोर वाला? अभी सुनाते सर, वो चोर चोर का शोर मचाकर। हाँ अच्छा सुना, पूरा गाना? नहीं पूरा गाएंगे सर, पूरा गाएंगे। हाँ

करो, ये सब क्या हो रहा भाई है? हमने तुमको जब बोला तरीके से जो गाना पूरा आता हो वो गाओ भाई साहब, मेरा क्यों समय खराब कर रहे हो? मुझे फिल्म की शूटिंग में जाना, हीरो ने हीरोइन ने बहुत मुश्किल से डेट दी है, मेरा क्यों नुकसान करते हैं भाई साहब, मुझे क्यों परेशान करते? तो वो मेरे रोने की जगह वो रोने लगा। कौन रो रहा था? डायरेक्टर। मैंने फौरन बोला, नहीं साहब आप चिंता मत करिए, मैं बहुत अच्छा गाना गा रहा हूँ, पुराना वाला गाना गा रहा हूँ साहब, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ। अच्छा ठीक है गाओ, लेकिन पूरा आता है ना? बिल्कुल साहब पूरा आता है, मैं आपकी कसम, अरे मेरी कसम मत खाओ भाई साहब, मेरी कसम नहीं सर। अच्छा तो फिर मैं अपनी कसम खा लेता हूँ सर, मेरे को पूरा आता है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ। तो ये फिल्मी गाना है तो सर, लेकिन भजन है सर, वो भजन का मैं बचपन से बहुत शौकीन रहा हूँ, ये गाना पूरा भजन आपको सुनाऊंगा, देखिए, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माता। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, पहले भजन सुनाना था, नहीं सर अब सुना, पूरा भजन। हाँ गाइए, हाँ सुनाओ सुनाओ, हाँ

गाना गा रहा है भैया, कैसा गाना गा रहा है यार, ये ना भजन है ना फिल्मी गाना है, ना कव्वाली गाई आपने ना गजल गाई, ये ना लोकगीत, था क्या भाई साहब, ये था क्या? नहीं सर गलती हो गई सर, मैं माफी चाहता हूँ सर। वो क्या है 250 गाने याद करके, हम वो कह मेरे को मालूम है 250 गाने याद करके आए थे, और आपकी डायरी खो गई है, बम्बई में खो गई थी ना। हाँ सर आपको कैसे मालूम, अभी आप ही ने बताया ना मेरे को है। हाँ अच्छा अब एक काम करो मेरे पिताजी, आखिरी में एक बहुत बढ़िया सा गाना गा दो भैया, चाहे पाकिस्तान का गाना हो, चाहे हिंदुस्तान का गाना हो, चाहे इंग्लैंड का गाना हो, चाहे अमेरिका का गाना हो, जहाँ का गाना हो भाई साहब, भारत का गाना हो, आपके गांव का गाना हो, आपके शहर का गाना हो, लोकगीत हो, कुछ भी हो, लेकिन पूरा सुना दो, मुझको जाना है।

0: हंसना मना है,
1: हंसना मना है,
0: अरे हंसना मना है,
1: हंसना मना है।
0: कोशिश कोई लाख करे, कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे, खिलखिलाएंगे। एक बात तो आपसे हम खास तौर पे कहना चाहते थे जो भूल रहे हैं, अरे इस कार्यक्रम का नाम है
1: हंसना मना है।
0: राजेश मिश्रा आ रहे हैं कुछ सुनने सुनाने के लिए।
2: अब आइए हम ले चल रहे हैं आपको भिखारी के एक आइटम की ओर, कि जो गरीब भीख मांगते हैं तो उनमें भी हास्य मिल जाता है, वो भी अपना किस प्रकार से आनंद लेते रहते हैं, क्योंकि आनंद लेना हर किसी को ईश्वर ने दिया है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो वो भी भीख मांगते हुए कैसे आनंद ले रहे हैं, आइए। भिखारी ने एक घर में आवाज लगाई और वो हम और आपको, बाबू, ए बाबू, सुनता ही नहीं है बेवकूफ आदमी।
3: क्या बोला? कुछ नहीं बोला बाबू, बोला भगवान भला करेगा।
2: कहिए क्या बात है?
3: बाबू एक रोटी दे दो।
2: रोटी नहीं है।
3: फटे पुराने कपड़े दे दो बाबू।
2: फटे पुराने कपड़े भी नहीं है।

0: गेहूं का दाना भी नहीं है, पैसे दे दो बाबू, पैसे भी नहीं है। अच्छा साहब आपके पास कटोरा है?
1: क्यों?
0: बाबू ऐसा है, अगर है क्या? हाँ है, तो फिर यहाँ काहे को बैठे, हमारे साथ चलो।
1: एक व्यक्ति ने एक से मांगा, बाबू मिले? बोले क्या है?
0: कुछ दे दो, भगवान भला करेगा।
1: उनने जेब से निकाला और 1000 का नोट उसको दे दिया, उसने रख लिया। जब 1000 का नोट उसने दे दिया और देने के बाद जब दान करने वाले व्यक्ति की तरफ देखा, बोला कि यार तुम्हारे चेहरे से तो बड़ा तेज नजर आता है, तुम लगते नहीं हो कि तुमको भीख मांगना चाहिए, तुम क्या करते थे इसके पहले?
0: कहले साहब जो आप कर रहे हैं वही हम करते थे।
2: संजय गायकवाड़, एक मौका फिर इन्हें दिया जाता है, हाँ आपको हंसाने के लिए। संजय हाजिर हो।
3: कितना बदल रहा है साहब जमाना, कितना बदल गया है। जो कल तक होता था वो आज नहीं हो रहा है, जो आज हो रहा है वो कल नहीं होगा। पहले के जमाने में लोग अपने अपने घर के बाहर लिख के रखा करते थे, आइए आपका स्वागत है। आजकल बहुत सारे लोग अपने घर के बाहर लिख के रखा करते हैं, कुत्तों से सावधान। पहले के जमाने में होता साहब ये था कि बहुएं आंगन में खड़ी हुई हैं और दादाजी आते थे, अदब के लिए खांसते थे, तो बहुएं अपने अपने कमरों में चली जाया करती थी। आज जमाना इतना बदल गया साहब कि बहुएं आंगन में खड़ी हुई हैं, दादाजी आए और धोखे से बहू खांस दे, पता चला दादा बाहर। कितना समय बदल गया है, कितनी सारी बातें बदल गई हैं। अब मैं साहब संगीत के ऊपर आ रहा हूँ कि पहले के ज़माने में हीरो हीरोइन को गाने के माध्यम से बुलाता था तो हीरोइन पूरे काम छोड़कर भागी चली आती थी, हीरो हीरोइन को गाने के माध्यम से बुला रहा है।

इतना कहता था साहब हीरो पहले, तो हीरोइन पूरे काम छोड़कर भागी चली आती थी। आज भी हीरो हीरोइन को बुलाता है, देखे साहब आज के ज़माने की लिरिक्स क्या लिखी जा रही है। आज के हीरो ने जैसे ही हीरोइन को देखा तुरंत अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाया, ए आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, पाप पाप, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, कहीं रुकेंगे ना हम, बताइए चाय भले ही भर जाए। क्या जमाना था साहब, कि पहले के जमाने में हीरोइन चली जा रही है, हीरो तारीफ कर रहा है, तारीफ करने का अंदाज देखिए, तो ये मतवाली चाल।

चाल। आज भी हीरोइन जा रही है, आज का हीरो तारीफ कर रहा है हीरोइन की, चलने की तारीफ सुनिएगा। क्या अदा क्या जल बे तेरे पारो, दिल के टुकड़े हो गए हजारों, जान भी अब जाएगी आंख ना मारो, हैया अरे खा ले लैया भैया गुड़ की लैया। ये जमाना बदल गया साहब, पहले के जमाने में क्या बात हुआ करती थी कि शरीर से आंखों को ध्यान में रखते हुए क्या शानदार लिरिक्स लिखी गई। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। आज का हीरो आंखों के लिए क्या बोलता है, अखियों से गोली मारे भाजकिया, अखियों से गोली मारे लड़की का माल की। अब बताइए साहब, अगर आंखों से गोलियां चलने लगें तो परमाणु परीक्षण करने की क्या आवश्यकता है? इतना समय बदल गया है। अभी क्या बात हुआ करती थी, पहले भी हीरोइन अपने हीरो से प्यार करती थी, लेकिन अपनी भावनाओं को गीतों के माध्यम से किस तरीके से व्यक्त करती थी।

0: और आज की हीरोइन क्या बोलती है, दैया दैया दैया रे, दैया दैया दैया रे, तू तो मेरा आशिक मैंने प्यार किया रे दैया भाई।
1: और दोस्तों हंसने हंसाने का ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

0: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आपने सुनी धारावाहिक हंसना मना है की 10वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इंदौर में आज माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में प्रदेश भर से करीब 5000 युवा हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भिंड जिले के लाहर का दौरा करेंगे। वह यहां आयोजित एक कार्यक्रम से लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। भाजपा ने दतिया विधानसभा उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। टिकट की घोषणा होने के बाद डॉक्टर नरोत्तम के समर्थकों ने ग्वालियर झांसी हाईवे पर लंबा जाम लगाया। प्रदेश के जेल विभाग ने बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भोपाल में 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुरू किया है। यह प्रशिक्षण गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के सहयोग से हो रहा है। प्रशिक्षण में प्रदेश भर की जेलों से 30 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। भोपाल के मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में जनजातीय चित्रकार की प्रदर्शनी जारी है। इसमें भील जनजातीय चित्रकार सुनीता परमार के चित्रों की प्रदर्शनी का संयोजन किया गया है। यह प्रदर्शनी 30 जुलाई तक रहेगी। और प्रदेश में अगले 3 दिन हल्की बारिश का दौर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कहीं भी भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब महिलाओं के लिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसके लिए मेहनत जरूरी है। इस सुविचार के साथ महिला सभा सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को कल्पना शुक्ला का नमस्कार। बहनों, वर्तमान समय विज्ञान और तकनीक का युग है। आज मानव का जीवन लगभग आधुनिक तकनीकों से प्रभावित हो चुका है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बैंकिंग, उद्योग, संचार, परिवहन तथा सरकारी सेवाओं में डिजिटल तकनीकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का तेजी से उपयोग पड़ रहा है। AI ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से कंप्यूटर और मशीनें मनुष्य की तरह सोचने, सीखने, विश्लेषण करने तथा निर्णय लेने के कार्य कर सकती हैं। भारत सरकार भी इस आधुनिक

तकनीक को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। इसी दिशा में यशोदा AI एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य महिलाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तकनीक और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक बनाना है तथा उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त करना है। बहनों, यशोदा AI एक राष्ट्रीय पहल है जिसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW तथा फ्यूचर शिफ्ट लैब्स के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को AI की जानकारी देना, डिजिटल कौशल विकसित करना तथा उन्हें नई तकनीकों का सुरक्षित और प्रभावी उपयोग करना सिखाना है। यह कार्यक्रम ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को डिजिटल की दुनिया में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करता है। आज लगभग हर क्षेत्रों में डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है। बैंकिंग, ऑनलाइन शिक्षा, सरकारी सेवाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं और व्यवसाय सभी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। यदि महिलाओं को इन तकनीकों की जानकारी नहीं होगी तो वे विकास के मुख्य धारा से पीछे रह जाएंगी। इसलिए यशोदा AI महिलाओं को तकनीक रूप से सक्षम बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। ग्रामीण क्षेत्रों की अनेक महिलाएं आज भी डिजिटल संस्थानों का सही उपयोग नहीं कर पाती और साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी तथा गलत जानकारी का शिकार हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में यशोदा AI महिलाओं को तकनीक शिक्षा प्रदान कर उन्हें डिजिटल दुनिया में सुरक्षित, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाता है। बहनों, यशोदा AI के कुछ प्रमुख उद्देश्य भी हैं, जैसे कि महिलाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मूलभूत जानकारी देना, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूक करना, महिलाओं को आधुनिक तकनीक का उपयोग करके रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। बहनों, यशोदा AI की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम, सरल भाषा में AI और डिजिटल तकनीकों की जानकारी, साइबर सुरक्षा पर विशेष प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच बनाने का प्रयास, तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन। बहनों, यशोदा AI केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं बल्कि महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। जब महिलाएं तकनीक रूप से सक्षम होंगी तभी भारत वास्तविक अर्थों में डिजिटल और विकसित राष्ट्र बन सकेगा। इसलिए प्रत्येक महिला और छात्रा को यशोदा AI जैसे पहलों से जुड़कर नई तकनीकों को सीखना चाहिए। बहनों, जीवन हमें हर दिन कुछ नया सीखने, आगे बढ़ने और मुस्कुराकर हर चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है। जब हम सकारात्मक सोच के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो हर कठिनाई आसान लगने लगती है। इसी सुंदर भावना को व्यक्त करता है फिल्म डियर जिंदगी का बेहद लोकप्रिय और प्रेरणादायक गीत लव यू जिंदगी, जिसे गाया है जैस्लीन रॉयल ने।

0: बहनों, अभी हमने सुना गीत लव यू जिंदगी, जिसे फिल्म डियर जिंदगी से लिया गया था और इस गाने को जैस्लीन रॉयल ने गाया था। बहनों, आज हमारे साथ हैं साहिल दुबे, जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं और एआई रोबोटिक्स में इंजीनियर हैं। तो साहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: मैम, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: साहिल जी, आपके अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने महिलाओं के जीवन में क्या परिवर्तन लाए?
1: मैम, एआई ने मैम महिलाओं के जीवन को अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और अवसरों से भरपूर बनाया है। इससे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और व्यवसाय के नए रास्ते भी खुले हैं। अब मैम महिलाएं घर बैठे भी सीख सकती हैं, काम कर सकती हैं और वो अपना व्यवसाय बढ़ा भी सकती।
2: अच्छा सर, ये मतलब रोजगार और व्यवसाय के क्षेत्र में एआई ने महिलाओं के लिए किस प्रकार लाभदायक सिद्ध हो रही है?
1: इसमें मैम मैं यही कहना चाहूंगा कि एआई महिलाओं को मैम नए रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। जैसे कि इसमें वे ऑनलाइन व्यवसाय हो गया या कंटेंट का निर्माण करना, डिजिटल सेवाएं हो गई, फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स जैसे अन्य क्षेत्रों में हम कार्य कर रही हैं। एआई उनके काम को तेज, सरल और अधिक प्रभावी बनाती हैं। काम करना वो आसानी से कर सकती हैं, स्मार्ट होम के उपकरण का प्रयोग करना, समय प्रबंधन और बच्चों की पढ़ाई जैसी गतिविधियों पे आसानी से वो नजर रख पा रही हैं। उदाहरण के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि वॉइस असिस्टेंट और स्मार्टफोन एप्स कई मैम ऐसे दैनिक कार्य हैं जिनको सरल बना देते हैं वो।
2: अच्छा, ये स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में एआई महिलाओं को किस प्रकार सहायता कर रही है?
1: स्वास्थ्य संबंधित मैम जैसे जानकारी, समय पर जांच और डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श लेना हो जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। बाकी सुरक्षा के लिए कई सारे मोबाइल ऐप आ गए हैं जो कि आपके आपातकालीन स्थिति में परिवार या पुलिस को तुरंत सूचना भेजने में मदद करते हैं। आजकल सभी स्मार्टफोन में पहले से ही गवर्नमेंट की तरफ से ये रहता

0: है कि हम इमरजेंसी ऐसा कुछ बनाएं कि जिसमें तुरंत एक या दो सिर्फ क्लिक से आप तुरंत आप अपने घर पे स्वास्थ्य संबंधित किसी भी चीज का आप वहाँ पे लाभ उठा सकते हैं।
1: अच्छा सर, क्या आपको लगता है कि एआई के बढ़ते उपयोग से महिलाओं के रोजगार पर कोई सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है?
0: जी हाँ मैम, एआई के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते हैं। जहाँ नई तकनीक से नए रोजगार पैदा होंगे, वहीं कुछ पारंपरिक कार्य कम हो सकते हैं। इसलिए महिलाओं को नई तकनीकों और डिजिटल कौशल को सीखते रहना चाहिए हर दिन, ताकि वो बदलते समय के साथ आगे बढ़ सकें और सतर्क रहें हमेशा।
1: ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं तक एआई की सुविधाएं पहुंचाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए?
0: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मैम, जैसे कि डिजिटल शिक्षा हो गई, इंटरनेट की सुविधा, जो उनके ग्रामीण की स्थानीय भाषा है उसके बारे में प्रशिक्षण लेना, तकनीकी जागरूकता अभियान हो जैसे हो सकता है, और सरकारी सहायता को बढ़ावा देना चाहिए इन सब चीजों को। इससे क्या होता है, महिलाएं अधिक से अधिक एआई का लाभ उठा सकेंगी।
1: अच्छा सर, जैसे कि एआई का उपयोग करते समय महिलाओं को किन चुनौतियां या सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए?
0: सबसे पहले तो महिलाओं को अपनी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखनी चाहिए। उन्हें अपनी जानकारी किसी से भी साझा करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी जानकारी की सत्यता की जांच पूरी करनी चाहिए मैम, और ऑनलाइन धोखाधड़ी से सतर्क हमेशा रहना चाहिए। किसी के भी बहकावे में या किसी भी ऐसे पोस्टर या बैनर को जो आप बताते हैं कि इससे आपको लाभ होगा, इससे आपको ये लाभ होगा, इन सब पे वो ना जाएं, किसी भी शॉर्टकट का वो इस्तेमाल ना करें। एआई का उपयोग मैम सोच समझ कर और एक जिम्मेदारी के साथ करना बहुत ही आवश्यक है।
1: सर, महिलाओं को एआई से जुड़ी नई तकनीकों और कौशलों को सीखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए?
0: मैम इसमें यही कहेंगे कि महिलाओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण दोनों कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। अगर बहुत ही ज्यादा व्यस्त दिनचर्या है उनकी, तो वो ऑनलाइन अपना सीख सकती हैं। बाकी अगर हो सके तो वो ऑफलाइन भी जा सकती हैं। डिजिटल कौशल विकसित करना चाहिए उनको हर दिन। नई तकनीकों के बारे में नियमित रूप से सीखना चाहिए हर समय, और व्यवहारिक अभ्यास भी करते रहना चाहिए साथ साथ में। इससे क्या होता है, उनके खुद का भी विकास होता है।
1: सर, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में एआई और महिलाओं की भूमिका को आप किस प्रकार से देखते हैं?
0: मैम, विकसित भारत 2047 के निर्माण में एआई और महिलाओं की भूमिका मैम अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। यदि मैम महिलाएं एआई का प्रभावी और जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग करेंगी, तो वे शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि विज्ञान और भी जैसे अन्य क्षेत्रों में वो अपना योगदान देंगे, जरूर देंगे। इससे क्या होगा मैम, देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक और तकनीकी प्रगति को मैम एक नई गति मिलेगी, तथा भारत एक मैम सशक्त और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में और आगे बढ़ेगा।
1: बहुत अच्छा सर, आपसे बातें करके बहुत ही अच्छा लगा, और हमारी श्रोताएं जो सुन रही हैं हमारे कार्यक्रम को, उनको भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनों, भारत आज विकास के एक नए युग की ओर अग्रसर है। देश वर्ष 1947 तक अर्थात स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होने तक एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विकसित भारत का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि ऐसा भारत है जो सामाजिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक, तकनीक और सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिलाएं समाज की आधी आबादी होती हैं, और उनके बिना किसी भी राष्ट्र का समग्र विकास संभव नहीं है। इसलिए विकसित भारत 2047 का निर्माण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। बहनों, महिलाएं परिवार और समाज की आधारशिला होती हैं। एक शिक्षित और सशक्त महिला न केवल स्वयं को आगे बढ़ाती है, बल्कि अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रगति की राह दिखाती है। आज भारत की महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, राजनीति, खेल प्रशासन, सेना और उद्यमिता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रतिभा का परिचय दे रही हैं।

विकसित भारत के निर्माण में उनका योगदान अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देना आवश्यक है। बहनों, किसी भी देश की प्रगति उसकी मजबूत अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। आज महिलाएं उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, कृषि सेवा क्षेत्र, स्टार्टअप और स्वरोजगार में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। स्वयं सहायता समूहों, छोटे उद्योगों, हस्तशिल्प, ऑनलाइन व्यवसाय और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। बहनों, आज विज्ञान और तकनीक का युग है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिक और डिजिटल तकनीक भविष्य के निर्माण का कार्य कर रहे हैं। बहनों, विकसित भारत 2047 का सपना तभी साकार होगा जब महिलाएं इस विकास यात्रा की सहभागी ही नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता भी बनेंगी। शिक्षित, आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सशक्त महिलाएं ही विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति हैं। बहनों, जीवन एक निरंतर यात्रा है। इस यात्रा में हमें अनेक चुनौतियां मिलती हैं, लेकिन जो व्यक्ति बिना रुके, बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, वही सफलता प्राप्त करता है। तो इसी सकारात्मक सोच और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, जो हमें सिखाता है, परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें अपने सपनों और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आइए सुनते हैं फिल्म स्वदेश की प्रेरणादायक गीत यूं ही चला चल, और इस गीत को उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश खेर ने गाया है।

बहनों, अभी हमने सुना गीत यूं ही चला चल, जिसे फिल्म स्वदेश से लिया गया था और इस फिल्म को उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश खेर ने गाया था। बहनों, बरसात का मौसम सभी को पसंद होता है। इस मौसम में वातावरण ठंडा और सुहावना हो जाता है तथा प्रकृति की सुंदरता बढ़ जाती है, लेकिन बारिश के कारण हवा में नमी बढ़ने से त्वचा विशेषकर चेहरे पर कई प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं, जैसे तैली त्वचा, मुहासे से एलर्जी, खुजली और संक्रमण जैसी समस्याएं आम हो जाती है। इसलिए इस मौसम में चेहरे का विशेष देखभाल करना चाहिए। बरसात के मौसम में दिन में 2 से 3 बार हल्के फेस वॉश से चेहरा साफ करना चाहिए। इससे धूल, पसीना और अतिरिक्त तेल हट जाता है तथा त्वचा साफ और ताजा रहती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बरसात में मॉइस्चराइजर की आवश्यकता नहीं होती, जबकि ऐसा नहीं है। त्वचा को मुलायम और स्वस्थ रखने के लिए हल्के पानी आधारित मॉइस्चराइजर का उपयोग करना चाहिए। बहनों, बरसात के दिनों में भी सूर्य की हानिकारक किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए घर से बाहर निकलते समय सनस्क्रीन लगाना लाभदायक होता है। चेहरे की सुंदरता केवल बाहरी देखभाल से ही नहीं बल्कि अच्छे खान पान से भी बनी रहती है। हरी सब्जियां, मौसमी फल और पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखता है। नियमित सफाई, संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी, उचित त्वचा देखभाल और स्वच्छता अपनाकर हम अपने चेहरे को स्वस्थ, सुंदर और चमकदार बनाए रख सकते हैं। स्वस्थ त्वचा ही हमारे आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को निखारती है। बहनों, इसी के साथ समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए स्वीकारें कल्पना शुक्ला का नमस्कार।

0: कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का। लीजिए सुनिए एक सूचना। पुलिस आयुक्त नगरी पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली, धार्मिक, सामाजिक, जाति अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण साझा, लाइक, कमेंट अथवा फॉरवर्ड न करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी एडमिन की होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रामाणिक एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर भी विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति सौहार्द बनाए रखने तथा जिम्मेदारी नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है कार्यक्रम लोक संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है। कार्यक्रम की शुरुआत विकास गीत से। आज के कलाकार हैं कन्हैया लाल शुक्ला। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं कन्हैया लाल शुक्ला के गाए कुछ लोकगीत। पेश है वर्षा गीत, आवाज कन्हैया लाल शुक्ला की।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं कन्हैयालाल शुक्ला के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनिए कहरवा गीत, आवाज कन्हैयालाल शुक्ला की।
1: बने रघुराई हो।

इस गीत कहरवा गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं ज्योति तिवारी के गाए भजन।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, क्षमा कीजिए, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत और आज हम आपको सुनवा रहे हैं ज्योति तिवारी के गायक कुछ भजन।

0: अभी आपने सुनी सूरदास की रचना, आवाज़ थी ज्योति तिवारी की। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। ये कार्यक्रम, आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए एक सूचना। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 12/7/2026 को शाम 7:30 से रात 8:08 तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है धान की उन्नत उत्पादन तकनीक एवं सामयिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान चाहते हैं, वे दिनांक 12 जुलाई 2026 को शाम 7:30 से 8 तक आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर 2660902 और 2660903 पर फ़ोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन, समय और फ़ोन नंबर एक बार पुनः सुने। दिनांक 12 जुलाई 2026 को शाम 7:30 से रात 8 के मध्य फ़ोन नंबर 2660902 या 2660903। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई।

स्वदेश, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। उदित नारायण, मास्टर विग्नेश, बेबी पूजा की आवाज में, शब्द रचना थी जावेद अख्तर की और संगीत यार रहमान का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, कार्यक्रम है फिल्म संगीत। अब सुनिए, परदेश फिल्म का गीत, सोनू निगम, हेमा सरदेसाई, शंकर महादेवन की आवाज में, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत नदीम श्रवण का है।

नमस्कार समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। वहीं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर में मेरा युवा मेरा गौरव सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करेंगे।

0: इस कार्यक्रम में राज्य भर से लगभग 5,000 युवा हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य राज्य के विकास और नीति निर्माण प्रक्रिया में युवाओं को शामिल करना है। इंदौर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में आज आयोजित होने वाला माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव युवाओं के लिए नए अवसरों पर संभावनाओं के द्वार खोलेगा।
1: बीते 2025 को रोजगार और उद्योग वर्ष मनाकर प्रदेश को देश को आगे बढ़ाना है। गरीब, युवा, महिला, किसान सभी वर्ग के कल्याण के लिए काम करने की आवश्यकता है। उसी सिलसिले में युवा और खास करके यूथ कॉन्क्लेव का आज का जो आयोजन है, ये हमारे भविष्य के मध्यप्रदेश के साथ आज का मध्यप्रदेश भी मजबूत बने, युवाओं को सब प्रकार का रोजगार मिले, उनके सपनों को पंख लगे, सरकार की योजनाओं के साथ उनको जोड़े और अब एक क्षेत्र सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने और बड़े पैमाने पर काम जारी है।
0: आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और सतत विकास की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस का विषय है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए। इस अवसर पर प्रदेश में जन जागरूकता और रैली के साथ विश्व जनसंख्या सप्ताह की शुरुआत हुई। इस दौरान 18 जुलाई तक विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में फिलहाल तेज बारिश से कुछ राहत मिलने वाली है। अगले 3 दिनों तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। आज राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर सहित प्रदेश के सभी 55 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने बताया कि 14 जुलाई से कुछ जिलों में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज साउथ एम्पटन में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज इंदौर में आयोजित पुण्योदय प्रकल्प कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भिंड जिले के मुकेश सिंह भदौरिया ने योगा वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश भर में जिले का नाम रोशन किया। मत्स्याखेट पर लगे प्रतिबंध के बीच मत्स्य पालन विभाग ने नर्मदापुरम जिले के डोंगरवाड़ा और सुहागपुर में कार्रवाई कर 2000 किलो से अधिक मछली जब्त की है। शिवपुरी जिले में पसारा एक्ट 2005 के अंतर्गत सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर भर्ती अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जिला रोजगार कार्यालय में भर्ती शिविर का आयोजन किया गया। आगरमालवा कलेक्टर ने कल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में जिले के विद्यालयों में छात्र छात्राओं के नामांकन और अपार आईडी बनाने के कार्य की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरि का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
2: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
2: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
2: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
2: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लीड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
1: आईएनएस महेंद्र गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है।

0: भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
1: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
3: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय में शामिल सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप NCR दिल्ली की बात करें, बाय इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
0: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम

0: विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए है। मानुषोत्तम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं कलाकार फिल्म के गीत से, जिसे स्वर दिया है किशोर कुमार ने, शब्द रचना इंदिवर की और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं ग्राम महसवाड़ी, तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक धाड़े, नीना जी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, अजय किरोटकर, मनीष, मृत्युंजय, शिखा, पूनम देवास से इसी गीत को पसंद कर रहे हैं। शिवाजी चौक राजीम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से इसी गीत को पसंद कर रहे हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लंबी श्रीवास्तव। इसी गीत के फरमाइश करता है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। तो आइए आप सबकी पसंद का गीत सुनते हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म कलाकार से।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म अजनबी से। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत आर डी बर्मन।

पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं कोटवा नारायणपुर बापापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवांडकर राही, सरिता गवांडकर, सिद्धांत गवांडकर, प्रिंस एकांश गवांडकर, सुखी। विश्वकर्मा नगर नागपुर से इसे पसंद किया है शैलेश गवांडकर, वैशाली गवांडकर, श्वेता, सुमित गवांडकर, कुमारी ध्वनि गवांडकर, परी। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का गीत अजनबी फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य, आदित्य, शिवानी शिवाली और मीनू राज शिमाली। औरंगाबाद से इस गीत को की फरमाइश मिली है राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश की। राजावत कॉम्प्लेक्स, नई सड़क, एमपी शाजापुर से इस गीत को सुनना चाहते हैं एमएम राजावत, राज, मधु राजावत, राशि राज, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत एवं उनका समस्त परिवार। आप सब ने फरमाइश भेजी है जिस गीत की, बता दें आपको खुदगर्ज फिल्म का गीत आप लोग सुनना चाहते हैं नितिन मुकेश और साधना सरगम की आवाज़ में। गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत राजेश रोशन का। तो आइए आप सबकी पसंद का ये गीत सुनते हैं जिसे हमने लिया है फिल्म खुदगर्ज से। आवाज़ें नितिन मुकेश और साधना सरगम की।

खुद गर्ज इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना नितिन मुकेश और साधना सरगम की आवाज़ में, शब्द रचना थी इंदिवर की और संगीत राजेश रोशन का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत हम सुनवा रहे हैं जिसकी फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम है दत्तरंगी छत्तीसगढ़ से, भागवत वर्मा लेवई से, गुलाब दास मणिकपुरी रिंगनी से, दिनेश वर्मा लच्छनपुर से, विश्वनाथ साहू मावली सिंगापुर से, सालिक पुजारी भोपाल से, कुसुम ज्योति अर्जुन वर्मा परी वर्मा मिष्टी लक्ष्मी भूपेंद्र वर्मा। करूलाबाद मुरादाबाद से अयूब खान इरम गुड़िया शोएब खान नावेद खान, सिंधोली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल रीता देवी शिल्पा रानी आकाश कुमार। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामिनी वर्मा छत्तीसगढ़ की। आप सब सुनना चाहते हैं जब जब फूल खिले फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इसे एक बार फिर सुन लीजिए, जब जब फूल खिले फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुरी की आवाज़ में, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म जब जब फूल खिले का ये गीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो मित्र दिनेश कुमार। कार्यक्रम के की अंतिम फरमाइश हमने ली है, जिसे भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, रिदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, पोत्रा, मुज्तबा खान, राव भाई, शाहिद भाई, गांधीनगर अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, गौतमनगर जिला नांदेड़ से इसी गीत को पसंद कर रहे हैं प्रभाकर जुंदले, आरती जुंदले। आप सबकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म महबूब की मेहंदी से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व जनसंख्या दिवस पर सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूती नींव है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ किया। इस आयोजन में प्रदेश भर से करीब 5,000 युवा हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल भिंड जिले के लहार से लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। प्रदेश के जेल विभाग ने बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भोपाल में 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। भोपाल के मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में भील जनजाति चित्रकार सुनीता परमार के चित्रों की प्रदर्शनी 30 जुलाई तक रहेगी और प्रदेश में अगले दिन तीन दिन हल्की बारिश का दौर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कहीं भी भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले एक नज़र आज की सांतकालीन सभा के कार्यक्रमों पर। सांतकालीन सभा में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकते हैं शाम 5:33 पर, 6:30 पर और रात 8:15 पर। पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ ये कार्यक्रम होगा शाम 6:00। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का प्रसारण समय है 7:45। रात 8:00 सुनिए सुर्खियों में। 9:30 पर आप सुनेंगे संस्कार भारती और रात 10:00 संगीत के अखिल भारती कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर आर माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच की ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। इस समय दोपहर के 3:01 और 56 सेकंड हुए हैं। हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5:00 अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी भोपाल है, अब सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं कन्हैया लाल शुक्ला के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कबीर की रचना से।

आज हम आपको सुनवा रहे हैं कन्हैया लाल शुक्ला के गाए कुछ गीत। अभी आपने सुना विकास गीत, अब सुनिए वर्षा गीत, आवाज कन्हैया लाल शर्मा शुक्ला की, और प्रसारण आकाशवाणी भोपाल का।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण कार्यक्रम है लोक संगीत और आज हम आपको सुनवा रहे हैं कन्हैया लाल शुक्ला के गाए कुछ गीत। कार्यक्रम का अंतिम गीत है कहरवा गीत, आवाज़ कन्हैया लाल शुक्ला की।

इस कहरवा गीत के साथ ही अब कार्यक्रम लोक संगीत अब संपन्न होता है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं ज्योति तिवारी के गाए भजन। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं कबीर की रचना से, आवाज़ ज्योति तिवारी की।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण कार्यक्रम है लोक संगीत सुगम संगीत और आज हम आपको सुनवा रहे हैं ज्योति तिवारी के गाए कुछ भजन। अभी आपने सुनी कबीर की रचना, अब सुनिए ज्योति तिवारी की आवाज़ में सूरदास की रचना।

और हम आपको सुनवा रहे हैं ज्योति तिवारी के गाए भजन। कार्यक्रम की अब पेश है कार्यक्रम की अंतिम रचना। शब्द रचना है शेष आलोक की और आवाज ज्योति तिवारी की।

ज्योति तिवारी के गाए इस भजन के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। पेश है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लगान फिल्म के गीत से, जिसे स्वर दिया है उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, किशोरी गोवरीकर और साथियों ने। शब्द रचना है जावेद अख्तर की और संगीत ए आर रहमान का।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण कार्यक्रम है चित्रपट संगीत। अभी आपने सुना लगान फिल्म का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है 1942 ए लव स्टोरी से। आवाज़ कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति की, शब्द रचना जावेद अख्तर की और संगीत आर डी बर्मन का।

1942 ए लव स्टोरी। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। शब्द रचना थी जावेद अख्तर की और संगीत आर डी बर्मन का। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है सत्य पे।

सत्ता फिल्म से। आवाज आशा भोसले, दिलराज कौर और साथियों की है। शब्द रचना गुलशन बावरा की और संगीत आर डी बर्मन का।

सावन को आने दो। इस फिल्म का गीत अब सुनिए जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और साथियों की आवाज में। गीत लिखा है गौहर कानपुरी ने और संगीत राजकमल का है।

सावन को आने दो। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा और साथियों की आवाज़ में। शब्द रचना थी गौहर कानपुरी की और संगीत राज कमल का। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं काली घटा फिल्म से, जिसे हमने लिया है। आवाज़ लता मंगेशकर की, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

और कार्यक्रम के अंत में सुनिए ताल फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत AR रहमान का।

ताल फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न होता है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। पेश है इस घंटे की खास खबर।

0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में आयोजित माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ किया। इस आयोजन में प्रदेश भर से करीब 5,000 युवा हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हो रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक में कहा कि परिवहन क्षेत्र को अधिक सुदृढ़, टिकाऊ और आपस में बेहतर रूप से जोड़ने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच नवीनतम तकनीकों और नवाचारों को साझा किया जा रहा है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भिंड जिले के लहार से लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह करते हुए कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रदेश के जेल विभाग ने बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भोपाल में 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज साउथैम्पटन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी भोपाल है, इनसे मिलिए। कार्यक्रम के अंतर्गत अब सुनिए देश के प्रख्यात और बहुचर्चित कवि और गीतकार आलोक श्रीवास्तव से शुभम तिवारी की बातचीत।
2: श्रोताओं, बड़े हर्ष की बात है और हमारा सौभाग्य है कि आज आकाशवाणी भोपाल के स्टूडियोज में देश के यशस्वी और बहुचर्चित कवि और गीतकार श्री आलोक श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। आप कविताओं को ना केवल लिखते हैं, ना केवल उसे प्रस्तुत करते हैं, बल्कि उन्हें जीते भी हैं। आपकी कविताओं में हमें कई तरह की अर्थ छवियां देखने को मिलती हैं और ये छवियां ही हैं जो बरसों से हम पाठकों के, हम श्रोताओं के भाव जगत को सजाती संवारती रही हैं। तो आज अपनी यशस्वी कलम के साथ आलोक जी हमारे साथ हैं। हमारे राम जो गीत है, जो बड़ा चर्चित रहा पिछले कुछ वर्षों में, वो आपकी लेखनी से ही आया है। साथ ही शिव तांडव स्तोत्रम भी आपकी लेखनी से आया है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं उन पर जाऊंगा तो ये पूरा साक्षात्कार ही ऐसा निकल जाएगा। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी भोपाल का विशेष तौर से। और मेरे लिए ये बहुत ही जज्बाती क्षण है कि अपनी रचना यात्रा का आरंभ
2: जी
3: आज से 30-32 साल पहले, 35 साल पहले मुझे रोमांचित करता था। मुझे याद है कि मैं विदिशा से आकाशवाणी भोपाल आता था और यहाँ के कविता पाठ में, यहाँ की गोष्ठियों में, कवियों की उसमें शामिल होता था। तो आज जब जैसे ही मैं इस भवन में आया, एक बहुत चिरपरिचित गंध ने मुझको रोमांचित किया। और एक कहते ना कि जैसे बहुत सारी स्मृतियाँ, बहुत सारे चेहरे आपके सामने से गुजरने लगे। हाँ, ये शायद इसलिए और अधिक है, ये भावना, ये जज्बात इसलिए और अधिक है कि जब आप कुछ बन जाते हैं तो दुनिया आपके साथ होती है
2: जी,
3: लेकिन जब आप कुछ नहीं होते, उस वक्त जो लोग आपके साथ होते हैं उनमें से एक आकाशवाणी भोपाल भी है।
2: क्या बात है।

0: मैं उसका शुक्रगुजार हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ कि देखिए टीयर्स इन माय आइज़ कि इतने सम्मान से इतने स्नेह से आपने मुझे याद किया और इस कारण मैं इन लम्हात को इन जज्बात को जी सका जो लगभग जिसको 30 वर्ष से अधिक हो गए।
1: बिल्कुल, आपकी जो भावनाएं हैं हम उनकी कद्र करते हैं और हमारे श्रोता भी आपकी भावनाओं से भाव विभोर हो गए होंगे आपकी ही तरह। आकाशवाणी भोपाल से जुड़े आपके विशेष संस्मरण रहे हैं, अभी आप थोड़ी देर पहले जब माइक ऑन नहीं था तब आप चर्चा कर रहे थे आपकी लेखनी की, जो आकाशवाणी भोपाल उसमें कहीं ना कहीं माध्यम बना है, थोड़ा सा उस बारे में बताएं।
0: मेरा बचपन विदिशा में गुजरा है।
1: जी
0: उस समय जो सशक्त माध्यम होते थे उनमें आकाशवाणी महत्वपूर्ण किरदार अदा करता था। आकाशवाणी पर आना, अपनी आवाज़ को सुनना, ये था कि जब हम लौट के विदिशा जाते थे तो हमें याद है कि अखबार में खबर तक छपती थी कि आज आकाशवाणी से प्रसारित होगा नगर के युवा कवि आलोक श्रीवास्तव का काव्य पाठ।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: बड़ा
0: एक,
1: रोमांचकारी होता है।
0: हाँ, तो मैंने बताया ना कि वो एक बड़ा जज्बाती लम्हा होता है आपके लिए और जो सचमुच अपने अंदर तक अपनी जड़ों को महसूस करते हैं वो जब ऐसी जगहों पर आते हैं तो भावुक होते हैं। और चूंकि मैं अपने बड़े भाई जो हमारे प्रदेश के हमारे सूबे के ख्यात गीतकार थे आनंद श्रीवास्तव सहर,
1: जी
0: उनके साथ भी आया करता था तो वो स्मृतियाँ भी ताज़ा हो रही हैं, मधुब जी की स्मृतियाँ ताज़ा हो रही हैं जो हमको यहाँ बुलाया करते थे। ये बिल्कुल वैसा है कि यात्रा पर निकला हुआ कोई बालक एक लंबे अरसे के बाद अपनी माँ की गोद में आकर बैठे
1: बिल्कुल
0: तो यात्रा की सारी थकान दूर होती लगती है।
1: बिल्कुल, अब जो संवेदनशीलता मुझे आपकी आंखों में दिखाई दे रही है वो एक कवि की संवेदनशीलता को चरितार्थ कर रही है।
0: जी
1: आपके रचना क्रम पर थोड़ा सा आते हैं, आलोक जी आपका नाम ही आलोक है और ऐसा कहा जाता है कि जो कवि होता है वो ता उम्र प्रकाश की ही साधना करता है,
0: क्या बात है।
1: तो जो आपकी रचनाएं होती हैं क्या उसमें भी जो केंद्रीय विषय होता है वो ये उजाले और अंधेरे के बीच में एक जो द्वंद्व होता है, क्या यही केंद्रीय विषय आप जनरली रखा करते हैं?
0: अगर आप इसको उजाले को संवेदना से जोड़ दें तो और बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कारण ऐसा है कि मैं पेशे से तो पत्रकार हूँ और पैशन से पोएट हूँ। एक सवाल जो मेरे सामने हमेशा आता है कि जैसे आपने अभी द्वंद्व की बात की तो एक द्वंद्व होता है, एक सवाल आता है सामने कि आप पत्रकार हैं और आप कवि भी हैं तो इन दोनों में द्वंद्व नहीं होता। तो मैं इसका उत्तर ऐसे देता हूँ कि द्वंद्व जो है वो ऐसी चीज़ों में होता है, ऐसे पेशों में होता है जो प्रतिस्पर्धा रखते हों। मुझे लगता है कि एक कवि और एक पत्रकार दोनों रूप से अगर आप बहुत अच्छी दृष्टि नहीं रखते हैं, आप बेदारी नहीं रखते अपने आसपास के समय समाज की, तो आप ना तो बहुत अच्छे पत्रकार हो सकते हैं ना बहुत अच्छे रचनाकार हो सकते हैं। रही बात जो आपने उजाले अंधेरे की बात की, उसमें मैं समझता हूँ कि संवेदना जो है ना वो किसी भी कलाकार के लिए उसके सृजन का पहला और अंतिम प्राण तत्व है। अगर वो संवेदनात्मक दृष्टि नहीं रखता होगा तो वो कहीं ना कहीं चूकेगा, क्योंकि जिस संवेदना से आप समाज को समय को देखते हैं वही तो आपको विवेक दिया है ना,
1: जी
0: सृष्टि ने आपको रचनाकार बनाया, रचनाकार बनाया, रचनाकार हम परमपिता परमात्मा के लिए कहते हैं, तो इतना बड़ा डेजिग्नेशन जब परमात्मा ने आपको दिया है रचनाकार का तो आपके अंदर संवेदना भी होनी चाहिए। और एक बात जो मैं यहाँ कोट करूँगा, मेरी माँ हमेशा कहती थी, वो ये कहती थी कि अपने अंदर का जो बालक है उसे कभी नहीं मरने देना, समझदार हो अच्छी बात है पर वो जो बालक से उनका आशय था, तो मैं बहुत बाद में समझा कि वो ऐसा क्यों कहती थी, क्योंकि जो शिशु होता है जो बच्चा होता है वो बहुत संवेदनशील होता है, तो उनका अर्थ बालक से संवेदनशीलता को जोड़ते हुए था
1: बिल्कुल
0: कि अपने अंदर का जो बच्चा है वो उन मत मरने देना वरना तुम्हारी दृष्टि
1: बिल्कुल
0: वो
1: क्षीण हो जाएगी।
0: क्षीण हो जाएगी। तो मुझे द्वंद्व से कहीं अधिक ये लगता है कि मेरे अंदर वो सेंसिटिविटी हो जो संवेदना मेरे समय और मेरे समाज को देखने की दृष्टि संपन्न करती है। तो मुझे द्वंद्व नहीं लगता, मुझे तो लगता है

0: कि समाज में जितना भी अंधेरा है उसे मैं अपनी रचनाओं के आलोक से पाट दूं, इसलिए मैं हर क्षण को जीता हूं। आपने महसूस किया होगा कि जैसे ही मैं इस कमरे में आया तो मेरे भाव परिवर्तित हो रहा
1: जी।
0: तो ये जो जीने की जो वो है ना, अगर मैं उस लम्हे को नहीं जीता तो शायद मैं भावुक नहीं होता। तो इसीलिए एक रचनाकार के तौर पे मैं संवेदनाओं को ओढ़ता बिछाता हूँ, और मेरा ऐसा अखंड विश्वास है कि जो संवेदनशील व्यक्ति होता है उसके अंदर चीज़ों को जल्दी समझ के और सुधारने की
1: क्षमता होती है जी।
0: ऐसा मेरा मानना है।
1: आलोक जी, हर कवि का अपना एक आदर्श होता है और उस आदर्श का वो अनुगमन करके, उसका अनुकरण करके धीरे धीरे अपने स्वधर्म को पहचानता है, अपनी मौलिकता को पहचानता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके आदर्श कौन रहे हैं जिससे जो धीरे धीरे आपको पहचान मिली है वो आगे बढ़ती गई।
0: देखिए, मेरे साथ सबसे अच्छा जो, जैसा मैं समझता हूँ और मुझे लगता है कि ये भोपाल, विदिशा और इस अंचल से जुड़े हुए
1: जी
0: हर रचनाकार की विशेषता है, इस अंचल की एक बहुत ही बड़ी खूबसूरती है और वो है हिंदी उर्दू का मिला जुला परिवेश, जिसको उर्दू में हम मुश्तरका तहजीब कहते हैं या गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। आप देखिए यहाँ के लोगों का, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका एक्सेंट देखिए, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट जो दूसरे प्रांतों में जिस तरह बोला जाता है, कोई ना कोई उसमें आरोह अवरोह होता है, हमारे मध्य प्रदेश में जो उच्चारण है, जो बोलने की शैली है वो कितनी साफ सुथरी है। हाँ, मालवा के कोई व्यक्ति मिलेंगे आप तो आप कह देंगे कि आप इंदौर उज्जैन के हैं क्या, भोपाल का जो टिपिकल भोपाल का एक्सेंट है उससे भी आप पकड़ लेते हैं, पर अगर आप मोटा मोटी देखें एक मानक के तौर पे तो हमारे यहाँ हिंदी और उर्दू बहुत साफ बोली जाती है
1: जी।
0: तो जब मेरा जिसको मैं कहूँगा कि मेरी बुनावट हो रही थी, जब मैं बन रहा था अपने अंदर, मेरे अंदर कवि जन्म ले रहा था, ये मेरी खुशकिस्मती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे ऐसे लोगों को पढ़ने का मौका मिला कि जिनको बचपन में मैंने जब पढ़ा
1: जी,
0: और जब मैं बड़ा हुआ और कवि बना तो फिर उनके साथ पढ़ा, फिर चाहे वो डॉक्टर बशीर बद्र साहब हों, निदा फाजली साहब हों, जावेद अख्तर साहब हों, गुलजार साहब हों, तो ये ऐसे नाम थे, हिंदी बेल्ट के नीरज जी हों,
1: दुष्यंत जी को तो
0: मैं बहुत ही प्रणम्य भाव से निवेदन करता हूँ, दुष्यंत जी की पुण्यतिथि और मेरा जन्मदिन एक ही दिन है, 30 दिसंबर को, तो इसे भी मैं अपना लगता है कि कोई हिंदी गज़ल का कोई लिंक जुड़ा हुआ है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: ये जो हिंदी उर्दू के बड़े शिखर पुरुष रहे, जो मेरे, मैं जब पोएट्री के तौर से या कवि के तौर से जब मैं आंखें खोल रहा था तो जो मुझे लेजेंड्स दिखते थे, कोई 10 या 15 बरस बाद मैं फिर उनके साथ बैठा हुआ देख रहा था खुद को, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे अच्छे बड़े लोगों की सोहबत का, शहद चखने का मौका मिला, जिससे मेरी ज़बान और मेरा डिक्शन मीठा हुआ। तो मेरा शेर भी है कि असर बुज़ुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है, पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है।
1: क्या बात है। बात को आगे बढ़ाते हैं आलोक जी, और जानना चाहेंगे, थोड़ी सी बात करना चाहेंगे जो नवोदित पाठक हैं या नवोदित लेखक हैं उनके बारे में। हम यहाँ पर एक तरीके से दो वर्ग देखते हैं, एक वर्ग तो ऐसा है जो बहुत अच्छा पढ़ रहा है और पुस्तक मेलों में हमें भीड़ दिख रही है कि पुस्तक की जो पठनीयता है वो बढ़ रही है, लेकिन एक दूसरा वर्ग है जहाँ पर हम देखते हैं कि पठनीयता का संकट थोड़ा सा गहराता जा रहा है और बिना पढ़े या बहुत कम पढ़ लिख कर लोग लिखने में आ जाते हैं और फिर उसी लेखन को, वो जो थोड़ा बहुत उन्होंने लिखा है उसी को सर्वमान्य करना चाहते हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं और क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों से?
0: देखिए, शास्त्रीय संगीत हमारे भारत की जो कला परंपरा है उसका प्राण तत्व है। शास्त्रीय संगीत एक कठोर साधना मांगता है। आप बहैसियत गायक पहचाने जाएं ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप बहैसियत प्रतिष्ठित गायक पहचाने जाएं या प्रतिष्ठित शास्त्रीय गायक पहचाने जाएं, इसके लिए आपको रियाज की ज़रूरत है। मैं साहित्य

0: को, चाहे वो हिंदी हो या उर्दू हो, मैं शास्त्रीय संगीत की तरह मानता हूँ। आप जितना पढ़ेंगे उतना ही अच्छा गढ़ेंगे। और मुझसे बहुत पहले डॉक्टर बशीबत साहब ने एक बात कही थी कि 95% पढ़ो और 5% गढ़ो।
1: क्या बात है,
0: अब हो उल्टा रहा है, ठीक
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा, दूसरी बात, ये जो दूसरी कौम आई है अभी अभी, जो रील लाइफ से आई है, तो देखिए क्या है, जो रील लाइफ है वो कितने ही मिलियंस में तकसीम हो जाए, वो रियल लाइफ का मुकाबला नहीं कर सकती। क्योंकि रियल लाइफ जो है वो मानवीय संवेदनाओं, अनुभवों से जुड़ी हुई है। आप रियल लाइफ में मिलियंस और बिलियंस की रीच तो पा लेंगे, लेकिन जो दिलों को छू के बैठ जाने का जो एक आर्ट है ना, उसे आप अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके लिए तो आपको, जैसा मैंने पहले अर्ज किया,
1: जी
0: पहले बताया आपको, कि आपके अंदर एक अच्छी दृष्टि होनी चाहिए, आपका आपके समय में क्या लिखा जा रहा है, ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। राइटिंग एक पैशन है,
1: बिल्कुल
0: वो आप उसको सतही छू के नहीं गुजर सकते। यहाँ चलो जा रहे हैं न्यू मार्केट चाय पीने, तो थोड़ा सा यहाँ भी टहल लेते हैं रविंद्र भवन में क्या हो रहा है। नहीं, रविंद्र भवन में अगर कोई शास्त्रीय संगीत या कोई बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यिक कार्यक्रम हो रहा है, तो उसको आपको अलग से बैठ के देखना, सुनना पड़ेगा। पुस्तक और अध्ययन और साहित्य वही है कि अगर आप अच्छा पढ़ेंगे नहीं
1: जी
0: तो अच्छा गढ़ेंगे नहीं। फिर आप वैसे ही गढ़ेंगे कि आएंगे, एक रील बनाएंगे, वायरल हो जाएगी। आप जैसे ही कुछ लोग होंगे जो आपको प्रसिद्धि दे देंगे,
1: बिल्कुल।
0: आप आत्ममुग्ध होकर निकल जाएंगे।
1: ये जो आत्ममुग्धता की आपने बात की, इससे एक कदम आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक समस्या और देखने को मिलती है नवोदित लेखकों में। अभी पिछले दिनों आकाशवाणी स्टूडियोज़ में ही प्रसिद्ध व्यंग्यकार पद्मश्री डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी आए हुए थे और श्रीलाल शुक्ल जी पर हम उनके साथ एक भेंट
0: चर्चा
1: वार्ता
0: कर रहे
1: कर
0: थे।
1: रहे थे। तो जब उनसे हमने निवेदन किया कि श्रीलाल जी के संस्मरणों को साझा करें, तो उन्होंने एक बात कही जो श्रीलाल जी इनको बता रहे थे शिक्षा स्वरूप। और श्रीलाल जी ये कह रहे थे कि मैंने अपने 10 साल जो हैं वो राग दरबारी के नशे में ख़राब कर दिए, उसके सुरूर में ख़राब कर दिए, कि मैं इतना उससे बंधा रहता था कि उससे बाहर ही नहीं निकल पाया। और 10 साल बाद मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने अपना रचनाधर्मिता का समय ख़राब कर दिया। यही स्थिति आपको भी देखने को मिलती होगी आपके आसपास के ऐसे लेखकों में जो जिन्होंने नई नई सफलता का स्वाद चखा है, उनके बारे में क्या कहेंगे?
0: नहीं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मैं अपने अनुभव बताऊँगा। कि एक तो मैं सबसे पहले तो श्रीलाल शुक्ल जी ने जो ज्ञान जी से कहा, बिल्कुल सही कहा। हमने चर्चा के शुरू में रचनाकार शब्द इस्तेमाल किया था, ठीक है। रचनाकार क्या करता है? उसका कार्य है सतत क्रिएट करते रहना। परमात्मा अगर अपनी अपना सृजन रोक देगा तो सृष्टि का चलना ही मुश्किल हो जाएगा।
1: बिल्कुल
0: मैं बहुत आस्थावान हूँ इन मामलों में, मैं एक डिवाइन रूल को फॉलो करता हूँ, मानता हूँ। रचनाकार अगर अपनी एक रचना पर अड़के रह जाएगा,
1: जी
0: टिक के रहे, मैंने तो साहब ये शिव तांडव स्तोत्र जो है इसका भावानुवाद ऐसा कर दिया है कि बस नहीं, अभी रुद्राष्टकम रखा हुआ है, करो, ठीक है।
1: बिल्कुल
0: उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्रम रखा हुआ, करो। उसके बाद दूसरे मंत्र हैं जो बहुत सहज हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, तो युवाओं को समझ आएंगे और उनको उसका अर्थ पता चलेगा, तो वो शायद और गहरे जुड़ जाएंगे।
1: जी
0: तो मुझे लगता है कि जो क्रिएटिव व्यक्ति जो होता है वो सतत प्रवाहमान होता है। और दूसरी बात कि अगर आप क्रिएटिव हैं, आपको क्रिएशन का भूत सवार है, तो आप कैसे टिक सकते हैं? बिल्कुल, वो हमारे क्लासिक हैं, हमारे अग्रज हैं, वो सही कह रहे हैं। मैं उनकी उनसे पूर्णतः सहमत हूँ। आप ये सोचो कि आपने जो आज क्रिएट किया है उससे बेटर आप क्या कर सकते हो,
1: बिल्कुल
0: अपने ही रूल्स तोड़ो। मैं आपको बताऊं, मेरी माताश्री जो थी वो मेरी मेरे कवित्व की बहुत बड़ी प्रेरणा थी। प्रेरणा क्या थी? उन्हीं के कारण मैं कवि बना। जब उनकी मृत्यु हुई 1997 में, मैं डिप्रेशन में आ गया
1: अच्छा
0: और लगभग इसी भोपाल में रहता था। तो 3 साल तक मैंने कुछ नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा मैंने। तो मेरे एक संगीतकार मित्र हैं, मैं हमेशा कोट करता हूँ उनको, मिलिंद जोशी,
1: अच्छा
0: मराठी सिनेमा के बहुत बड़ा हस्ताक्षर हैं
1: जी
0: और बहुत प्रतिष्ठित नाम है।

0: उन्होंने मुझसे कहा कि जब तुमसे कुछ क्रिएट ना हो तो तुम रिक्रिएट करो, जो तुमने क्रिएट कर रखा है उसी को देखो,
1: क्या बात है,
0: उसकी आलोचना करो खुद, उसकी विवेचना करो, उसकी समीक्षा करो और फिर उसे नया करो। तो आप मेरी किताबें जो हैं आमीन हैं या आसान हैं या आफरीन हैं, इन किताबों को या मेरी रचनाओं को देखेंगे तो जो रचना मेरी 1997 में प्रकाशित है वो आपको अब वैसी नहीं मिलेगी। उसमें एक दो शेर कोई नया जुड़ा होगा, कोई पुराने शेर की रिपेयरिंग हो चुकी होगी, क्योंकि मनुष्य अपने आप में भी परिष्कृत होता है ना।
1: बिल्कुल,
0: आयु बढ़ती है तो आपका वेट भी बढ़ता है, वेट घटता भी है, चेहरा भी बदलता है,
1: नदी हर क्षण बदलती है,
0: नदी हर क्षण बदलती है। क्या होता है कि बदलाव जो आपके अंदर है, जब वो आपके अंदर शारीरिक रूप से आ रहा है तो वो मानसिक रूप से भी आएगा।
1: बिल्कुल,
0: वो संवेदनात्मक रूप से। कल मुझे शीशे के उस तरफ देखने की मेरी दृष्टि अलग थी, आज मैं 25 साल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रहा हूँ, प्रतिष्ठित चैनल में रह चुका हूँ, तो अब मेरी दृष्टि है, कंसोल है, वो बैठे हैं, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये है। तो वो जो अनुभव है जीवन का, जिसको हम जीवन अनुभव कहते हैं, वो रचना में भी जुड़ता है, तो वो परिष्कृत करता रहता है आपको। रुकना तो नियति है ही नहीं ना, मतलब आप रुकने का कर्म तो आपको करना नहीं है। मनुष्य नहीं रुकता, हम ही चलते रहते हैं, उम्र बढ़ती रहती है। गुलजार साहब का बड़ा अच्छा शेर है इस पर
1: जी।
0: वो उम्र कम कर रहा था मेरी, वो उम्र कम कर रहा था मेरी, मैं साल अपने बढ़ा रहा था।
1: क्या बात है, क्या बात है। श्रीलाल जी ने भी कहा है ना कि आदमी को समय के साथ बड़ा होना चाहिए, बूढ़ा नहीं।
0: हाँ बिल्कुल।
1: आपके रचना कर्म पर एक बार फिर लौटते हैं और एक
0: तो अभी तक क्या कर रहे थे,
1: एक अभी तक हम नवोदित लेखकों के बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहे थे, थोड़ा सा आपकी कविताओं में थोड़ी सी बारीकियों पर बात करना चाह रहे हैं। कुछ कविताएं जो हैं वो जो रची जाती हैं उसमें एक रसिक हृदय होता है, और कुछ कविताएं जो हैं वो तात्कालिक सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर रची जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी रचा जाता है या जो भी कवि रचना कर्म करता है उसके अपने कुछ उपकरण होते हैं। आपकी कविता में आप किस प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं?
0: मैं विषय को पहले देखता हूँ, और सबसे पहले तो ये कि मैं दो तरह की रचनाएं करता हूँ। देखिए, मेरा पेशा जो है वो फिल्म राइटिंग भी है ना, मैं लिरिसिस्ट भी हूँ और एक मैं पोएट भी हूँ। तो अब उपकरण मेरे लिए क्या है कि अगर मुझे कोई गज़ल कहनी है अपने लिए, और या फिर मुझे कोई ऐसा गीत या ऐसी नज़्म कहनी है जिसका कोई असाइनमेंट नहीं है, तो उसमें तो फिर वो मैं उस जॉनर में जाऊं, सोचूं, कोई चीज़ मुझे मुतासिर करे, प्रभावित करे, आपसे मिलना मुझे अच्छा लगा, हो सकता है एक आध शेर मैं आपके लिए कह लूं, इस पर तो मेरा अधिकार है
1: जी।
0: ये तो मैं इसको आने देता हूं, इसको मैं बहुत फोर्स नहीं करता। तो आप ये कहिए कि इसमें मेरा जो उपकरण है वो संवेदना है, आपने मुझे कितने अच्छे से छुआ, कितने अच्छे से प्रभावित किया, मुझे कितना अच्छा लगा आपके साथ, आपका ऑरा कैसा है
1: जी,
0: मेरा बात करने का मूड है या नहीं है। अब हो सकता है कि मैं घड़ी देखूं कहूं नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ी देर बाद बंद करते हैं, ठीक है। और एक ये है कि मैं आपसे बात करने के लिए स्टूडियो में दाखिल हुआ कि बस 10 मिनट में निकलूँगा, और आपका ऑरा इतना अच्छा लगा, आपकी बातें इतनी अच्छी लगी कि हम पता चला आधा घंटा एक घंटे बात करते रहे। तो ये ही रचना के साथ भी होता है कि मुझे किस चीज़ ने छुआ, और उसकी कोई उसका कोई उपकरण नहीं होता। मैं आपको एक बहुत जिसको कहते हैं ना साहित्य में राजनीति के दौर से गुजर रहा था, कोविड के आसपास हुआ ये कि सुबह 5 बजे कुछ शेर आने शुरू हुए। मैं एक दो शेर सुना भी देता हूँ कि है ज़माना किस कदर मेरे ख़िलाफ़, है ज़माना किस कदर मेरे ख़िलाफ़, और उस पर तू इधर मेरे ख़िलाफ़,
1: क्या बात
0: हो गए दीवारों दर मेरे खिलाफ, हो गए दीवारों दर मेरे खिलाफ, मैं हूँ घर में और घर मेरे खिलाफ,
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: मैं भी मैं हूँ, कौन सा मर जाऊँगा, होने दो सब हैं अगर मेरे खिलाफ, और हर खबर से बेखबर हूँ आजकल, उड़ रही है ये खबर मेरे खिलाफ,
1: क्या बात।
0: अब ये जैसे वर्षा होती है ऐसे उतरे सुबह 4:30-5 बजे। मैंने अपनी पत्नी को उठाया और उनसे पूछा, मन का यार ये बड़ी जल्दी हो गई ये गज़ल। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं करीब 1-1.5 महीने परेशान रहा, क्योंकि इतनी रफ्तार से आए थे ये शेर, और बिल्कुल बगैर का के कू

0: ठीक है, तो मैंने अपने बहुत सारे जो मेरे जिनके साथ में मुशायरे वगैरह में और अदबी सफ़र करता हूँ, मैंने उनको फ़ोन लगाया और उन्हें शेर सुनाया ये वाले कि भाई देखना कहीं किसी की है तो नहीं ये गज़ल मैंने सुन रखी हो
1: जी, जी, जी,
0: मेरे आहंग में, मेरे सबकॉन्शियस में पढ़ी हो,
1: और वो निकल
0: अचेतन में पढ़ी हो और वो निकल आई हो। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि देश के मूर्धन्य साहित्यकार जिनमें मैं नाम ले रहा हूँ, मंसूर उस्मानी साहब, अकील नुमानी साहब, वसीम बरेलवी साहब, इनको सबको मैंने फ़ोन लगा दिए कि साहब ये 15-20 मिनट में 5-7 शेर हो गए,
1: जनरली ऐसा होता नहीं,
0: जनरली ऐसा होता नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई वो तुम जिस दौर से गुजर रहे हो उस दौर ने तुम्हारे यहाँ अतिक्रमण कर लिया, आमद हो गई।
1: बिल्कुल,
0: अब ये उसका बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है कि वो आ गया
1: तात्कालिक परिस्थितियों की।
0: हाँ, तो आ गई, ये हो गए मेरे इमोशंस। अब आइए कि मान लीजिए महाकुंभ का गीत आ गया जो बड़ा वायरल हुआ।
1: बिल्कुल,
0: अब बतौर गीतकार मेरे पास एक असाइनमेंट आया कि साहब 144 वर्षों बाद ऐसा सुयोग बनाया कि जो इलाहाबाद प्रयागराज है वहाँ महाकुंभ होने जा रहा है और इसका जो एंथम है

0: हाँ तो आ गई, ये हो गए मेरे इमोशंस। अब आइए कि मान लीजिए महाकुंभ का गीत आ गया जो बड़ा वायरल हुआ।
1: बिल्कुल
0: अब बतौर गीतकार मेरे पास एक असाइनमेंट आया कि साहब 144 वर्षों बाद ऐसा सुयोग बनाया कि जो इलाहाबाद प्रयागराज है
1: बिल्कुल
0: वहाँ महाकुंभ होने जा रहा है और इसका जो एंथम है, इसका जो शीर्षक गीत है, वो आपको लिखना है। जब आप लिख लेंगे तो फिर देखेंगे कि किससे गवाना है। बाद में उसे कैलाश खेर जी ने गाया। अब वो असाइनमेंट है। अब उस असाइनमेंट में आपको ऐसे दाखिल होना होता है जैसे आपसे बात करने के लिए मैं इस कमरे में दाखिल हुआ। तो फिर मुझे उसके लिए पढ़ना भी पड़ता है कि आखिर महाकुंभ की विशेषताएं क्या क्या हैं। छोटा सा गीत है, 3 मिनट
1: बिल्कुल
0: का, 3.5 मिनट का।
1: जी
0: उसमें आपको वो कूचे में सागर समेटना है,
1: बिल्कुल
0: वो है असाइनमेंट। तो वहाँ उपकरण क्या लगा? वहाँ उपकरण ये लगा कि इधर आप देखिए, फिर कितना कितनी खूबसूरत बातचीत है कि आपने एक प्रश्न किया था मुझसे नए जनरेशन के पोएट्स का।
1: जी
0: अब यहाँ वो एक्सपीरियंस काम आता है।
1: बिल्कुल
0: कौन सा? जो आपने पढ़ के आए हो आप, जो आपके गुरु ने कहा कि 95% पढ़ो, 5% गढ़ो।
1: बिल्कुल
0: तो यहाँ जब आपको ये असाइनमेंट मिला कि जहाँ आपको एक डिमांडिंग सॉन्ग लिखना है, तो वहाँ ये वाली जो स्टडी है, जो रियाज है, वो यहाँ काम आएगा। ये किए बिना आप ये नहीं कर सकते, है ना?
1: निश्चित
0: जैसे अभी स्टूडियो के बाहर एक बालक था, वो पूछ रहा था कि मुझे लिरिकल नहीं
1: बिल्कुल
0: आता। तो वो लिरिकल नहीं आएगा उसके पास तब तक जब तक वो लिरिक्स पढ़ेगा नहीं। उसको सुनना भी पड़ेगा, उसको पढ़ना भी पड़ेगा, तब आएगा। इसीलिए आप देखिए हमारे हिंदुस्तानी सिनेमा संगीत के गानों के जितने सुपरहिट गीत हैं वो आपको क्यों ज़बानी याद है? आज सोचा तो आंसू भर आए, कैफी साहब, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, दिल की
1: बिल्कुल
0: नाजुक रगें टूटती हैं, याद इतना भी कोई ना आए। रीज़न, ये लोग इतना पढ़ चुके थे, इतना पढ़ चुके थे कि कविता का जो छंद है और वो जो संगीत के जो सुर हैं वो सब गड्ढमड्ढ हो गए थे, घुल मिल गए थे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? इस लोक को तो साहिर,
1: जी
0: इस लोक को तो अपना ना सके, उस लोक में भी दुख पाओगे। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या? रीतों पर धर्म की मोहरें हैं, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे?
1: बहुत बढ़िया,
0: है ना?
1: मुंह
0: कभी
1: जबानी
0: कभी
1: याद।
0: मेरे दिल
1: जी
0: में ख्याल
1: जी
0: आता है कि
1: जी
0: जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजर न पाती तो शादाब हो भी सकती थी।
1: बिल्कुल
0: तो ये इसमें उस कवि का, उस रचनाकार का यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है पढ़ने का,
1: वो काम आ
0: वो
1: रहा है।
0: काम आता है।
1: बिल्कुल हम लोग बहुत समृद्ध हुए, आपने जो इतना विश्लेषण किया और एक इनसाइट्स हमारे श्रोताओं को और हमें भी दी।
0: बहुत शुक्रिया।
1: हम जानना चाहेंगे आपसे कि इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आगे के प्रोजेक्ट्स में आप क्या क्या करने वाले हैं।
0: देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ एक एक NDA होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ठीक है?
1: अच्छा
0: तो हमारी चीज़ें जब तक नहीं आ जाती,
1: जी
0: और अक्सर ऐसा होता है कि चीज़ें आ गई और फिर वो उस तरह का आकार नहीं लिया। तो हाँ, लेकिन ये है कि इसी प्रदेश में और देश में दो बड़े गीत आ रहे हैं जो बहुत जल्द आपको सुनने के लिए मिलेंगे, तो उसको आने दीजिए।
1: जी अंत में हम निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि आपकी कोई प्रतिनिधि रचना जो है उसका पाठ हमारे श्रोताओं के लिए।
0: मैं जब यहाँ आता था आकाशवाणी में,
1: जी
0: जब निरंतर आता रहता था, तो एक रचना मैंने यहाँ सुनाई थी जो मेरी माँ पर थी, अम्मा। तो आज लगभग 30 साल बाद मैं आया हूँ, तो मैं अब जब आया हूँ तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना इन्हीं माइक्स पर,
1: जरूर
0: ये माइक जो हैं उनका रचनाओं को पहचानते होंगे।
1: जी जरूर
0: तो धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा, धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा, सूनापन, तन्हाई अम्मा। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि हम पंच तत्व से बने हैं। उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है, उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा, आतिश, अंगारे, ऑल रिलेशंस। सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा, आतिश, अंगारे, झरना, दरिया, झील, समंदर, भीनी सी पुरवाई
1: अम्मा।
0: अम्मा। और चूंकि मैं संयुक्त परिवार में पला बड़ा हूँ विदिशा भोपाल में, तो उसकी एक कथा व्यथा है यह कि घर में जीने रिश्ते

0: मैंने लाखों बार उधड़ते देखे, घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे, चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा।
1: क्या बात।
0: और बाबूजी गुजरे, आपस में सब चीज़ें तकसीम हुई, तब बंटवारा हो गया। बाबूजी गुजरे, आपस में सब चीज़ें तकसीम हुई, तब मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से आई अम्मा।
1: क्या बात, क्या बात है आलोक श्रीवास्तव जी। जो आपसे इतनी देर बात हुई और जो आपकी रचना को हमने सुना, हमारे श्रोताओं ने सुना, उसके बाद यही कहा जा सकता है कि जो आपका रचना कर्म है वो कर्म नहीं है, वो धर्म भी है। और ऐसा कहा जाता है कि जब भी कर्म धर्म से मिल जाता है तो वह अपने लक्ष्य तक, अपने गंतव्य तक जरूर पहुंचता है।
0: हाँ, कर्म धर्म से मिल तो जाए, पर कर्म धर्म से मिले मर्म के साथ,
1: क्या बात
0: तब
1: है,
0: वो तब
1: बिल्कुल
0: वो लंबी यात्रा करता है।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने कोशिश हमेशा यही की कि मेरा जो कर्म है वो धर्म से जुड़े लेकिन मर्म के साथ।
1: आपसे निवेदन करेंगे कि आप इसी तरह हम सभी का, सभी पाठकों का, सभी श्रोताओं का मार्गदर्शन करते रहें। आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें। पूरे आकाशवाणी भोपाल परिवार की तरफ से आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर कि आपने अपनी अपनी जड़ों से जुड़ने का मुझे एक मौका और दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे इनसे मिलिए कार्यक्रम के अंतर्गत देश के प्रख्यात कवि और गीतकार आलोक श्रीवास्तव से भेंट वार्ता। बातचीत कर रहे थे शुभम तिवारी। ये आकाशवाणी भोपाल है। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। अब सुनिए संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक हंसना मना है की 10वीं कड़ी।

दोस्तों नमस्कार, आप सभी को आज की इस खास और बहुत खास महफिल में शामिल करते हुए मुझे यानी आपके दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी को बेहद खुशी हो रही है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मनमांगी मुराद मिल गई हो, मीठे मीठा रसगुल्ला मिल गया हो। यूं तो कहने को इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है हंसना मना है, मगर हमारी कोशिश आपको ज्यादा से ज्यादा हंसाने की होगी। एक थानेदार साहब थे, रिटायर्ड थानेदार, यानी सर्विस से फुर्सत हो गए थे और बड़ा मजा ले रहे थे घर में रिटायरमेंट का, बाल बच्चों के साथ बड़ा आनंद ले रहे थे। एक बड़ी बढ़िया सी बात यह है उन थानेदार में कि उनको संगीत का बड़ा शौक था, बड़े प्यारे गाना वाना सुनते थे, रोज आकाशवाणी सुने, दिन भर फिल्मी गाने सुने, गजलें सुने, लोक संगीत सुने, बड़े शौकीन संगीत के। उनको एक दिन कुछ ऐसा लगा कि एक नौकर रख लिया जाए घर में जो मेरी मदद करे, घर के दूसरे कामकाज भी करे। ठीक है साहब, पेपर में एक विज्ञापन निकलवा दिया गया कि एक कर्मचारी की आवश्यकता है, मिलिए। उन्होंने थानेदार साहब ने अपना पता उस पेपर में दे दिया। अब एक गोपाल नाम का व्यक्ति उस अखबार को, उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ के, विज्ञापन को पढ़ के उनके घर पहुंचा। जब घर तो पहुंचा, वार्तालाप शुरू हो गई। कहले कहिए। कहले थानेदार साहब नमस्कार, मेरा नाम गोपाल है और आपका विज्ञापन पढ़ के मैं आपकी सेवा में आ गया हूँ। कहले ठीक है, आप हमारे यहाँ काम करने आए हैं, बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हम थानेदार रहे हैं पहले, और उधम हमारे घर में उधम नहीं करिएगा, वो चोरी वगैरह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पुराना थानेदार हूँ। तो गोपाल बोलता साहब हमने आज तक चोरी नहीं की, हमने तो झूठ भी नहीं बोला, चोरी भी नहीं की, आप चिंताओं से मुक्त रहें, आप हमको अपने घर में बस सर्विस में सेवा में ले लें बस। तो थानेदार साहब बोलते ठीक है, आप आओ नौकरी में, कल से आ जाओ आप। लेकिन बात यह है कि हम हैं संगीत के शौकीन, वो बहुत ज्यादा संगीत के शौकीन हैं, बस हमको 24 घंटे एक ही नशा रहता है संगीत का। आकाशवाणी हम दिन भर सुनते हैं और जब जब समय मिलता है हम दूरदर्शन देखते हैं।

उसमें भी गाने बहुत अच्छे अच्छे आते, बड़े प्यारे प्यारे भजन आते हैं, हैं? कहले ठीक है साहब, जो आप देखते वो हम भी देखेंगे। नहीं नहीं, तुमको तो काम करना होगा, देखने का समय सिर्फ हमारे पास है, हैं? चलो ठीक है, तो शर्त ये रहेगी हमारे आपके बीच में मिस्टर गोपाल के, जैसे कोई आ रहा है हमारे घर में तो तुमसे हम बोलेंगे भाई कौन आया, जरा दरवाजे पे जाओ, तो तुम उसको देखना और हमको गाना गा के बताना कि वो कौन आया है। यानी समझा नहीं थानेदार साहब? ओहो, क्या उसमें समझाना, कोई आ रहा है हमको गाना गा के बताओ कि वो कौन आया है। अगर हमने कोई चीज तुमसे घर में बुलवाई है, ये ले आओ वो ले आओ, तो तुम सब गाना गा के गाना गाते गाते आओ, फिर हमको दो, समझ गए? तो गोपाल थोड़ा सा समझ गया, थोड़ा नहीं समझा, उसने हल्का सा झूठ बोल दिया, कहा अरे बिल्कुल साहब, अरे वाह वाह थानेदार साहब, बड़ा छोटा सा आपने छोटी सी बात कही है, गाना गा के बात करने की है ना, कोई आ रहा है गाना गा के बताओ, कोई जा रहा है गाना गा के बताओ, आप चिंताओं से मुक्त रहे थानेदार साहब। अरे हम तो संगीत जानते हैं, हमने 5 साल 7 साल शास्त्रीय संगीत सीखा है। अरे फिर तो गोपाल बहुत अच्छी बात है, कल से तुम्हारी सर्विस पक्की, 1-15 दिन महीने भर काम करो, उसके बाद तुम्हारी तनख्वाह के बारे में विचार किया जाएगा। ठीक है साहब, इस तरह से एक दिन तो निकल गया। दूसरे दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया तो थानेदार साहब ने गोपाल को बोला, अरे गोपाल, अरे जरा देखना भाई, दरवाजे पे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, जरा देखो भाई कौन आया है। जी थानेदार साहब, जा रहा हूं आ रहा हूं। उसने दरवाजा खोला, जो सज्जन थे उनको देखा, अब बता रहा है वो थानेदार को कौन, गोपाल की कौन आया है, किस तरह से गाना गा के।

उसको बोलो गोपाल कि वो बाद में आएगा, अभी कुछ मूड नहीं है पैसे वैसे का देने का। हम उसका पैसा दे देंगे, रुपया चार रुपया पाँच रुपये की कोई बात नहीं है। अभी उससे बोलो अभी जाए, अभी हम पेपर पढ़ रहे हैं, चाय कॉफ़ी लेना, नाश्ता लेना। ठीक साहब, गाना गा के एक दिन तो निकल गया, दो दिन निकल गया, चार दिन निकल गया। अचानक माहौल होली का आया, होली के माहौल में थानेदार साहब कुछ उल्टा सीधा कुछ खा पी के कहीं से आ गए थे, तो उसी खाने पीने के चक्कर में वो रात को आके घर में सो गए, और न जाने कहाँ से कोई अंगार चिंगारी कोई कहीं से भड़की, कुछ क्या इत्तफाक हुआ, थानेदार साहब के मकान में लग गई आग। तो सबसे पहले जो धुआं था वो गोपाल की नाक में पहुंचा, उसके कमरे में पहुंचा, वो घबरा गया, समझ गया कि ये चारों तरफ लगता है आग लग गई है। और वो दौड़ता भागता थानेदार साहब के दरवाजे पे, यानी उनके कमरे के दरवाजे पे पहुंचता है और आवाज़ लगाता है, लेकिन घबरा भी यही जाता है कि कहीं अगर मैंने गाना गा के नहीं बताया तो मेरी नौकरी ना छूट जाए। तो पहले तो खैर सादे तरीके से चिल्ला रहा है, किस तरह से, अरे थानेदार साहब, अरे थानेदार साहब, दरवाजा खोलिए थानेदार साहब, थानेदार साहब दरवाजा खोलिए, अरे आपके घर में आग लग गई है थानेदार साहब। तो थानेदार साहब ने जैसे ही दरवाजा खोला, गोपाल सामने, थानेदार सामने, गोपाल घबरा गया। थानेदार ने बोला, अरे क्या बात है गोपाल, हम तो सो रहे थे भाई, मेरे को ओफो काय को जगा दिया गोपाल। तो गोपाल अपनी सर्विस के चक्कर में गाना गा के बता रहा है आग लगने का, किस तरह से,

हम लोग छोटे छोटे कलाकार, एक सपना हमारे दिल दिमाग में हमेशा बैठा रहता है कि हम बड़े बड़े शहरों में जाएं, शहर में जाएं, शहर से बाहर जाएं, देश में जाएं, देश से बाहर जाएं, हमारे कार्यक्रम हों, लोग हमको सुने, रेडियो स्टेशन वाले हमें बुलाएं, हैं टेलीविज़न वाले हमें बुलाएं। ये तो खैर ठीक ठीक है, फिल्मी दुनिया में हमारे गाने हों, फिल्मों से के माध्यम से अब कोई हीरो एक्टिंग कर रहा है हीरोइन के साथ, उसके बैकग्राउंड में उसके प्लेबैक में हमारी आवाज़ हो, ऐसे सपने तो खैर सभी लोग देखते हैं, ख़ास करके मैंने ज़रूर देखे, एक बार नहीं सैकड़ों बार। और उस सपने को पूरा करने के लिए पहुँच गया फिल्मी दुनिया में बॉम्बे। बॉम्बे जाने के बाद यानी मुंबई जाने के बाद मैंने कुछ पता लगाया कि भाई यहाँ किसको आवश्यकता है नए गायक कलाकार की। चलिए जब मालूम तो हो गया, एक डायरेक्टर साहब के घर पहुँचा, निवेदन प्रार्थना की कि साहब 10-5 मिनट का वक्त दे दीजिएगा, मैं बहुत अच्छा गायक कलाकार हूँ, अपने इलाके का बहुत बढ़िया गायक हूँ, सभी लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, जब भी मैंने अपने महल्ले में अपने इलाके में गाना गाया है किसी ने फूल माला पहनाई है, किसी ने चाय पिलाई है, किसी ने कॉफ़ी पिलाई है, किसी ने आशीर्वाद दिया है, बहुत सारे मेरे प्रोग्राम छोटे छोटे होते रहते हैं। डायरेक्टर ने बोला भाई ऐसा है मैं फिल्मी शूटिंग में जा रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ, अब आप यहाँ कहाँ आ गए हैं, आप बाद में आइए तो 2-3-4 महीने के बाद। तो मैंने उससे बार बार ऐसा मत करिए साहब, 3-4 महीने के बाद तो मेरे सपने अगर पूरे नहीं हुए तो मेरा तो प्राणांत हो जाएगा, बस 5-10 मिनट दे दीजिए। ठीक है अब तुम बोलते हो तो 5-10 मिनट दे देते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी गाना भाई, मुझे कहीं और जाना है। ठीक है सर, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो हारमोनियम तबले वाले मिलेंगे? हाँ बुला देता हूँ, सब यहीं बैठे हुए हैं। चलो भाई ढोलक नवाज, भाई तबला नवाज, भाई ऑर्गन वाले, भाई हारमोनियम वाले, भाई सब कलाकार बंधु आ जाओ सर, इसकी मदद कर दो, ये कोई बच्चा आया है नया गाने वाला, तो हाँ चलो शुरू करो। तो सर पुराना गाना सुनाओ। अरे कोई भी गाना सुनाओ यार, पुराना गाना सर, अफसाना वाला।

भाई साहब है, ये कितना अच्छा गाना, अपने जमाने का गाना, इसमें दूसरा गाना तुमने कहाँ से जोड़ दिया है? अगर आपकी तैयारी नहीं तो आपको नहीं आ रहा था। नहीं सर, माफी चाहते हैं सर, क्या है कि मैं 250-300 गाने याद करके आया था सर, अपने जिस गांव में मैं रहता हूँ ना सर, वहाँ से 250 गाने याद करके आया था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो डायरी में खो गई सर, रेलवे ट्रेन में सर, वो बस में खो गई सर, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रही। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम दूसरा गाना को कोई गाओ जो तुमको पूरा आता हो। गाएंगे ना सर, बहुत अच्छा वाला गाना गाएंगे सर, वो चोर चोर वाला गाना गाएंगे। कौन सा चोर चोर वाला? अभी सुनाते सर, वो चोर चोर का शोर मचाकर। हाँ अच्छा सुना, पूरा गाना? नहीं पूरा गाएंगे सर, पूरा गाएंगे। हाँ

बंद करो, ये सब क्या हो रहा भाई है? हमने तुमको जब बोला तरीके से जो गाना पूरा आता हो वो गाओ भाई साहब, मेरा क्यों समय खराब कर रहे हो? मुझे फिल्म की शूटिंग में जाना, हीरो ने हीरोइन ने बहुत मुश्किल से डेट दी है, मेरा क्यों नुकसान करते हैं भाई साहब, मुझे क्यों परेशान करते? तो वो मेरी मेरे रोने की जगह वो रोने लगा। कौन रोला सा? डायरेक्टर। मैंने फौरन बोला, नहीं साहब आप चिंता मत करिए, मैं बहुत अच्छा गाना गा रहा हूँ, पुराना वाला गाना गा रहा हूँ साहब, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ। अच्छा ठीक है गाओ, लेकिन पूरा आता है ना? बिल्कुल साहब पूरा आता है, मैं आपकी कसम, अरे मेरी कसम मत खाओ भाई साहब, मेरी कसम नहीं सर। अच्छा तो फिर मैं अपनी कसम खा लेता हूँ सर, मेरे को पूरा आता है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ। तो ये फिल्मी गाना है तो सर, लेकिन भजन है सर, वो भजन का मैं बचपन से बहुत शौकीन रहा हूँ, ये गाना पूरा भजन आपको सुनाऊंगा, देखिए, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माता। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, पहले भजन सुनाना था, नहीं सर अब सुना, पूरा भजन। हाँ गाइए, हाँ सुनाओ सुनाओ, हाँ

कैसा गाना गा रहा है भैया, कैसा गाना गा रहा है यार, ये ना भजन है ना फिल्मी गाना है, ना कव्वाली गाई आपने ना गजल गाई, ये ना लोकगीत, था क्या भाई साहब, ये था क्या? नहीं सर गलती हो गई सर, मैं माफी चाहता हूँ सर। वो क्या है 250 गाने याद करके, वो खैर मेरे को मालूम है 250 गाने याद करके आए थे, और आपकी डायरी खो गई है, बम्बई में खो गई थी ना। हाँ सर आपको कैसे मालूम, अभी आप ही ने बताया था ना मेरे को है। हाँ अच्छा अब एक काम करो मेरे पिताजी, आखिरी में एक बहुत बढ़िया सा गाना गा दो भैया, चाहे पाकिस्तान का गाना हो, चाहे हिंदुस्तान का गाना हो, चाहे इंग्लैंड का गाना हो, चाहे अमेरिका का गाना हो, जहाँ का गाना हो भाई साहब, भारत का गाना हो, आपके गांव का गाना हो, आपके शहर का गाना हो, लोकगीत हो, कुछ भी हो, लेकिन पूरा सुना दो, मुझको जाना है।

0: हंसना मना है,
1: हंसना मना है।
0: अरे हंसना मना है,
1: हंसना मना है।
0: कोशिश कोई लाख करे, कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे, खिलखिलाएंगे। एक बात तो आपसे हम खास तौर पे कहना चाहते थे जो भूल रहे हैं। अरे इस कार्यक्रम का नाम है
1: हंसना मना है।
0: राजेश मिश्रा आ रहे हैं कुछ सुनने सुनाने के लिए।
2: अब आइए हम ले चल रहे हैं आपको भिखारी के एक आइटम की ओर कि जो गरीब भीख मांगते हैं तो उनमें भी हास्य मिल जाता है, वो भी अपना किस प्रकार से आनंद लेते रहते हैं, क्योंकि आनंद लेना हर किसी को ईश्वर ने दिया है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो वो भी भीख मांगते हुए कैसे आनंद ले रहे हैं, आइए। भिखारी ने एक घर में आवाज लगाई और वो हम और आपको, बाबू ए बाबू, सुनता ही नहीं है बेवकूफ आदमी। क्या बोला? कुछ नहीं बोला बाबू, बोला भगवान भला करेगा। कहिए क्या बात है। बाबू एक रोटी दे दो। रोटी नहीं है, फटे पुराने कपड़े दे दो बाबू। फटे पुराने कपड़े भी नहीं है बाबू। गेहूं के दाना दे दो बाबू। गेहूं का दाना भी नहीं है। पैसे दे दो बाबू। पैसे भी नहीं है। अच्छा साहब आपके पास कटोरा है?
3: क्यों
2: बाबू ऐसा है, अगर है क्या? हाँ है, तो फिर यहाँ काय को बैठे, हमारे साथ चलो।
3: एक व्यक्ति ने एक से मांगा, बाबू मिले?
2: क्या है? कुछ दे दो भगवान भला करेगा।
3: उसने जेब से निकाला और 1000 का नोट उसको दे दिया, उसने रख लिया। जब 1000 का नोट उसने दे दिया और देने के बाद जब दान करने वाले व्यक्ति की तरफ देखा, बोला कि यार तुम्हारे चेहरे से तो बड़ा तेज नजर आता है, तुम लगते नहीं हो कि तुमको भीख मांगना चाहिए, तुम क्या करते थे इसके पहले? कहले साहब जो आप कर रहे हैं वही हम करते थे।
0: संजय गायकवाड़, एक मौका फिर इन्हें दिया जाता है हाँ आपको हंसाने के लिए। संजय हाजिर हो।
4: कितना बदल रहा है साहब जमाना, कितना बदल गया है। जो कल तक होता था वो आज नहीं हो रहा है, जो आज हो रहा है वो कल नहीं होगा। पहले के जमाने में लोग अपने अपने घर के बाहर लिख के रखा करते थे, आइए आपका स्वागत है। आजकल बहुत सारे लोग अपने घर के बाहर लिख के रखा करते हैं, कुत्तों से सावधान। पहले के जमाने में होता साहब ये था कि बहुएं आंगन में खड़ी हुई हैं और दादाजी आते थे, अदब के लिए खांसते थे तो बहुएं अपने अपने कमरों में चली जाया करती थी। आज जमाना इतना बदल गया साहब कि बहुएं आंगन में खड़ी हुई हैं, दादाजी आए और धोखे से बहू खांस दे, पता चला दादा बाहर। कितना समय बदल गया है, कितनी सारी बातें बदल गई हैं। अब मैं साहब संगीत के ऊपर आ रहा हूँ कि पहले के ज़माने में हीरो हीरोइन को गाने के माध्यम से बुलाता था तो हीरोइन पूरे काम छोड़कर भागी चली आती थी। हीरो हीरोइन को गाने के माध्यम से बुला रहा है।

इतना कहता था साहब हीरो पहले, तो हीरोइन पूरे काम छोड़कर भागी चली आती थी। आज भी हीरो हीरोइन को बुलाता है, देखिए साहब आज के ज़माने की लिरिक्स क्या लिखी जा रही है। आज के हीरो ने जैसे ही हीरोइन को देखा तुरंत अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाया, ए आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, पाप पाप, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, कहीं रुकेंगे ना हम, बताइए चाय भले ही भर जाए। क्या जमाना था साहब, कि पहले के जमाने में हीरोइन चली जा रही है, हीरो तारीफ कर रहा है, तारीफ करने का अंदाज देखिए, तो ये मतवाली चाल।

चाल। आज भी हीरोइन जा रही है, आज का हीरो तारीफ कर रहा है हीरोइन की, चलने की तारीफ सुनिएगा। क्या अदा क्या जल बे तेरे पारो, दिल के टुकड़े हो गए हजारों, जान भी अब जाएगी आंख ना मारो, हैया अरे खा ले लैया भैया गुड़ की लैया। ये जमाना बदल गया साहब, पहले के जमाने में क्या बात हुआ करती थी कि शरीर से आंखों को ध्यान में रखते हुए क्या शानदार लिरिक्स लिखी गई। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। आज का हीरो आंखों के लिए क्या बोलता है, अखियों से गोली मारे भाजकिया, अखियों से गोली मारे लड़की कमाल की। अब बताइए साहब, अगर आंखों से गोलियां चलने लगे तो परमाणु परीक्षण करने की क्या आवश्यकता है? इतना समय बदल गया है। अभी क्या बात हुआ करती थी, पहले भी हीरोइन अपने हीरो से प्यार करती थी, लेकिन अपनी भावनाओं को गीतों के माध्यम से किस तरीके से व्यक्त करती थी।

0: और आज की हीरोइन क्या बोलती है, दैया दैया दैया रे, दैया दैया दैया रे, तू तो मेरा आशिक मैंने प्यार किया रे दैया भाई।
1: और दोस्तों हंसने हंसाने का ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

0: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक हंसना मना है कि दसवीं कड़ी, DTH के ऑडियो चैनल पर। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
0: DTH के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्ज़, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन और वेव्स OTT ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भिंड जिले के लाहर से लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज हैदराबाद में कहा कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में आयोजित माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ किया। इस आयोजन में प्रदेश भर से करीब 5,000 युवा हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 युवा कल्याण का वर्ष होगा। युवाओं को सरकार की योजनाओं से जोड़कर प्रदेश के विकास और उज्जवल भविष्य के निर्माण में उनकी भागीदारी को सशक्त बनाया जाएगा। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज साउथ एम्पटन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है युवा मित्रों के लिए कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

दोस्तों शुरुआत करते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी की, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे महान उपन्यासकार भीष्म साहनी के विषय में। साथ ही आज हम बात करेंगे ज्ञान भारतम मिशन के बारे में, होंगी कुछ अन्य जानकारियाँ और सुनवाएंगे कुछ गीत भी। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे महान साहित्यकार के विषय में जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से भारत विभाजन की त्रासदियों, सांप्रदायिक राजनीति की भयावहता और आम आदमी के संघर्षों का अत्यंत सजीव और सरल भाषा में चित्रण किया है। दोस्तों मैं बात कर रही हूँ महान उपन्यासकार भीष्म साहनी के विषय में। मुंशी प्रेमचंद्र की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। उन्हें एक सशक्त उपन्यासकार के रूप में विश्व स्तरीय ख्याति प्राप्त है। उनके प्रमुख उपन्यास हैं तमस, झरोखे, बसंती, कुड़िया, कुंतो।

जिसमें तमस उनका सबसे प्रसिद्ध और कालजयी उपन्यास है। ये भारत के 1947 के विभाजन के समय हुए भीषण सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस उपन्यास में धार्मिक कट्टरता और राजनीति की भयावहता को उजागर किया गया है। उपन्यास झरोखे में मध्यम वर्गीय परिवार की समस्याओं, रूढ़वादिता और सामाजिक संघर्षों का यथार्थ चित्रण है। उपन्यास बसंती में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली एक मेहनतकश और संघर्षशील लड़की की कहानी है। वहीं कुछ उपन्यासों में मानवीय संबंधों की जटिलताओं, वैज्ञानिक पहलुओं और बदलते सामाजिक मूल्यों का चित्रण किया गया है। दोस्तों, एक उपन्यासकार होने के साथ साथ भीष्म साहनी ने 100 से ज्यादा कहानियां भी लिखी। उनकी कहानियों में सामाजिक सरोकार और मानवीय संवेदना गहराई तक दिखाई देती है। प्रमुख कहानियां हैं चीफ की दावत, अमृतसर आ गया है, वागनचू, पाली और पटरियां। उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रहों में भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख और निशाचर शामिल हैं। प्रमुख नाटक हिंदी रंगमंच और नाटक की दुनिया में भी उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके नाटक अपनी वैचारिक गहराई और शिल्प के लिए जाने जाते हैं। उनकी कुछ और भी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे हानुष। ये एक ऐसे कलाकार की कहानी है जो अपनी कला के प्रति समर्पित हैं और उसे संघर्ष का सामना भी करना पड़ता है। वहीं नाटक कबीरा खड़ा बाजार में कबीर के दर्शन और उनके सामाजिक सुधारों पर आधारित है। दोस्तों, साहनी जी एक उत्कृष्ट अनुवादक भी थे। उन्होंने अपने बड़े भाई और प्रसिद्ध अभिनेता बलराज साहनी की जीवनी बलराज माय ब्रदर अंग्रेजी में लिखी। उन्होंने रूसी भाषा से कई कृतियों का अनुवाद हिंदी में किया, जिसमें टॉल्स्टॉय का उपन्यास पुनरुत्थान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भीष्म साहनी जी को साहित्य के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए कई सर्वोच्च सम्मानों से भी नवाजा गया। उनके उपन्यास तमस के लिए 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1998 में पद्म भूषण, 2002 में साहित्य अकादमी फेलोशिप। इसके अलावा 1983 में उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और 1981 में एफ्रो एशियाई लेखकों का लोटस पुरस्कार भी मिला। दोस्तों, 11 जुलाई को महान हिंदी लेखक, नाटककार और अभिनेता भीष्म साहनी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उन्हें सत सत नमन। दोस्तों, अब हम सुनते हैं ये गीत राहत फतेह अली खान की आवाज में, आजा नचले फिल्म से।

दोस्तों, अब हम बात करेंगे ज्ञान भारतम मिशन के विषय में, जो संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य भारत की सदियों पुरानी और बिखरी हुई पांडुलिपियों को खोजना, उनका दस्तावेजीकरण करना और आधुनिक तकनीक व डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से उन्हें संरक्षित करना। इस मिशन का लक्ष्य भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा जैसे दर्शन विज्ञान, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और कला को सहेजना और दुनिया भर के शोधकर्ताओं व आम जनता के लिए सुलभ बनाना है। इसके तहत पूरे देश की बिखरी हुई पांडुलिपियों की जानकारी एकत्र करने के लिए ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण चलाया जा रहा है। ताड़ के पत्तों और भोजपत्र

जैसे प्राचीन दस्तावेजों को संरक्षित करने के लिए रासायनिक उपचार के साथ साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और जटिल संग्रह यानी कृत संपदा रिपोजिटरी का उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, संस्थान या परिवार जिसके पास प्राचीन पांडुलिपियां हैं, वो ज्ञान भारतम ऐप के माध्यम से सीधे तौर पर इस सर्वेक्षण में शामिल होकर जानकारी साझा कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम सुनते हैं ये गीत उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश खेर की आवाज में स्वदेश फिल्म से।

0: दोस्तों, हम स्कूल की पढ़ाई के साथ दूसरे कोर्स की भी तैयारी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।
1: दोस्तों, आज मेरे साथ हैं शुभी द्विवेदी और आज हम बताएंगे कि आप कैसे अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ दूसरे कोर्सेज की तैयारी भी कर सकते हैं। मेरे साथ शुभी हैं और शुभी नीट की तैयारी कर रही हैं अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ।
2: नमस्कार, मेरा नाम शुभि द्विवेदी है। मैं जिला रीवा से हूँ और मैं क्लास 12th की छात्रा हूँ और मैं स्कूल के साथ साथ नीट की भी तैयारी कर रही हूँ।
0: तो शुभि, आप ये बताइए, आप स्कूल के साथ साथ नीट की तैयारी कैसे कर पा रही हैं? आप टाइम मैनेज कैसे कर पा रही हैं? कैसे आप स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ नीट की परीक्षा की प्रिपरेशन के लिए समय निकाल पा रही हैं?
2: जी, पहले तो मैं सुबह 3 बजे उठ जाती हूँ, फिर मैं 3 से 6 बजे तक थोड़ा रिवीजन करती हूँ, फिर 6 से 8 बजे तक मैं थोड़ा सुबह का रूटीन और स्कूल के लिए रेडी होना,
0: अच्छा,
2: फिर 8 बजे के बाद मैं खाना वगैरह खा करके स्कूल चली जाती हूँ, फिर 10 से 4 का मेरा स्कूल है, 4 से 8 तक का मेरा ट्यूशन है, नीट का ऑनलाइन है।
0: ऑनलाइन कोर्स लिया आपने
2: हाँ
0: नीट के लिए।
2: हाँ
0: अच्छा,
2: फिर 8 से 8:30 तक मैं खाना वगैरह खा लेती हूँ, फिर 8:30 से 10 तक मैं थोड़ा होमवर्क वगैरह करती हूँ स्कूल और ट्यूशन का, फिर 10 से 11 एक बार रिवीजन करके फिर सो
0: किसका
2: जाती हूँ।
0: रिवीजन करते हैं आप 10 से 11?
2: नोट्स का, जो नोट्स
0: तो
2: बनाती
0: नीट
2: हूँ,
0: का या स्कूल का?
2: दोनों का सेम सिलेबस रहता है,
0: सेम ही सिलेबस।
2: बस
0: अच्छा,
2: थोड़ा नीट में थोड़ा डिटेल से और स्कूल वाले में थोड़ी ज़्यादा थ्योरी रहती है और नीट वाले में थोड़ा न्यूमेरिकल्स।
0: मतलब नीट के सिलेबस के हिसाब से आप रात में भी उसका रिवीजन करती हैं और फिर सोती हैं, है ना? अच्छा,
2: जी
0: ठीक है। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ दूसरे कोर्सेज की तैयारी करना आपको आसान लगता है?
2: हाँ, इजी है, दोनों का सिलेबस सेम ही है, थोड़ा
0: मतलब कोई स्टूडेंट चाहे तो स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ दूसरे कोर्सेज की तैयारी कर सकता है?
2: हाँ कर सकता है,
0: अच्छा,
2: हाँ चाहे तो कर सकता है।
0: तो बाकी श्रोताओं के लिए आप क्या कहना चाहती हैं जो आप ही की तरह अभी स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं?
2: उन्हें मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप भी चाहें तो अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ अपने एम के लिए टाइम दे सकते हैं, उस पर फोकस कर सकते हैं, तो आपका जो ड्रीम है वो भी पूरा हो जाएगा। और आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा इस टाइम में।
0: मतलब बाकी जो स्कूल के बाद बचा हुआ समय है उसको आप दूसरे कोर्सेज की तैयारी के लिए यूज़ कर सकते
2: हाँ
0: हैं, है ना?
2: हाँ हाँ
0: जी, बहुत अच्छा, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपकी पढ़ाई के लिए।
2: ठीक है, थैंक यू।
0: दोस्तों, अब हम सुनते हैं ये गीत दिल कबड्डी फिल्म से, राहत।

दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के विषय स्तंभ हमारी धरोहर की ओर, जिसमें आज हम जानेंगे असम के चराईदेव मोईदाम के बारे में। ये अहोम राजवंश के शाही परिवारों और राजाओं के ऐतिहासिक समाधि टीले हैं। इन्हें अक्सर असम के पिरामिड भी कहा जाता है। ये स्थान अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है और इसे यूनेस्को द्वारा भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। दोस्तों, 1253 ईस्वी में अहोम राजा चाओ लुंग सिउ का फा ने इसे अपनी पहली राजधानी बनाया था। 600 वर्षों के अहोम शासन के दौरान चराईदेव मोईदाम को प्रतीकात्मक और पवित्र केंद्र माना जाता रहा। इन समाधियों में मृत राजाओं के नश्वर अवशेषों को उनकी संपत्ति, आभूषण और अन्य जरूरी चीजों के साथ गुंबद के आकार की तिजोरियों में दफनाया जाता था और ऊपर से मिट्टी का टीला बना दिया जाता था। दोस्तों, चराईदेव मोईदाम एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है जो असम के चराईदेव जिले में स्थित है, जो कि शिवसागर शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलने से पहले आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर बताइएगा। आप अपनी शिकायतें और अपने सुझाव हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है yuvvaadiriva@gmail.com। तो फिर मिलने के वादे के साथ अपनी रेडियो दोस्त इशिका यानी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ संध्या।

0: आकाशवाणी रीवा के योगदान के अंतर्गत कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण अभी किया जा रहा था।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 5:30 हुए हैं। अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, आप सभी के लिए एक विशेष सूचना। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक, अफवाह फैलाने वाली, धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक, कमेंट अथवा फॉरवर्ड न करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी उसकी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे केवल प्रमाणित एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल। सूचना समाप्त हुई।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं ये गीत फिल्म एक्शन रिप्ले से। सुनिधि चौहान और ऋतु पाठक की आवाज़ें हैं, इरशाद कामिल के लिखे बोल और संगीत है प्रीतम का।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं विशाल ददलानी की आवाज़ में, कुमार का लिखा गीत, संगीत है विशाल शेखर का। आइए सुनते हैं फिल्म आई हेट लव स्टोरीज़ का ये टाइटल ट्रैक।

शंकर महादेवन और अलाइजा मेंडोंसा की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना फिल्म कार्तिक कॉलिंग कार्तिक से। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था शंकर एहसान लॉय ने। श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आप सुनते हैं, जो हमने लिया है फिल्म बैंड बाजा बारात से। सलीम मर्चेंट और सुनिधि चौहान की आवाज़ें हैं। अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत और संगीतबद्ध किया है सलीम सुलेमान ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हाउसफुल से। मीका, सुनिधि चौहान और साजिद खान की आवाज़ें हैं। समीर के लिखे बोल और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।
1: Take it away!

0: श्रोताओं, फिल्म हाउसफुल के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस अंतराल के बाद।
1: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
2: सच?
1: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
2: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए तो
1: बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
2: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
1: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी भू।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: श्रोताओं, आपके लिए एक विशेष सूचना। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 12 जुलाई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है धान की उन्नत उत्पादन तकनीक एवं समसामयिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं, वे दिनांक 12 जुलाई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर 2660902 या 2660903 पर फ़ोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन, समय और फ़ोन नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए। दिनांक 12 जुलाई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के मध्य, फ़ोन नंबर 2660902 या 2660903, भोपाल का एसटीडी कोड 0755 है। सूचना संपन्न हुई।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में आयोजित माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ किया। इस आयोजन में प्रदेश भर से करीब 5,000 युवाओं ने हिस्सा लिया। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 युवा कल्याण का वर्ष होगा। युवाओं को सरकार की योजनाओं से जोड़कर प्रदेश के विकास और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में उनकी भागीदारी को सशक्त बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भिंड जिले के लहार से लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियां और अवसरों के

जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व जनसंख्या दिवस पर सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव हैं। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज साउथ एम्पटन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 6 बजने को है। अब प्रस्तुत है पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही है सोनू सूद।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ आज विशेष मेहमान है आशीष अग्रवाल जी, जो हम सबको राह दिखाते हैं कि अपनी जीवन शैली को सरल बनाकर ही कितना फायदा हमें हो सकता है और हमारी प्रकृति को भी कितना फायदा हो सकता है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में। आशीष जी, सर्वप्रथम जो आपका एक मुहिम है उससे ही शुरुआत करते हैं। सस्टेनेबिलिटी माइंडफुल कंजम्पशन अ वे टू मिनिमलिस्टिक लिविंग, ये जो आपका तथ्य है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप अगर हमें सरल शब्दों में समझा सकें जो हमारे श्रोता सभी समझ पाए कि क्या है ये कॉन्सेप्ट और इसके पीछे की मूल सोच क्या है।
4: तो मैं इसके वाई से शुरू करता हूँ कि ये पूरा मुहिम शुरू क्यों हुआ। तो आज के डेट में समाज में तीन तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पर्सनल लेवल पे अगर देखा जाए तो तनाव बहुत बढ़ गया है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। सोशल लेवल पे देखा जाए तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे देश में सिविक सेंस की थोड़ी कमी है। और अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज, वातावरण का जो बदलाव हो रहा है वो बहुत ही तेजी से हमारे सामने आ रहा है। तो ब्रिज फॉर चेंज एक मिशन पर है जहां वो यस आई एम माइंडफुल मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें माइंडफुल कंजम्पशन को एज अ प्रोफाउंड टूल हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जिससे हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी। और हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी, हमारे एक्शंस इंप्रूव होंगे, तो आसपास होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप मिटिगेट होना शुरू हो जाएंगे
3: जी।
4: जिसमें हम लोग कहते हैं युवाओं से कि छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं, जहां पॉसिबल हो वहां एक्शंस लेने हैं, जितना पॉसिबल हो उतना करना है। तो इसको हम लोग टर्म देते हैं PRR कि क्या हम लोग कभी पॉज लें, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रिफ्लेक्ट करें और जिस भी पैरामीटर्स पे, चाहे वो फूड है, फैशन है, टेक्नोलॉजी है, रिलेशन है, प्रोफेशन है, किसी भी आयाम पे जहां उनको लगता है रेगुलेट कर सकते हैं उस चीज को रेगुलेट करें। और ये एफर्टलेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो वही 2 दिन 4 दिन 10 दिन करेंगे, उसके बाद फिर हमारा मोटिवेशन कहीं ना कहीं लैक करने लगता है। तो छोटे छोटे स्टेप्स, टाइनी एक्शंस कैन ब्रिंग जाइगेंटिक रिपल्स, तो वो हमारा ध्येय है। और सरल जीवन जहां आपको सही लगता है और उसमें छोटे छोटे स्टेप्स, तो यही पूरा मूवमेंट का थॉट प्रोसेस है।
3: आशीष जी, आप जो बात कर रहे हैं माइंडफुल कंजम्पशन की, वही अधूरी है आपके पूरे जो मुहिम की, उसको और गहराई से समझने के लिए अगर हम ये आपसे जानना चाहें कि माइंडलेस कंजम्पशन क्या होती है, जिसको काउंटर करने के लिए आप ये जो माइंडफुल कंजम्पशन लेके आए हैं, ताकि हम बेहतर समझ पाएं कि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है।
4: जो माइंडलेस कंजम्पशन की बात करें तो जो नीड वर्सेस वांट जो बोलते हैं
3: जी,
4: कि हम लोग सबको कहीं ना कहीं पता है कि हमारी नीड तो इतनी ही है, लेकिन कई बार हमारी चाहते होती हैं, पीयर प्रेशर होता है, समाज का स्टेटस होता है, उस चीज को अकॉम्प्लिश करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज ऐसी खरीदते हैं, बहुत सारी चीज ऐसी इस्तेमाल करते हैं, एक लाइफस्टाइल ऐसा फॉलो करते हैं जिसकी शायद हमें उतनी जरूरत नहीं हो। और उस जर्नी में फिर बहुत सारे अलग अलग माध्यम से हम लोग ओवर कंजम्पशन करते हैं, अनरियलिस्टिक एम्बिशंस सामने रखते हैं। तो उस चीज को ही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस अनरियलिस्टिक जो हमारे एम्बिशन है उसको कैसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, थोड़ा सा बेहतर और मोर रिस्पॉन्सिबल लाइफस्टाइल की तरफ युवाओं का, हमारे जो भी ऑडियंस है उनका ध्यान लाया जाए।
3: तो आपने जो नीड्स और वांट्स की बात करी कि एक तो है हमारी जरूरत और एक है हमारी ख्वाहिश,
4: बिल्कुल,
3: ये नीड और वांट का जो अंतर है, क्या आप हमें और गहराई से इसको समझा सकते हैं?
4: ये बहुत मुश्किल है। नीड का तो हमारा मानना है कि सॉफ्टवेयर ही हमारा वैसा डेवलप है कि हमें पता है कि ये

0: हमारी जरूरत है, और कब वो जरूरत वांट हो रही है उतना हमें अंदर से आवाज़ आ जाती है। लेकिन चूंकि हम लोग इतने कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में रहते हैं, इतने फास्ट इवॉल्विंग सोसाइटी में, कि वांट का कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है, और वहीं पे फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम इसलिए शुरू होती है कि सपोज मैं आज आशीष एक्स पर हूँ, मुझे वहाँ 5x तक पहुँचना है, जस्ट बिकॉज मेरे पीयर ग्रुप में कोई वहाँ पर है। तो मैं ये नहीं देखता कि मेरे स्किल्स क्या हैं, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, राइट टाइम राइट प्लेस पर मैं हूँ कि नहीं। मैं बस भागता रहता हूँ कि मुझे 5x तक पहुँचना है, क्योंकि मेरे चाचा के बेटे या एक्स वाई जेड इन माई फैमिली इज एट दैट पॉइंट। तो उसमें दो चीजें होती हैं। पहला तो होता है कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन सही समय पे सही जगह पे नहीं था, तो मैं एक्स से 3x तक पहुंचा। तो सोसाइटी इतनी कॉम्पिटिटिव है, इतनी शॉर्ट साइटेड है कि वो उस चीज के लिए मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगी 3 गुना आगे बढ़ा, बट उस चीज के लिए रेडिक्यूल करेगी कि देखो अभी भी वो इंसान तुमसे कितना आगे है। तो वो जो स्यूडो कमी है ना, जो समाज बताता है कि तुम में कुछ कमी है, तुम उतने स्मार्ट नहीं हो, तुम उतने स्किल्ड नहीं हो, उस कमी को छुपाने के लिए हम लोग माइंडलेस कंजम्पशन करते हैं। उस भड़ास को दबाने के लिए किसी का वो भड़ास, फ्रस्ट्रेशन, वो वॉइड खाने पे निकलता है, किसी का फैशन पे निकलता है, किसी का रिलेशन पे निकलता है, किसी का दिन भर इंस्टाग्राम और ये सब पे निकलता है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं एक्स से 5x पहुंच भी गया, राइट टाइम राइट प्लेस, बहुत मेहनत की, सही लोग मिले, तो भी अगर मैं 5x पे पहुंचा तो ये समाज मुझे शांति वाली जिंदगी, एक सिंपल जिंदगी जीने के लिए प्रेरित नहीं करता है। वो बोलता है अब तुम 6 फिगर सैलरी कमा रहे हो, तो तुम्हें इस तरह का मोबाइल, इस तरह का घर, इस तरह के वेकेशंस होने चाहिए। तो हमने जो रिसर्च किया उसमें यही पाया कि वेदर वी आर सो कॉल्ड सक्सेसफुल और नॉट, दोनों ही केस में मैं माइंडलेस कंजम्पशन करता हूं बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर
1: जी,
0: और वही सारे स्ट्रेस की, वही सारे नॉइस की जड़ है। इसीलिए माइंडफुल कंजम्पशन के प्रति हम लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं डेटा की मदद से।
1: जी, तो कैसा डेटा, किस तरह से फायदा, जब आप कह रहे हैं कि माइंडफुल कंजम्पशन होती है, जितनी आपको जरूरत है उसके अनुसार आप कंज्यूम करते हैं, तो इसका जैसा आप कह रहे हैं कि आपको खुद को फायदा होता है, क्लटर कम हो रहा है, आप एक पीसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, उसके अलावा पर्यावरण को भी इसका लाभ होता है, जो आप डेटा की बात कर रहे हैं उसको आप हमें थोड़ा समझा सकते हैं?
0: तो कोई भी चीज जब हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी यूज होती है किसी भी फॉर्म में, और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ एमिशंस, कुछ पॉल्यूशन हुआ। उस पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के मेजरमेंट में नापा जाता है। जैसे हम लोग होते हैं दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, वजन को किलोग्राम्स में नापते हैं, वैसे पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, कार्बन फुटप्रिंट जो बोलते हैं हम लोग। तो कोई भी काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ कार्बन फुटप्रिंट है। तो ये एक अच्छी बात भी है और मुश्किल भी है कि हर चीज का इमिशन हो रहा है तो मैं कंट्रोल कैसे करूं, लेकिन हर चीज का इमिशन हो रहा है तो वहां अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग चूंकि सैकड़ों चीजें अपने दिन में कंज्यूम करते हैं, तो जहां जहां हमें पॉसिबिलिटी लगती है हम लोग अगर उसको थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा इनडायरेक्ट पॉल्यूशन बचाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम में से सब लोग भारत में है तो चाय पीना पसंद करते हैं, तो अगर मैं हर दिन सुबह 1 कप चाय पीता हूँ तो हफ्ते में मैंने 7 कप चाय पिए, तो डेटा बताता है, जैसे उसका सोर्स है आवर वर्ल्ड इन डेटा, तो डेटा बताता है कि 1 लीटर दूध बनाने के लिए 3 किलोग्राम कार्बन इमिशन होता है, और अगर 1 लीटर दूध में 10 कप चाय बनते हैं तो इसका मतलब हर कप का करीब 250 ग्राम हुआ। तो हम लोग जब इंगेज करते हैं अपने ऑडियंस के साथ तो ये नहीं बोलते कि आप चाय पीना बंद कर दो, हम लोग बोलते हैं कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो हफ्ते में 1 कप कम कर सकते हैं, तो अगर हफ्ते में 1 कप भी कम किया गया तो साल में 250 ग्राम इंटू 52 करीब 12-13 किलो कार्बन एमिशंस बच जाए। तो ये सिर्फ एक पैरामीटर है, ऐसे हजारों चीज हम लोग अपने अंदर ले रहे हैं, तो जहां जहां हम लोग कंफर्टेबल हैं वहां अगर थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा एमिशंस बचाया जा सकता है।
1: इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में जो शुरू किया था मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो उसमें भी उन्होंने हरेक नागरिक की सक्रिय भागीदारी को एक महत्वपूर्ण बताया था, जो पर्यावरण संरक्षण है उस दिशा में। तो वहां पर आप हमें बताएं कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं, किन किन आदतों से हम हमारा जो भी वातावरण है उसको हम ज्यादा शुद्ध करने में या उसके संरक्षण में हम अपना योगदान कर सकते हैं।
0: तो इसको शेयर करने के लिए मैं 5R का यूज करूंगा, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल। तो 5R में सबसे पहले वही रिड्यूस आता है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो कितना भी पेड़ लगाएं, कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, एमिशंस कम नहीं होंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफस्टाइल को, जीवन शैली को थोड़ा बदलना ही पड़ेगा, जो कि मिशन लाइफ का भी देह है कि अपने लाइफस्टाइल को एनवायरमेंट से कैसे अलाइन किया जाए। तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में जैसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का डेटा बताता है कि हर साल करीब 50 किलो खाना हर भारतीय वेस्ट करता है ऑन एन एवरेज। तो फूड वेस्ट एक ऐसी चीज है जो हमें इमीडिएट इमीडिएटली रोक देनी चाहिए अगर अभी तक हम लोग के जीवन शैली में वो चीज नहीं आई है तो। वैसे ही एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स का कार्बन फुटप्रिंट बहुत होता है, चाहे वो मिल्क हो चाहे वो मीट बेस्ड चीजें हो, जो भी चीज एनिमल से आ रही है तो उसको हम लोग थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे ही एयर ट्रेवल का कार्बन इमिशन बहुत होता है, तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में एक आम नागरिक जो करता है तो फूड वेस्ट ना करे और एयर ट्रेवल कम हो। रिड्यूस के बाद अगर रिप्लेस की बात

0: करते हैं तो बहुत सिंपल सा है, जैसे कपड़े का थैला यूज करें तो आमतौर पर हर दिन अगर हम लोग सब्जी वब्जी लेने जा रहे हैं तो 3 प्लास्टिक 4 प्लास्टिक यूज हो जाता है। तो सिर्फ एक बैग यूज करेंगे तो साल भर में अगर 3 × 365 भी करें तो 1000 प्लास्टिक की बैग्स सिर्फ और सिर्फ सब्जी के मायने में कम हो सकती है। और वही वो प्लास्टिक भी जैसा हम लोग बोलते हैं ना सिंगल यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो रिप्लेस के कॉन्टेक्स्ट में प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से। आजकल टिश्यू पेपर को यूज करने का बहुत फैशन चला है तो टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से, जो हमारे घर में हमारे माता पिता और दादा दादी हमेशा ही करते आए हैं। तो इससे बहुत सिंपल सा एक्ट है लेकिन बहुत सारा पानी, बहुत सारा कचरा, बहुत सारा कार्बन इमिशन बच सकता है। रिपेयर, आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई कि रिपेयर कराने का उतना टाइम नहीं है। तो अगर मैं 2 घंटे जाऊंगा रिपेयर कराने फिर वापस लेने आऊंगा, इतने में तो मैं नया सामान मंगा लूंगा। लेकिन रियल कॉस्ट हम लोग नहीं पे करते किसी भी चीज का, अगर एनवायरमेंटल कॉस्ट भी जोड़ा जाए, वेस्ट मैनेजमेंट का भी कॉस्ट जोड़ा जाए तो किसी भी प्रोडक्ट का रियल कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो जहां जहां पॉसिबल हो रिपेयर कराएं। इन सब में जब सब हो गया, रिड्यूस हो गया, रिप्लेस हो गया, रिपेयर हो गया, तब जो बचा है उसको रिसाइकलिंग के लिए दें।
1: आशीष जी, युवाओं की अगर हम बात करें, आप युवाओं को प्रेरित करने पर काफी बल देते हैं। अब युवा महत्वाकांक्षी भी होते हैं और वो अपने जो स्वप्न है उनको भी बहुत गहराई से देखते हैं, गंभीरता से देखते हैं और एक आधुनिक जीवन शैली भी वो जीना चाहते हैं। तो ऐसे में आप कैसे उनको कन्विंस करते हैं कि आप अगर साधारण अपनी जीवन शैली को करेंगे, मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे तो उससे आपकी प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी बल्कि आपका जीवन बेहतर होगा? तो ये बताइए कितना चैलेंजिंग है और कैसे आप इसको अचीव करते हैं जो युवा है उनको इस दिशा में ले जाने की ओर?
0: थोड़ा चैलेंजिंग होता है बट इनफ रिपोर्ट्स आर देयर इन मार्केट जहां पे ये पता है कि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है जिसको अब अपर मिडिल क्लास बोलते हैं, उसके ऊपर फिर जो इलीट क्लास एफ्लुएंट क्लास होता है, तो आज के डेट में जितनी भी मॉडर्न एज बीमारियां हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ओवरवेट हो, लोनलीनेस हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, ये सब उसी एफ्लुएंट क्लास में आ रहा है। तो इसलिए बहुत एविडेंट है कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेन करने से हमारा लाइफ की क्वालिटी ओवरऑल नहीं बढ़ सकती। उसके लिए अपने लिए समय निकालना जरूरी है, अपनों के लिए समय निकालना जरूरी है, सेहत पे ध्यान देना जरूरी है, रिलेशंस पे ध्यान देना जरूरी है। तो इस पूरे मुहिम में, इस पूरे मिशन में वही थॉट प्रोसेस होता है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि बहुत जरूरी है, लेकिन अगर सादगी के साथ वो समृद्धि लाई जाए तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। और वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो अगर सादगी भरा जीवन रहेगा आपका, माइंडफुल अगर आप रहोगे जीवन में, तो आपका ही ये जो तनाव है, ये जो स्ट्रेस है कम होगा, आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग इम्प्रूव होगी, और आपकी अगर वेलबींग इम्प्रूव हो रही है तो आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी जिससे आपका काम और बढ़ेगा। तो ग्रो करने के अगेंस्ट नहीं है कोई भी थॉट प्रोसेस, बट वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशंस। तो वही थॉट प्रोसेस है। और गांधी जी ने भी बोला है कि कैपिटल में बुराई नहीं है, उसका यूज किस तरीके से करते हैं वो डिफाइन करता है वेदर इट इज एन एविल और ब्लेसिंग। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि और सादगी को साथ में लेके चलने की कोशिश करो।
1: कोई ऐसे डेटा पॉइंट्स भी हैं जिनसे उनको समझाते हैं कि कैसे आप एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर माइंडफुल कंजम्पशन करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को मिनिमलाइज करते हैं जरूरत के अनुसार, तो किस तरह का फायदा होता है एनवायरनमेंट को, ये थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं एग्जांपल्स देके?
0: आज के यूथ बहुत इंस्पायर्ड हैं, बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत ब्लेस्ड भी हैं, और हमने देखा है कि दे वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, बस उन्हें थोड़ा सा नज की जरूरत है, थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है। तो अगर रैशनैलिटी बेस्ड बातें की जाए, लॉजिकल तरीके से कोई चीज पुट की जाए, तो उनका सपोर्ट काफी मिलता है। तो ये जो माइंडफुल लिविंग है, ये तो हमारे एंसेस्टर्स हमेशा से करते आए, कोई नई चीज नहीं, हमारे सभ्यता में, हमारे ट्रेडिशंस में है। बस डेटा की मदद से जब हम लोग पुट करते हैं उनके सामने कीप इट, तो उनका इमोशंस एक्शन की जर्नी है बहुत इजी हो जाती है। अगर अभी कपड़े की बात करें तो एक कंपनी का भी रिसेंटली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आया था, उसमें उनका कहना था कि जो वो एक जीन्स बनाते हैं उसके लाइफ साइकिल में, मतलब डेनिम बनाना, स्टिच करना, शॉप पे ले जाना, फिर हमारे जैसे लोग उसको परचेज किए, यूज किए, धोए, यूज किए, धोए और फाइनली फेंके, तो उस पूरे जीवन काल में एक जीन्स के करीब 3800 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि आपके प्रेजेंट लाइफस्टाइल जैसा भी हो बहुत बढ़िया है, क्या उसमें छोटा सा बदलाव ला सकते हैं?
1: सो आशीष जी, एक जो प्रोजेक्ट 333 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, शायद आपने उसको खुद अपनाया भी है, तो आप बता सकते हैं अपने अनुभव से कि किस तरह से ये बेनिफिट करता है, न सिर्फ पर्सनली जो भी उसको अपना रहा है, जो भी अडॉप्ट कर रहा है उस व्यक्ति के लिए वो लाभदायक है, हमारे पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है।
0: जब हम लोगों ने ये मूवमेंट शुरू किया 2021 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद उसकी शेयरिंग करें। तो उसमें जब रिसर्च किए तो ये एक इनिशिएटिव आया प्रोजेक्ट 333, जहां पे पार्टिसिपेंट को इनवाइट किया जाता है कि वो 33 पर्सनल आइटम्स के साथ 3 महीने की जिंदगी

0: जिए, वो पर्सनल आइटम्स मतलब जो आप अपने साथ कैरी करते हैं, जिसके बिना आपका जीवन नहीं हो सकता, आपका किचन वेयर, आपका सोफा, वो नहीं, आपका खुद का 33 आइटम्स।
1: कुछ अगर आप एग्जांपल दे सकते।
0: हाँ, जैसे मेरे कपड़े हुए, मेरे स्टेशनरी हुई, मेरा सैनिटरी किट हुआ, मेरा ट्रैवल बैग, लैपटॉप वगैरह हुआ, तो जो चीज अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो अपने साथ रखूंगा। तो वो चैलेंज हम लोगों ने लिया 2021 में, और आज 5 साल हो गए मैं उसी 33 सामान के साथ जिंदगी जीता हूँ। तो उससे बहुत वही लिबरेशन हुआ, क्योंकि मुझे ये सोचना नहीं है कि मुझे क्या पहनना है, बहुत सारी चीज़ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, घर में बहुत सारा स्पेस होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा रिसोर्स मुझे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही चीज़ अगर, अगेन, 33 इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट पुटिंग सम फिगर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जिसको जो इम्पॉर्टेंट लगता है, जिसको जो कम्फर्टेबल लगता है, वो एक दायरा बना ले कि मुझे 50 चीज़ें या 55 चीज़ें के साथ 3 महीना 6 महीना ट्राई करना है, तो वो एक जो फ्रीडम है उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ये सारे तरीके होते हैं अपने क्लटर को कम करने का, जिससे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर फोकस कर सकें। आजकल ऑनलाइन ऑर्डर्स हमारे लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गई है, तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जितना भी कर रहे हैं उसमें क्या थोड़ा कम किया जा सकता है। तो दो तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स आजकल हो रहे हैं, एक तो ग्रॉसरीज वगैरह मंगाने में, तो उसमें भी अगर हम लोग बल्क में मंगाते हैं या खुद जाके ले आते हैं तो अननेसेसरी जो पैकेजिंग है वो कम होगी
1: जी।
0: और उससे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है क्लाइमेट के दृष्टिकोण से, वेस्ट मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, वो है पैकेज फूड, उसको कहीं ना कहीं कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें फिर जब सामान आता है तो वन टाइम प्लास्टिक, वन टाइम कटलरी, और उसमें फिर जो वो खाना लगा हुआ होता है उसको वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत होती है, उसको रिसाइकिल करने में। तो क्या हम लोग इस तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स जो करते हैं उसको थोड़ा सा कम करें, एलिमिनेट कर पाएं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट शुरुआत तो करें, तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है।
1: तो इसी से जुड़ा है मेरा अगला सवाल कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें, एवरेज एक आम नागरिक कैसे ये पहचान करे कि क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, माइंडफुल कंजम्पशन के दायरे में आती है, और कौन सी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है जो माइंडलेस कंजम्पशन के दायरे में आती है और जिसको हम हटा सकते हैं।
0: तो इसमें 2-3 प्रश्न हमेशा मिलेंगे आपको जब भी हम लोग परचेज करने की सोच रहे हैं या शॉपिंग करने का या किसी भी तरीके का कंजम्पशन करने की सोच रहे हैं। तो क्या हमें इसकी जरूरत है इमिडिएटली, अगर मैं इसको 3 महीने बाद भी लूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो जो 3 महीने का गैप है या 2 वीक का गैप है, उससे आपको इमिडिएटली पता चल जाए कि ये रियल में नीड है या वांट है। तो एक बार नीड वर्सेस वांट की चीज हो गई, तो जैसा बोलते हैं ना कि गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए, वैसे ही कंजम्पशन के कॉन्टेक्स्ट में भी इम्पल्स शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। तो जब हमें महसूस हो रहा है इम्पल्स है तो बोले कि चलो 2 घंटे बाद ही कर लेंगे, तो फिर हम लोग जजमेंट लेने के लिए बेहतर पोजीशन में होंगे कि ये सही में नीड है या वांट है। और फिर नीड है कि वांट है, फिर वो क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि आज इसको मैं नहीं खरीदता हूं या खरीदती हूं तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, 2 हफ्ते बाद खरीदूंगा, तो फिर 2 हफ्ते कम से कम वो चीज टली, तो 2 हफ्ते तक तो कम से कम वो इमिशंस इनडायरेक्टली बचे।
1: जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था, वही वांट में ये भी आ जाता है कि आप अपने आसपास वाले जो लोग हैं उनके साथ कंपीट करना चाह रहे हैं, उनके पास कोई चीज है तो आप भी वो ले लेते हैं हालांकि आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो ये भी बहुत सारे पहलू हैं वांट के, जिसमें शायद अगर हम थोड़ा सा कहें कि हार्श वर्ड है लेकिन उसको लालच या ग्रीड भी कह सकते हैं, तो उससे हमें बचना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ग्रीड का तो कोई एंड ही नहीं होता ना, देयर इज इनफ रिसोर्सेज फॉर नीड बट नॉट फॉर ग्रीड, वो तो हमने सुना ही है, और उसका वो रेस का एक स्पाइरल है, वो कभी खत्म नहीं होगा, और उससे स्ट्रेस ही होना है। जो पहले मैंने एक बार शेयर किया एक्स से 3x और 5x की बात, वो वही चीज है। तो हमें देखना है कि हमारी जर्नी क्या है, क्योंकि हम लोग सबकी जर्नी अपनी अपनी है, और हमारे कैनवास पे जिस चीज की जहां जरूरत है उस पे अगर फोकस करेंगे तो बहुत लाइफ सिंप्लीफाइड रहेगी और बहुत ही हेल्दी लाइफ जी पाएंगे हम लोग,
1: हेल्दी लाइफ भी जी पाएंगे। और शायद ये भी है कि आपका जो फिजिकल स्पेस जब फ्री होता है तो आपका मेंटल स्पेस भी फ्री होता है, आपको कम चीजों का ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ऐसे में हम अपनी हॉबीज का या अपने रिलेशनशिप्स को ज्यादा टाइम दे सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनको ज्यादा टाइम दे सकते हैं, आपका क्या अनुभव रहा है?
0: 100% मैम। तो अभी हम लोग क्या है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज का जो लाइफस्टाइल है उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट इज ऑलवेज गुड, लेकिन उसी में डेटा भी बताता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ही बहुत ज्यादा लोनलीनेस है, वहाँ के बच्चों में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। तो हम लोग इतने स्मार्ट हैं कि वी नीड टू टेक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, तो हमारी जो अच्छी चीजें हैं उसको बनाकर वेस्ट की जो अच्छी चीजें हैं उसको इनग्रेन करनी है। तो बोलते हैं ना मॉडर्निटी और सभ्यता को मिलाने की जरूरत है।
1: तो जो एक सादगी वाला जीवन शैली है जिसे आप मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल कहते हैं, उसको लेकर अलग अलग धारणाएं हैं सबके बीच, सो आप हमें बताएं कि प्रमुख गलत फहमियां क्या है मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को लेकर, और उनको दूर करना कितना इम्पोर्टेंट होता है जब आप युवाओं को कन्विंस करना चाहते हैं इस राह की ओर बढ़ने की तरफ।
0: तो जब भी हम लोग माइंडफुल और सस्टेनेबल लिविंग की बात करते हैं ना, तो आम तौर पे धारणा बनी है कि हमें बहुत रिस्ट्रिक्टिव लाइफस्टाइल के लिए बोला जाएगा
1: जी।
0: बोला जाएगा ये मत करो वो मत करो, होता है ना साधु बन के हिमालय पे चले जाओ, तो उसका

0: से क्या होता है कि लोग इस लाइफस्टाइल को, इस जीवन शैली को ट्राई नहीं करने चाहते हैं। बहुत ज्यादा फ्रिक्शन महसूस होता है शुरुआत में। तो ये जो मिथ है उसको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि माइंडफुल होने के लिए डे वन पे छोटे छोटे एक्शन लेने की जरूरत है, और वो छोटे छोटे एक्शन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, इतनी सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, फूड, फैशन, ट्रेवल, टेक्नोलॉजी, किसी भी मायने में अगर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रेगुलेट करती हैं तो आपकी वेलबींग बढ़ेगी। वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उससे आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होगा। वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी पर्सनल जर्नी, पर्सनल रिलेशंस इंप्रूव होंगे, तो आपका पर्सनल ग्रोथ होगा। तो उस चीज को बताना, कई बार होता है कि डे वन पे हम लोग बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं कि मत कीजिए। और किसी भी चीज में वो हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि हमें अगर कुछ 6 महीने बाद कोई चीज अचीव करनी है तो हमें वी हैव टू ब्रेक डाउन दैट टारगेट। उस टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना जरूरी है। तो माइंडफुल लिविंग में भी वैसा ही है। एक छोटे सी चीज से शुरुआत करते हैं और वो चीज भी आपको डिसाइड करनी है। तो देर इज नो फिक्स गाइडलाइन कि अगर आप एक्स करते हो तो आप माइंडफुल हो, अगर आप वाई करते हो तो माइंडफुल नहीं हो। ये एक्स और वाई हर इंडिविजुअल अपने लिए डिसाइड करे
1: जी
0: कि वो सैकड़ों चीजें कंज्यूम कर रहा है उसमें कहां वो किस चीज को रेगुलेट कर सकता है, और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफस्टाइल, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पीस। क्योंकि लाइफस्टाइल और पीस से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो अगेन वो सस्टेनेबल नहीं होगा।
1: हमारे जो श्रोता हैं जो आपकी बात सुनकर इंस्पायर होंगे और वो तुरंत कुछ ऐसा करना, बदलाव लाना चाहें अपने जीवन शैली में जो सिर्फ त्वरित ना हो, लंबे समय तक उसका पर्यावरण को फायदा हो, तो कोई ऐसी कॉमन चीजें बता सकते हैं जो हरेक के लिए लागू है? कोई सरल 2-3 ऐसे उपाय, ऐसी बदलाव अपनी जिंदगी में जो वो ला सकते हैं?
0: जहां जहां अगेन पॉसिबल हो, तो अगर हम लोग कार यूज कर रहे हैं तो हफ्ते में अगर एक बार कार पूल कर ले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। महीने में मैं एक बार ट्रेवल कर रहा हूँ तो साल में 12 ट्रिप ले रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट एयर ट्रेवल। तो 12 एयर ट्रेवल करने से कम करके अगर एक भी कम करके मैंने ट्रेन ले लिया तो एयर ट्रेवल का बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट होता है।
1: यस yes.
0: वैसे ये टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज हर इंसान, चाहे वो युवा हो चाहे वो बड़े लोग हो, दिन भर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी से हमारा मिलना होता ही है।
1: जी.
0: चाहे वो काम के कॉन्टेक्स्ट में हो या वो लेजर एक्टिविटीज के कॉन्टेक्स्ट में हो। तो डेटा बताती है कि एक आम हिंदुस्तानी करीब 3 घंटे रोज सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है। काम पे तो जो हम लोग करते हैं वो करते ही है, तो उस 3 घंटे को घटा के 2 घंटे भी किया जाए तो उसका भी बहुत बड़ा इमिशन है। तो अगर 1 घंटे भी कम किया जाए तो साल भर में 365 घंटे हमने स्ट्रीमिंग कम की तो उसका बहुत बड़ा एमिशन बचेगा। सिमिलरली जो वर्किंग लोग हैं, हमारे मेल्स में हम लोग बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, तो वो अनरीड मेल क्या हुआ? कहीं ना कहीं वो किसी कंपनी के सर्वर में सेव है, तभी तो आपके लिए वो जब आप खोलती है वहां अनरीड दिखाता है। तो हर मेल का 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम एमिशन है, कितना बड़ा मेल है, उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है। तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं। तो जो भी पहलू है हमारी जिंदगी का, किसी भी चीज को काम करने में चूंकि एमिशन हो रहे हैं तो किसी भी चीज को में हम लोग थोड़ा माइंडफुलनेस लाते हैं तो एमिशन बचेंगे, चाहे वो फूड हो, फैशन हो, ट्रेवल हो, टेक्नोलॉजी हो।
1: कुछ और एग्जांपल्स भी आप बताना चाहेंगे?
0: तो जैसे आईआईटी बॉम्बे के एक सर है, सोलंकी सर, तो उनका बहुत सुंदर सा एक इनिशिएटिव है वाह का, रिंकल्स अच्छे हैं। तो उनका कहना है कि हफ्ते में एक दिन अगर हम लोग बिना आयरन किया हुआ कपड़ा पहने तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आयरनिंग का एमिशन बहुत है, 150 ग्राम, 200 ग्राम एक कपड़े को आयरन करने में एमिशन होता है। एनर्जी हमने यूज की बिजली को, बिजली उत्पन्न करने में जो इमिशन हुआ, हाँ, तो कार्बन इमिशन वैसे कैलकुलेट हुआ कि हमने डायरेक्ट इसके लिए तो बिजली यूज की
1: जी।
0: लेकिन ये बिजली को पहुंचाने में क्या इमिशन हुआ वो मेजर होता है। तो अगर एक कुर्ते में मैंने 100 ग्राम यूज किया एग्जाम्पल के लिए, तो 52 हफ्ते में मैं सिर्फ 52 कपड़े कम करूंगा तो 5.5 किलो एमिशन हमने कम किए। तो जहां पे भी पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो वो करने की जरूरत है। और वो जरूरत इसलिए कि कई बार हमें लगता है इस छोटे से एक्ट से बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा, लेकिन 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग छोटा छोटा ही बदलाव लाएंगे तो कलेक्टिवली बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। और हर देश का चूंकि वर्ल्ड को एक कमिटमेंट है एमिशंस को लेके, तो उस कमिटमेंट में बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है। वो
1: एक तरह से आप कह रहे हैं कि हम सबके पास ये शक्ति है कि हम योगदान दें, जो हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करना चाहते हैं, एमिशंस कम करना चाहते हैं। एक और पहलू जिस पर हम आपकी राय चाहेंगे कि पिछले कुछ समय में किस तरह के बदलाव आए हैं, किस तरह के नवाचार आए हैं जो आपको प्रमुख लगते हैं, जिनसे ये उम्मीद जगती है कि हम सही दिशा में प्रगति कर रहे हैं।
0: सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये इंटरव्यू ही है कि इतने बड़े स्केल पे इतने सारे लोगों को आप बुला रहे हैं और इस पे चर्चा कर रहे हैं। देश की बात करें मिशन लाइफ के बारे में, ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17 गोल 2030 तक के लिए जो है, तो 17 में से 3 गोल, गोल नंबर 3, 12 एंड 13 सीधे सीधे जो हम लोग बातें कर रहे हैं उससे अलाइंड है। क्लाइमेट एक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एंड गोल नंबर 3 इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो संयुक्त राष्ट्र मतलब पूरे विश्व ने भी

0: चीज को समझा है कि वेल बीइंग और माइंडफुल लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज में आजकल ESG के ऊपर बहुत फोकस है कि उनकी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, उनके जो ऑपरेशन है वो इन्वायरमेंट से अलाइंड होने चाहिए। ई इन्वायरमेंट एस सोशल एंड जी इज गवर्नेंस, तो इन तीनों ही मामले में उनको अलाइन होना चाहिए। तो उस पर बहुत सारा काम हो रहा है, हर कंपनीज पे फोकस कर रही है कि उनके एमिशंस को वो लोग कैसे कम कर सके। सेम चीज अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो कॉलेजेस में भी आज बहुत सारी रैंकिंग में होता है ना, गवर्नमेंट रैंकिंग देती है कि आपका ए है, ए प्लस है, बी है, तो उस रैंकिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपके कैंपस में क्या सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो इंसान के लेवल पे, इंस्टीट्यूशन के लेवल पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स पूरे देश में, पूरे विश्व में हो रहे हैं।
1: आशीष जी, जो भी युवा चाहे कि हम एक लॉन्ग लास्टिंग प्रभाव छोड़ें एनवायरनमेंट पर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, अपनी जीवन शैली को साधारण करके खुद भी ज्यादा खुश हो, डीक्लटरिंग जैसा आप कह रहे हैं कि जब डीक्लटरिंग होती है तो फिजिकल स्पेस क्रिएट हो रही है, मेंटल स्पेस क्रिएट हो रही है, आप और चीजों के बारे में सोच सकते हैं, जो चीज जरूरी है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तो इस पूरी जर्नी में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के

0: छोड़े एनवायरनमेंट पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, अपनी जीवन शैली को साधारण करके खुद भी ज्यादा खुश हो, डीक्लटरिंग जैसा आप कह रहे हैं कि जब डीक्लटरिंग होती है तो फिजिकल स्पेस क्रिएट हो रही है, मेंटल स्पेस क्रिएट हो रही है, आप और चीजों के बारे में सोच सकते हैं, जो चीज जरूरी है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो इस पूरी जर्नी में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के यूथ को कि किस तरह के वो एक दृष्टिकोण अपनाएं, माइंडसेट अपनाएं, या कौन से ऐसे प्रमुख बदलाव लाएं ताकि वो बहुत ही सक्रिय भागीदार बने इस पूरी यात्रा में, इस पूरे मुहिम में?
1: तो इम्पॉर्टेंट बस वो है कि वी हैव टू डू आवर बिट, क्योंकि उस चीज को इनसिग्निफिकेंट हम लोग समझने की गलती नहीं कर सकते। या इस चीज को अगर मैं ऐसे प्रेजेंट करूं कि जब तक हर इंसान अपनी भागीदारी नहीं करेगा तब तक कोई भी पॉलिसी अपना जो डिजायर्ड इम्पैक्ट है वो नहीं ला पाएगी, क्योंकि पॉलिसी को धरातल में सक्सेस या अनसक्सेसफुल जनता करती है। इसलिए हमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत है। किस मायने में कर सकते हैं? तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जहां भी उस इंसान को, मुझे, मेरा पर्पस अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, किसी एक्स वाई जेड का अलग हो सकता है, अपनी अपनी जर्नी को मैं पॉज करें, रिफ्लेक्ट करें, और जहां लगता है कि हाँ ये चीज थोड़ी इंप्रूव करने की जरूरत है उस चीज को इंप्रूव करें। जैसे मुझे मालूम है मुझे 2 किलो वजन कम करना है, तो मेरा फोकस वेट पे होगा, मेरा फोकस थोड़ा एक्सरसाइज करने पे होगा। किसी को लगता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है मोबाइल पे, तो उसका फोकस डिजिटल डिटॉक्स पे होगा। किसी को लगता है कि उसको बहुत इंपल्सिव आदत है वो शॉपिंग करने की, तो अपने हर अलग अलग इंसान का अलग अलग फोकस हो सकता है और उसका जज वो खुद ही होगा। तो यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको ये ही करने की जरूरत है, जो भी आपको सही लगता है वो कीजिए, लेकिन करना जरूरी है। जब तक वो नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने जो रिसर्च किया था उसमें यही पाया कि इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज, बीइंग द चेंज वाला कंपोनेंट कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो हम लोग बदलाव चाहते हैं लेकिन होने में थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। तो अभी भारत जिस स्टेज में है, हमें बदलाव होने की भी बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है।
0: सो आशीष जी, आप जो इस राह पर चले हैं माइंडफुल कंजम्पशन को बढ़ावा देने की राह पर, आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा आपका अनुभव रहा जिसने आपको प्रेरित किया?
1: तो मैम, मैंने इरमा के बाद साबरमती गांधी आश्रम अहमदाबाद में पर्यावरण मित्र नाम की एक संस्था एस्टेब्लिश की, जो कागज बिनने वाली बहनों के साथ काम करता है। तो इट इज ए कोऑपरेटिव ऑफ रैग पिकिंग सिस्टर्स। तो वो इनिशिएटिव अभी भी चल रहा है, 12 साल हो गए। लेकिन 2014 से 2020 की जर्नी में दो चीज बहुत सामने आई, बार बार आई, कि हमारे जो यूथ है, हमारे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के अर्बन यूथ प्रिविलेज्ड सेक्शन में जो है, वो बहुत ज्यादा समय कम्युनिटी को नहीं दे पा रहे। वो आते हैं एज एन इंटर्न, अपना 2-4 वीक रहते हैं, चले जाते हैं। तो वो एक सवाल था कि सब कुछ है जिंदगी में फिर भी गिव बैक क्यों नहीं कर पा रहे। और दूसरा सवाल था, 2020 की बात है ये, कि 75 साल हो गए आजादी को, लेकिन हम लोग अभी तक वो भारत क्यों नहीं बना पाए जिसको कल्पना हम लोग करते हैं, डिजायर्ड इम्पैक्ट क्यों नहीं आ पाया। तो 2021 में 15 महीने की एक यात्रा की मैंने, प्रोजेक्ट मंथन, जहां 2500 घंटे हम लोगों ने इन्वेस्ट किए 95 ऑर्गेनाइजेशंस विजिट करने में, जहां 8 अलग अलग डोमेन के लोगों से हम लोग मिले, किसान से, हाउसवाइफ से, वर्किंग प्रोफेशनल से, आईएएस, आईपीएस, एमएलए, सोशल चेंज मेकर, सब से ये समझने की कोशिश की कि ये जो इम्पैक्ट है उनके दृष्टिकोण में उनके काम का क्या रहा। तो उस पूरे 15 महीने की जो जर्नी थी उसका निचोड़ यही निकला, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज वी समटाइम्स फॉरगेट टू बी द चेंज। तो माइंडफुल लिविंग, माइंडफुल कंजम्पशन, सादगी भरा जीवन है उसका एक सार बन के निकला कि ये जो चीज है वो इस दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हम लोग सब लोग बी द चेंज भी हो पाएंगे और सादगी भरे जीवन से तनाव भी कम होगा। और इसीलिए फिर इस पूरे मूवमेंट को हम लोगों ने लॉन्च किया, और उस पर फिर ये थोड़ा सा समय लिया कि ये बातें अगर युवाओं तक पहुंचानी है तो उनकी भाषा में पहुंचानी होगी। तो वहां पे फिर डेटा बेस्ड अप्रोच हम लोगों ने लिया कि कैसे डेटा के माध्यम से, एक्सपीरियंशियल गेम्स के माध्यम से ये सारी बातों को सामने रखा जाए। तो यहां से शुरुआत की, और एक नंबर अपने आप को इंस्पायर करने के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ये नंबर लिया कि 10 लाख लोगों तक ये बात 2030 तक पहुंचानी है। तो इसीलिए ब्रिज फॉर चेंज उस मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जहां पे ये बातें हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, इंटरैक्टिव तरीके से, गेम्स के तरीके से युवाओं तक पहुंचा सके।
0: आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस गहन बातचीत के लिए और हमें बताने के लिए कि सादा जीवन शैली सभी के लिए कितनी फायदेमंद है, हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और हम सब उसमें अपना अपना योगदान योगदान करें ये कितना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद। आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप

0: न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ का प्रसारण अभी किया जा रहा था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म कपूर एंड संस का ये गीत। अरिजीत सिंह, आशीष कौर की आवाज़ें हैं। इस गीत को लिखा डॉक्टर देवेंद्र काफिर ने और संगीत है अरमान मलिक का।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से। इस गीत को लिखा है, गाया है और संगीत दिया है अखिल सचदेवा ने। आइए सुनते हैं।

प्रिया सरैया का लिखा गीत आप सुन रहे थे फिल्म भूमि से। इस गीत को गाया था राहत फ़तेह अली खान ने और संगीत था सचिन जिगर का। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की आवाज़ में, अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत फिल्म टू स्टेट से। इस गीत को संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म जॉली एलएलबी 2 से। जुनैद वासी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था चिरंतन भट्ट ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म राब्ता से। अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज़ें हैं, इरशाद कामिल और अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोल, संगीत है प्रीतम का।

0: श्रोता, फिल्म राब्ता के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी 2 दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय प्रवासी समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को विश्वसनीय मित्र बताया, न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
2: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहाँ रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में आज जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये योजना भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फूकवोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रथिका प्रदीप और चिकित्सा तनिपार्थी की तिकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के 4थे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से 228-232 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रथिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक

ने नाम किया। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7:05 हुए हैं और इस समय होता है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के साथ हाजिर हूं मैं आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं के लिए दैनिक कार्यक्रम ग्राम सभा। 7:45 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। रात्रि 8:00 सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 8:15 पर। कार्यक्रम संस्कृति भारती का प्रसारण रात्रि 9:30 पर किया जाएगा और संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर आर माधुरी देवी का कर्नाटक वीणा वादन रात्रि 10:00। श्रोताओं, ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल यानी रविवार 12 जुलाई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, सुबह की शुरुआत होगी हमारे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के साथ 7:20 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा का आनंद आप लेंगे सुबह 8:30 पर। लोक संगीत के अंतर्गत 9:15 पर आप सुनेंगे देवेंद्र सिंह और साथियों द्वारा गाए बुंदेली लोकगीत। 9:30 पर सुनिए सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण। सुबह 10:05 पर सुनिए कार्यक्रम सामुदायिक गायन शिक्षण पाठ और फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 10:30 पर। श्रोताओं, इन सभी कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल के अंतर्गत किया जाएगा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फिल्म संगीत का आनंद लीजिए सुबह 11:00। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का समय होगा दोपहर 12:00 और रात्रि 9:30। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक हंसना मना है कि 11वीं कड़ी आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:00 सुनिए कार्यक्रम महिला सभा, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी के योगदान से प्रसारित किए जाएंगे। फिल्म संगीत का आनंद पुनः लीजिए दोपहर 2:00, शाम 5:33, शाम 6:00 और रात्रि 8:30 पर। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा, प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की होगी। कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति के अंतर्गत किया जाएगा और सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा का प्रसारण 7:30 पर होगा, जिसमें श्रोतागण डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा से बातचीत कर सकेंगे। विषय होगा धान की उन्नत उत्पादन तकनीक एवं समसामयिक कार्य। रात्रि 8:00 सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। कार्यक्रम डगर विकास की आकाशवाणी गुना के योगदान से 8:15 पर प्रसारित किया जाएगा, जिसका विषय होगा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। और अखिल भारतीय रविवासी संगीत सभा में कल सुनिए कुमार मरदुर का गायन, इसका प्रसारण रात्रि 10:00 आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। श्रोताओं, ये थे कल यानी 12 जुलाई 2026 रविवार को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2030 तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार को हो जाएगा दोगुना। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज इंदौर में मेरा युवा मेरा गौरव सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। विश्व जनसंख्या दिवस पर आज प्रदेश में भी जन जागरूकता रथ और रैली के साथ विश्व जनसंख्या सप्ताह की शुरुआत हुई और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा।
1: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की अपनी 3 देशों की यात्रा पूरी करने के बाद भारत के लिए रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज इंदौर में मेरा युवा मेरा गौरव सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में राज्य भर से लगभग 5,000 युवाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 युवा कल्याण का वर्ष होगा। युवाओं को सरकार की योजनाओं से जोड़कर प्रदेश के विकास और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में उनकी भागीदारी को सशक्त बनाया जाएगा।
2: 2027 हम युवा वर्ष मनाने जा रहे हैं। ऐसे में देश के अंदर सबसे युवा आबादी दुनिया की कहीं है तो भारत में है। हमारे राज्य में भी 2 करोड़ से ज्यादा युवा है। ऐसे में युवाओं को आने वाले समय में अपने प्रदेश की दशा क्या हो, उनकी सहभागिता क्या हो, उनके आइडिया क्या हो, शासन की सभी योजनाओं के पक्ष रखते हुए उसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, पूरा अभियान चलाने के लिए जैसे बीते किसान वर्ष में भी हमने इंडस्ट्री के साथ किसानों की बात की थी, उसी का परिकल्पना के आधार पर यह वर्ष डिक्लेयर किया था।
0: वहीं महू के युवा किसान जितेंद्र पाटीदार ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती एवं पर्यावरण संरक्षण किसानों की आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार है। मार्केटिंग और डिजिटल तकनीक से प्राकृतिक उत्पादों को सीधे बाजार तक पहुंचाकर किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है।
3: मैं जितेंद्र पाटीदार, निवास ग्राम सिमरोल, विकासखंड महू, जिला इंदौर का प्राकृतिक खेती करने वाला कृषक हूँ। प्राकृतिक खेती के माध्यम से हम पर्यावरण संरक्षण, भूजल संचय, जैव विविधता और प्राकृतिक खेती के माध्यम से हम संतुलन और आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
0: सम्मेलन का उद्देश्य राज्य के विकास और

0: निर्माण प्रक्रिया में युवाओं को शामिल करना था। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह करते हुए कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि देश और उसकी जनता को समझने के लिए पढ़ने की आदत होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री शाह ने कहा कि पुस्तकालय राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम है और इनके जरिए देश की संस्कृति और ज्ञान परम्परा की जानकारी लोगों तक पहुँचती है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को जिला भिंड के लहार में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की लगभग 1,25,15,000 से अधिक बहनों के खातों में सिंगल क्लिक से 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का सीधा अंतरण करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को योजनाओं की शुरुआत से अब तक की 38वीं नियमित मासिक किस्त का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि शिक्षा ही समाज में परिवर्तन लाने का सबसे बड़ा और सशक्त माध्यम है। हमारे सांदीपनी विद्यालय, पीएम श्री स्कूल और प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में प्रदेश में शिक्षा की त्रिवेणी बन रही है। आज इंदौर में हिंद रक्षक पुण्योदय प्रकल्प के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश ने प्राथमिक स्कूली शिक्षा स्तर पर ड्रॉपआउट दर को शून्य करने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। हमारे सांदीपनी विद्यालय मॉडल की पूरे देश में सराहना हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए संकल्पित है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और सतत विकास की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस का विषय है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना। आज और भविष्य के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव हैं। इस अवसर पर प्रदेश में भी जन जागरूकता रथ और रैली के साथ विश्व जनसंख्या सप्ताह की शुरुआत हुई। इस दौरान 18 जुलाई तक विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में फिलहाल तेज बारिश से कुछ राहत मिलने वाली है। अगले 3 दिनों तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। अगले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि 14 जुलाई से कुछ जिलों में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना में आज मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्व विभाग ने लंबित प्रकरणों के निराकरण की कार्रवाई की। खंडवा महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आगामी 13 जुलाई को आयोजित होगी। देवास जिले में डायरिया से होने वाली मृत्यु दर को शून्य पर लाने के उद्देश्य से स्टॉप डायरिया अभियान का संचालन किया जा रहा है। शिवपुरी जिले में दस्तक अभियान 14 जुलाई से 31 अगस्त तक जिले भर में संचालित किया जाएगा। नर्मदापुरम शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी कंपनियों और स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ने के लिए 15 जुलाई को नर्मदापुरम में युवा संगम रोजगार और स्वरोजगार मेले का आयोजन होगा। जबलपुर में व्यापार और उद्योग जगत में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त बनाने के उद्देश्य से

कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की विमेन्स विंग का कार्यक्रम कल रविवार को आयोजित होगा। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

ग्राम सभा कार्यक्रम सुन में वह सभी भैया बहनन को अमृता बहन की राम राम। और भैया बहनों कैसे हैं आप, का हाल चाल हैं? संजा बिरिया और चाय की चुस्की के संगे आप सब रेडियो के सामने बैठ गए हैं और हम जुड़ गए हैं आप सबके संगे आज को कार्यक्रम लेके। तो आज हम बात करेंगे आज के दिन की कछु नई खबरें, मौसम के हाल, संगे संगे आप सबके पसंदीदा लोकगीत सोई सुनवा है। सो शनिवार के दिना कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लोकगीत के संगे। जिए गाँव है मंजू श्रीवास्तव ने।

0: तो भैया बहनों लोकगीतन के संगे अब बिरिया हो गई है बुंदेली समाचारन की सुनत है बुंदेली समाचार।
1: बुंदेली समाचार।

0: तो भैया बहनों, लोकगीतन के संगे अब बिरिया हो गई है बुंदेली समाचारन की सुनत है बुंदेली समाचार।
1: बुंदेली समाचार।
0: बुंदेली समाचारन के संगे हम हैं अमृता जैन। आज के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करे थे। ये अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त करो है कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुनो हो जाए। प्रधानमंत्री ने जो भी बताया है कि न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर को निवेश करेगी। उतई न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कही है कि प्रधानमंत्री मोदी की जा यात्रा दोनों देशों के संबंधन को नई ऊंचाई देगो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की अपनी 3 देशों की यात्रा पूरी करने के बाद भारत के लाने रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में मेरा युवा मेरा गौरव सम्मेलन 2026 को उद्घाटन करो। ई कार्यक्रम में राज्य भर से लगभग 5,000 युवाओं ने हिस्सा लाओ। ई अवसर पे मुख्यमंत्री ने कही हती कि वर्ष 2027 युवा कल्याण को वर्ष रहे। युवाओं को सरकार की योजनाओं से जोड़ के प्रदेश के विकास और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में उनकी भागीदारी को सशक्त बनाओ जे है। सम्मेलन का उद्देश्य राज्य के विकास और नीति निर्माण प्रक्रिया में युवाओं को शामिल करवो है। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा भई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है कि शिक्षा ही समाज में परिवर्तन ला सकत है और ई के लाने हमारे सांदीपनी विद्यालय, पीएम श्री स्कूल और प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में प्रदेश में शिक्षा की त्रिवेणी बन रही है। आज इंदौर में हिंद रक्षक पुण्योदय प्रकल्प के कार्यक्रम को संबोधित करत भय मुख्यमंत्री ने कही हती कि मध्य प्रदेश ने प्राथमिक स्कूली शिक्षा स्तर पे ड्रॉप आउट दर को शून्य करवे की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी है। मुख्यमंत्री ने कही हती कि हमारी सरकार बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करवे के लाने संकल्पित है। मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री नारायण सिंह पंवार ने कही हती कि भावी पीढ़ी के लाने हरित मध्य प्रदेश को निर्माण हमारी प्राथमिकता है। संगे प्रकृति और पर्यावरण को संरक्षण हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। आज राजगढ़ जिला के नरसिंहगढ़ में पौधरोपण कार्यक्रम को संबोधित करत भय उन्होंने कही हती कि विकास और पर्यावरण के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करवो आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ई के लाने प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा को वृक्ष बनवे तक संरक्षित करवे को संकल्प लेने चाहिए। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाए जावे वाले ई दिना को बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ावे के लाने मनाओ जात है। ई को उद्देश्य जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करवो और सतत विकास की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करवो है। ई वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस को विषय है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लाने। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कही है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। ई अवसर पर प्रदेश में भी जन जागरूकता रथ और रैली के संगे विश्व जनसंख्या सप्ताह की शुरुआत भई है। ई दौरान 18 जुलाई तक विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करे जे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता करी। श्री गडकरी ने संवाददाताओं को बताओ कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनावे के उपाय पर चर्चा हुई। उन्होंने कही हती कि परिवहन क्षेत्र को अधिक सुदृढ़, टिकाऊ और आपस में बेहतर रूप से जोड़वे के लाने ब्रिक्स देशों के बीच नवीनतम तकनीकों और नवाचारों को साझा करो जा रहा है। प्रदेश में फिलहाल तेज बरसात से कछु राहत मिली है। अगले 3 दिनों तक प्रदेश में हल्की बरसात से मध्यम बरसात को सिलसिला चलत रहे और कऊँ कऊँ भारी बरसात को अलर्ट नहीं है। अगले 24 घंटा के दौरान नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर

0: और सागर संभाग के कई जिलों में गरज चमक के संगे हल्की बरसात होवे के अनुमान है। बुंदेली समाचार समाप्त भए।
1: बुंदेली समाचार।
0: तो भैया बहनों, बुंदेली समाचारन के बाद अब आप सबसे जुड़ गए हैं और आज आप लोगों को बता दें कि आज है विश्व जनसंख्या दिवस। आज है 11 जुलाई और आज है जो दिना, अब अपन बात करें कि जो दिन हम काय बना रहे हैं। तो भैया बहनों देखो, बढ़ती जनसंख्या आज दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और आज हम देख रहे हैं कि यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो जो संसाधन है उन पर दबाव बढ़त है, रोजगार की कमी होत है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता होत है और सबसे ज़्यादा जरूरी कि पर्यावरण पे खतरा बढ़त है। अब कहें कि का इको कोनो निराकरण है, तो कहेंगे कि हाँ। आप कहेंगे कैसे? तो देखो भैया बहनों, छोटो परिवार खुशियाँ अपार, जो नाम हमने सुनो है, नारा हमने सुनो है, मानो अब ये सुनने नहीं है, ये अपनाने हैं, जीवन की कुंजी बनाने हैं, तभी हम आगे चल के ई जो बढ़ती जनसंख्या है ई के प्रति कहीं ना कहीं जागरूक हों ऐसो कह सकते हैं। तो चर्चा तो अपनी चलत रहे, मानो अब कार्यक्रम में सुनत है लोकगीत, जी ये गाँव है मंजू मिश्रा ने।

आगे बढ़े और हम बात कर रहे थे आज की दिना कि आज है विश्व जनसंख्या दिवस। तो भैया बहनों देखो, बढ़ती जनसंख्या कहीं ना कहीं समस्या पैदा कर रहा थे, तो इके लाने हमें परिवार नियोजन को अपनाने चाहिए, ना कि हम यदि जो परिवार नियोजन अपनाते हैं जिससे हमारा परिवार सुरक्षित रहता है, बल्कि राष्ट्र के विकास में भी योगदान मिलता है। तो हम जागरूक बने और इस संकल्प के संगे स्वस्थ व समृद्ध राष्ट्र को निर्माण करें। अब देखो, बातें हमने करी आज के दिन की, मानो जब ग्राम सभा कार्यक्रम है तो खेती बाड़ी की भी तो बातें होने चाहिए। सो भैया बहनों देखो, खेती बाड़ी की यदि हम बातें करें तो जो आप और हम सब जानते हैं कि खेती करवे में कितनी मेहनत लगत है। वर्ष भर जब कृषक मेहनत करत हैं, मौसम अनुकूल होते हैं, प्रतिकूल होते हैं, ऐसे में जब कृषक मेहनत करत है, पानी उपलब्ध हो, सही वातावरण हो, तब जाके एक हरी फसल लहलाहत है। मानो यदि केवल हम मेहनत करते रहे तो क्या ये फसलें उन्नत रहे हैं? नहीं। आज आधुनिक तकनीकों के कारण हम खेती को आसान और लाभकारी बना सकते हैं। ऐसे में हमें स्मार्ट खेती करने चाहिए। अब कहेंगे कि स्मार्ट खेती कैसे? तो देखो भैया हरो, कम लागत में ज़्यादा उत्पादन तथा बेहतर गुणवत्ता मिले तो ये हम कहते हैं स्मार्ट खेती। अब हम मेहनत तो ज़्यादा करें और हमें सामने उतनी अच्छी लागत ना मिले तो जा बात भी कहीं सही नहीं है, तो स्मार्ट खेती अपनाएं। अब हम बात करें कि स्मार्ट खेती होत कैसे है, तो चूंकि समय समय पे अपन चर्चा भी करते हैं, तो सबसे बहुत ही सरल काम है, ड्रिप इरिगेशन से पानी की बचत करें, सही समय पे मृदा परीक्षण करवाएं तथा मृदा के अनुरूप खाद को उपयोग करें, मोबाइल ऐप के माध्यम से मौसम की जानकारी तथा बाजारों की खबरों पर ध्यान रखें, संगे संगे जैविक खेती अपनाएं। आप जैविक खेती अपना के मृदा की उर्वरकता बढ़ा सकते हैं और आज आप जानते हैं कि जैविक उत्पादों की बाजार में कितनी मांग है और इनकी एक बहुत अच्छी कीमत आपको मिलत है। तो आप जैविक खेती अपनाएं जो मृदा के स्वास्थ्य के लाने बहुत आवश्यक है। स्मार्ट खेती से आप स्वयं के स्वास्थ्य को भी अच्छो रखते हैं, जो उत्पादन होते हैं जिए अन्य जो हमारे जो भी ग्राहक हैं वे खरीदते हैं, और संगे संगे हमारी मृदा, इन सबके लाजे जब खेती लाभकारी है तो ये अपनाने चाहिए। स्मार्ट खेती से मृदा को स्वास्थ्य अच्छो बनाएंगे, पैदावार बढ़ाएंगे तथा जल संरक्षण भी हम करेंगे, जिसे का होता है कि आगे चल के हम पर्यावरण से जुड़ सकते हैं और पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो देखो, ये सब बातें अपन कर रहे हैं और करत भी रहे हैं। मानो अब सुनते हैं लोकगीत, जी ये गाँव है राजेंद्र सिंह नरवरिया ने।

सो भैया बहनों, लोकगीतन के संगे अब चलवे की बिरिया हो गई है। मनो आप लोगों को बता दें कि कल रविवार 12 जुलाई के दिन आप ग्राम सभा कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। और ये बार की हमारी हेलो ग्राम सभा को विषय रहे है धान की उन्नत उत्पादन तकनीक एवं सामायिक कार्य। और हमारे विशेषज्ञ हो जाएं डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा, अभी हमारे संगे जुड़ेंगे। तो यदि आपको विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ को फ़ोन करें। फ़ोन नंबर है 2660902 और 2660903। और जो हमारे भोपाल से बाहर के भैया बहन हैं वे हमें STD कोड 0755 लगा के अपने प्रश्नों के समाधान ले सकते हैं। तो कल संध्या के 7:30 बजे से आप हम लोगों के संगे जुड़ जाएं कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा के अंतर्गत। और भैया बहनों, चूँकि अब चलवे की बिरिया हो गई है और हमें आशा है कि आपको आज का कार्यक्रम अवश्य पसंद आ हुई है, तो अब आप सबसे विदा लें। ईद चलती बिरिया आप सबको, अमृता बहन की राम राम।

ग्रामीण श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण अभी किया जा रहा था। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7:45

0: मिनट हुए हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। हेलो नमस्कार, मैं एना कर्मा उड़ान कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, हमेशा की तरह आप सबसे पहले हमारा नंबर लिख लें, क्या पता कार्यक्रम सुनने के बाद आप हमसे अपने अनुभवों को या अपने प्रश्नों को साझा करना चाहें। तो श्रोताओं, हमारा नंबर है
2: 8860088827। जी हाँ, 8860088827।
3: आज हम बात करते हैं नशे की। नशे के कारण कई घर बर्बाद हो जाते हैं। नशा बहुत सी समस्याओं का जड़ है, ये तो हम सब जानते हैं, पर फिर भी आज युवा पीढ़ी नशे में फंसी हुई है। श्रोताओं, आज हम आपको एक नाटक के द्वारा सुनाते हैं कि ऐसे परिवार के बारे में जो नशे के कारण बर्बाद हो गया था।
4: अरे सुनती हो राजू की माँ, राजू के लिए रिश्ता आया है। लड़की अच्छे घर की है और सुशील है।
5: सुनो जी, हमारा बेटा बहुत सुंदर है, तो लड़की भी सुंदर होनी चाहिए।
4: हाँ हाँ, लड़की बहुत सुंदर है।
5: फिर ठीक है, एक बार राजू से भी पूछ लेते हैं।
4: अरे जब राजू श्याम को घर आ जाएगा, तुम उससे बात कर लेना।
5: अरे आ गया बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। चलो हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो।
6: ठीक है माँ।
5: राजू बेटा, तुमसे कुछ बात करनी थी।
6: कहो माँ, क्या कहना है?
5: बेटा आज तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, लड़की बहुत सुंदर है और सुशील भी। तुम कहो तो हम लड़की वालों से बात करें।
6: जैसा तुम्हें ठीक लगे माँ, आप वैसा ही करें। आप मेरा अच्छा बुरा मुझसे अधिक जानती हो, ठीक है?
5: ठीक है बेटा, अब तुम सो जाओ, कल बात करेंगे।
4: राजू की माँ, क्या तुमने कल राजू से बात की थी क्या?
5: हाँ जी, मैंने शाम को राजू से बात की थी, वो शादी के लिए तैयार है। अब आप लड़की वालों से बात कर लीजिए।
4: ठीक है, फिर आज मैं लड़की वालों से बात कर लेता हूँ।
3: फिर राजू के पिताजी लड़की वालों के घर चले जाते हैं और राजू के रिश्ते की बात करते हैं। वहीं लड़की के पिताजी राजू के पिताजी से पूछते हैं कि लड़का क्या करता है। राजू के पिताजी बताते हैं कि राजू मेरा बेटा प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और अच्छा कमाता है। फिर दोनों परिवार एक दूसरे से मिलते हैं और राजू और लता का रिश्ता पक्का करते हैं। फिर कुछ समय पश्चात राजू और लता की शादी हो जाती है। लता सुबह उठकर अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है और रसोई में काम करने चली जाती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था और लता भी अपने परिवार में बहुत खुश थी। कुछ समय के पश्चात लता के ससुर की अचानक तबीयत खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी राजू के कंधे पर आ गई और राजू परेशान रहने लगा और सोचने लगा कि वह सब कैसे संभालेगा।
6: लता जल्दी से खाना ला दो, मुझे काम पर भी जाना है।
7: जी खाना तैयार है, खा लीजिए।
5: राजू बेटा ज्यादा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, तू आराम से खाना खा ले।
6: पता नहीं कब ठीक होगा माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ।
8: राजू क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो।
6: क्या बताऊँ यार, पिताजी के जाने के बाद मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। दिमाग भी काम नहीं कर रहा है कि क्या करूँ।
8: दोस्तों से मिलोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा।
6: चलो ठीक है, शाम को चलते हैं।
7: माँ जी वो अभी घर नहीं आए, काफी देर हो गई है। हर रोज तो 6 बजे तक घर आ जाते हैं।
5: बहू फोन लगा कर तो पूछ, वो कहाँ रह गया है।
7: जी माँ जी,

0: हेलो।
1: हेलो जी, आप अभी तक घर नहीं आए, बहुत देर हो गई है। माँ जी भी पूछ रही हैं।
0: लता, माँ को कह दो चिंता ना करे, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, थोड़ी देर बाद आता हूँ।
1: ठीक है जी। बहू, क्या कहा राजू ने, कहाँ पर है वो?
2: माँ जी, वो अपने दोस्तों के साथ हैं, जल्दी घर आ जाएंगे, आप चिंता ना करें। चलिए आप खाना खा लीजिए।
3: फिर कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है और लता दरवाजा खोलती है। वह देखती है कि राजू नशे की हालत में खड़ा है, उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं। यह देखकर लता को बहुत दुख हुआ। वो राजू को चुपके से उसके कमरे में ले गई। यदि माँ जी को इसके नशे के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा।
1: सुनो जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कल आप नशे की हालत में घर आए, अगर माँ जी देख लेते तो उन्हें कितना बुरा लगता। यदि आपको कोई परेशानी है तो मुझे बताइए।
0: चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मुझे क्या करना और क्या नहीं, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है।
1: जी वो मैं तो बस,
0: मैंने कहा ना चुप रहो, जाओ अपना काम करो और जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ।
1: बहू, अरे ओ बहू, मेरे लिए एक कप चाय तो बना दे।
2: जी माँ जी, ये लो माँ जी।
0: लता, लता, अरे कहाँ मर गई? मैंने खाना लाने के लिए कहा था, अब तक क्यों नहीं लेकर आई?
1: जी अभी आई।
4: अरे बहू, ये राजू को क्या हुआ, वो इतने गुस्से में क्यों चिल्ला रहा है?
2: कुछ नहीं माँ जी, आप चाय पीजिए, मैं अभी आई। ये लीजिए, खाना खा लीजिए।
0: थू, ये क्या बनाया है, ना इसमें नमक है ना मिर्च। अरे तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता क्या? अभी बताता हूँ तुझे।
1: माँ, मत मारिए मुझे, क्यों मार रहे हो?
0: अभी बताता हूँ तुझे।
4: अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, क्यों मार रहा है बहू को? छोड़ इसे, मत मार। क्या हुआ ये तो बता बेटा, क्या किया है इसने?
0: अरे माँ, आप बीच में मत बोलिए, आपने ही इसे सर पे चढ़ा रखा है, तभी तो ये कोई काम ढंग से नहीं करती ना। आज नहीं छोड़ता तुझे।
4: तू छोड़ इसे और बाहर जा। बहू चुप हो जा, रो मत, मैं समझाऊंगी उसे, अभी वो गुस्से में है ना।
1: माँ जी, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? यदि कुछ पूछूं तो मुझे बताते भी नहीं, क्या हुआ है, इतना नाराज क्यों है?
4: कोई बात नहीं बहू, अभी वो गुस्से में है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा।
3: धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ महीने बाद लता ने एक बेटी को जन्म दिया। लता और उसकी सास बहुत खुश थी। वहीं राजू शराब के नशे में अधिक डूबता चला गया। वह हर रोज शाम को नशे के हालत में घर आता और घर में लड़ाई झगड़े और मारपीट करता। राजू ना तो लता के बारे में सोचता और ना अपनी बेटी के बारे में, बस सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता। धीरे धीरे उसने काम पर भी जाना छोड़ दिया। घर के हालात बहुत ही खराब हो गए।
4: बेटा राजू, तुमने ये क्या हाल बना लिया है, तुझे ना खुद का होश है और ना ही बच्चे के खाने पीने का, घर में कुछ सामान भी नहीं है।
2: माँ जी, आप किसे कह रही हैं? ये तो शराब के नशे में पड़े रहते हैं, इन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। मैंने पड़ोस की बहन से बात कर ली है, कल से मैं मजदूरी करने के लिए जाया करूँगी, आप अपने और अपने पोती का ध्यान रखना।
0: अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई है?
4: अरे बेटा क्यों चिल्ला रहा है, बहू घर पर नहीं है।
0: घर पर नहीं है, अरे कहाँ मर गई वो?
4: वो आज खेत में मजदूरी करने गई है, शाम को ही घर आएगी।
0: मजदूरी करने? अरे माँ, वो मजदूरी करने नहीं, मेरी बेइज्जती करने गई है। वो लोगों को दिखाना चाहती है कि मैं काम नहीं करता, बस वही काम करती है। आने दो उसे, आज शाम को मैं बताता हूँ उसे।
2: लो माँ जी, आज जो मजदूरी मिली है मैं उससे घर का राशन लेके आई हूँ।
4: ठीक है बहू, अच्छा किया, रसोई में रख दो।
0: आ गई कुल्टा, किस यार से मिलने गई थी बता मुझे।
1: ये क्या कह रहे हैं आप, आप होश में तो हैं, कुछ भी कह रहे हो, छोड़िए मुझे।
0: चल निकल मेरे घर से, आज मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगा, चल निकल।

0: अरे बेटा छोड़ दे बहू को, क्यों मार रहा है, छोड़ दे।
1: माँ तू बीच से हट जा, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, चल निकल यहाँ से, मेरी बेटी तो मेरे पास ही रहेगी, समझी।
2: फिर लता अपने माता पिता के घर आ जाती और वहीं रहने लगती। लता अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने सिलाई करना सीख लिया और वह अपने गांव में सिलाई का काम करने लगी और अपने माता पिता की मदद करने लगी। लेकिन लता हमेशा अपनी बेटी के बारे में सोचती रहती थी और उदास हो जाती थी। वहीं दूसरी तरफ राजू शराब के नशे में पड़ा रहता था, ना ही उसे अपना होश था और ना ही अपनी माँ और बेटी का। उसकी नशे की लत के कारण वह बहुत ही कमजोर हो गया था। एक दिन राजू को उसके पुराने दोस्त ने, जो उसके साथ कंपनी में काम करता था, नशे के हालत में सड़क पर पड़े हुए देखा और उसे उठाकर घर ले गया।
3: नमस्ते आंटी जी, मैं राजू का दोस्त हूँ, हम दोनों ही एक ही कंपनी में काम करते थे।
0: नमस्ते बेटा, आओ अंदर आओ, ये कहाँ मिला तुझे, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ बेटा।
3: आंटी जी मैं रास्ते से आ रहा था, राजू मुझे वहीं मिला। क्या हुआ इसे, इसकी ये हालत कैसी हुई और भाभी जी कहाँ हैं?
0: बेटा क्या बताओ, राजू के पिताजी के जाने के बाद कुछ दिनों बाद राजू ने शराब पीना शुरू कर दी और घर में रोज लड़ाई झगड़े करने लगा, बहू के साथ भी बहुत मारपीट करने लगा और उसे घर से निकाल दिया। मैं क्या करूं बेटा, ये छोटी सी बच्ची भी बिना माँ के पूरा दिन रोती रहती है।
3: आप चिंता ना करें आंटी जी, मैं राजू से बात करूंगा और उसे समझाऊंगा।

0: अरे श्याम यार, तू यहाँ कैसे और कब आया? और सब ठीक है ना?
1: हाँ यार राजू, मैं तो ठीक हूँ, पर तूने ये क्या हाल बना रखा है? तू शराब पीने लगा? तूने इस शराब के कारण अपनी जिंदगी खराब कर ली है और साथ में अपने परिवार की भी। तेरे इस नशे के कारण तेरा पूरा परिवार परेशान है। पहले तेरा परिवार कितना खुश था, तूने शराब के कारण भाभी जी को भी घर से बाहर निकाल दिया है और तेरी बेटी को बिना माँ के कर दिया। यार राजू, तू अपने नहीं कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोच।
2: तू ठीक कह रहा है यार, जब से मैं शराब पीने लगा हूँ ना, मेरे परेशानियाँ और बढ़ने लगी हैं। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ। लता के साथ भी मैंने बहुत बुरा किया, वो भी मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। मेरी वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो गया यार।
1: अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी सब ठीक हो जाएगा अगर तू चाहे तो।
2: वो कैसे?
1: पहले तो तू इस शराब को छोड़ दे और भाभी को घर ले आ और उससे माफ़ी मांग, वो तुम्हें माफ़ कर देगी। और कल मैं तेरे लिए कंपनी में बात करूँगा कि तुम्हें वो काम पर रख ले, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा।
2: ठीक है यार श्याम, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कल ही तेरी भाभी के घर जाकर उससे माफ़ी भी मांगूंगा और उसे अपने साथ ले आऊंगा। माँ तुम भी मुझे माफ़ कर दो।
3: फिर राजू अगले दिन लता के घर जाता है और माफ़ी मांग और लता को घर आने के लिए कहता है। लता भी राजू को माफ़ करती है और उसके साथ अपने ससुराल आ जाती है। लता को देखकर उसकी सास बहुत खुश होती है। लता अपनी सास के पांव छूती है और अपनी बेटी के गले लगती है। कुछ दिनों बाद राजू को फिर से कंपनी में नौकरी मिल जाती है और वह काम करने लगता है। वहीं लता भी सिलाई का काम करती है और दोनों मिलकर कर्जदारों का कर्ज चुकाते हैं।
4: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। और श्रोताओं, अब ये समय है कि आप अपने प्रश्नों को या फिर आज की कहानी से संबंधित अनुभवों को हमसे साझा करें। तो वक्त जाया ना करें, अपना फोन उठाएं और हमें कॉल करें। जी हाँ श्रोताओं, हमारा नंबर है
5: 8860088827। जी हाँ, 8860088827।
4: और हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। तो श्रोताओं, मुझे एना कर्मा को दीजिए अनुमति, तब तक के लिए नमस्कार।

0: प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का प्रसारण अभी किया जा रहा था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा से प्रमुख क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुनायत, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
2: अम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार अनुभा जी।
2: त्रिगुनायत जी, मैं आपसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड का 2 दिन का दौरा 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का उस देश का पहला आधिकारिक दौरा है। इसे एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। आप इस दौरे के महत्व को कैसे देखते हैं?
3: अनुभा जी, इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले कार्यकाल में 12 साल के जो हमने देखा है कि जो एक हाई लेवल एंगेजमेंट या विजिट डेफिसिट भारत से होता था देशों के साथ, वो कहीं के भी हो, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो दूसरे नेबरहुड में हो या लैटिन अमेरिका में रहे हो, ये सब चीजों को काफी अच्छी तरह से ब्रिज किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी जाते हैं, राष्ट्रपति जी भी जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जाते हैं, मिनिस्टर्स भी जाते हैं जगह जगह। अब बहुत सी जगह हमने देखा है, खासतौर से आपने देखा होगा कि वेस्ट एशिया वगैरह में
2: जी,
3: जो हमारे सबसे बड़े नेबर है, वहां पे 3 दशकों तक कोई विजिट नहीं हुई। तो अब आज देखिए 40 साल के बाद प्रधानमंत्री का पहला दौरा हो रहा है यहाँ पर, तो ये मैं समझता हूँ अपने आप में एक बड़ी बात है। कारण सीधा यह है कि हर एक देश इम्पोर्टेंट होता है और इंडो पैसिफिक के अंदर में जो उसमें भारत का एक बड़ा स्टेक्स भी है, वहां पर जो ये रिलेशनशिप है हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, इंडोनेशिया के साथ हो, चाहे वो न्यूजीलैंड के साथ में हो। तो जैसा आपने देखा कि हमने अभी उनके साथ में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने की कोशिश की, तो भारत है वो जो स्मॉल पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं उनके साथ भी अपनी मित्रता काफी बढ़ा रहा है, उनको काफी असिस्टेंस दे रहा है, उसमें भी इन सब देशों का एक बड़ा रोल है क्योंकि वो वहीं पर है। और इंडियन ओशन में इनके साथ में हमारे कोलैबोरेशन जो बढ़ने से, चाहे वो मैरिटाइम में हो, ट्रेड में हो, इन्वेस्टमेंट्स में हो या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, तो ये सारी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो हमने डिसाइड किया कि हमारे रिश्ता जो है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील हो जाए, ये एक इस बात को बताता है कि दोनों के लिए ही कितना इम्पोर्टेंट है। और जैसा आप जानती हैं कि वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ में बात किया तो उन्होंने कहा ये विनिंग पार्टनरशिप
2: जी,
3: तो दोनों के लिए विन-विन पार्टनरशिप है
2: जी। आपने अभी जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कही, तो एक बार फिर से अपने श्रोताओं को बता दें कि नई दिल्ली और वेलिंगटन ने अपने रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक बढ़ाया है, जिसमें अगले 4 वर्षों में संबंधों को बढ़ाने का रोड मैप शामिल है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे अभी आप बता रहे थे, अगर उस पे और आप थोड़ा सा जोड़ सकें कि ये अपग्रेड जो हुआ है दोनों देशों के संबंधों के बीच में, ये इन संबंधों को नया रूप कैसे देगा?
3: देखिए, 2 तरह के रिश्ते होते हैं। एक तो कि नॉर्मल चलते जाएं, जिसको आप कह सकती हैं ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होती है कि आपने हमें कुछ दिया, हमने आपको कुछ दिया, कभी कभार हम कोऑपरेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड के साथ हमारा कोऑपरेशन नहीं रहा है या ट्रेड नहीं है, लेकिन जब हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में उस चीज को तब्दील करते हैं तो उसमें और बहुत सारी चीज आ जाती है, जैसे डिफेंस है, सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, इन्वेस्टमेंट्स है, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में हो, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को शेयर करने के बारे में हो, तो ये सारी चीजें उसके अंदर में आ जाती है। इसीलिए जो रोड मैप तैयार हुआ है, चाहे उसमें हमने ट्रेड को 2030 तक डबल करने की बात हो, या हमारा इन्वेस्टमेंट हो, या जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन हो, या किस तरह से हम मैरीटाइम एरिया के अंदर में और ज्यादा अपना कोलैबोरेशन को बढ़ाएंगे, तो ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा महत्व रखती है आज की डेट में, क्योंकि दुनिया का जिस तरह के हालात है, जिस तरह की एक अनसर्टेनिटी है, उसमें वैल्यू सप्लाई चेन के लिए इस तरह की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत आवश्यक है।
2: भारत और न्यूजीलैंड ने 2030 तक गुड्स एंड सर्विसेज में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके लगभग 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, और दोनों देशों ने एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए थे। आइए पहले सुनते हैं कि आज प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
4: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को

0: दोगुना बढ़ाएंगे।
1: अम्बेसडर त्रिकुणाया, जैसे भी हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने एफटीए पर जो बयान दिया, तो ये जो फैसले हुए हैं आज, जो एक ट्रेड को डबल करने का फैसला और जो हमने एक एफटीए साइन किया है, ये जो फैसले हैं, दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने में कितनी अहम भूमिका निभाएंगे?
2: अगर आप देखें तो मार्च में 2025 में आई थिंक उनके जो ये प्रधानमंत्री थे भारत आए थे, और जब वो भारत में आए थे उस वक्त ये डिस्कशन हुआ था कि भाई हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं आपके साथ। आप सोचिए कि तब से लेकर के अब तक एक रिकॉर्ड टाइम में ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है, उसका रेटिफिकेशन होने वाला है, उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि फ्री ट्रेड में दोनों देश एक दूसरे को एक स्पेशल डिस्पेंसेशन देते हैं। तो ये खाली ट्रेड में नहीं है, ये सर्विसेज सेक्टर में, क्योंकि भारत की जो सर्विसेज हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो, चाहे वो टेलीकॉम सर्विसेज हो, या टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, उस सब में भारत का एक काफी नाम है दुनिया के अंदर। हमारे लोग जो है जगह जगह जाते हैं। इसी तरह मोबिलिटी एक एग्रीमेंट होता है उसका पार्ट, कि किस तरह से हमारे प्रोफेशनल्स ट्रेवल कर सकते हैं, और इसी तरह से उनका भी है कुछ हिस्सा भारत के अंदर, किन चीजों में उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो इसीलिए जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है दोनों देशों के बीच में, इससे आपको एक आशा बंधी है कि आपका जो ट्रेड है बायलैटरल ट्रेड एटलीस्ट गुड्स सर्विसेज में वो डबल हो जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि इस सिचुएशन में इससे कई तरह का डाइवर्सिफिकेशन भी होगा, और जो डिपेंडेंसीज ऐसी जगह हैं जहाँ पे बड़ी फ्रजाइल सप्लाई चेन्स हैं, उनको भी एड्रेस करने में मदद मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री के इस दौरे का एक और महत्वपूर्ण जो नतीजा है वो रक्षा और समुद्री सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
0: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है, और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: त्रिकुणायन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो मैरिटाइम और डिफेंस में जो हमारा कोऑपरेशन कोलैबोरेशन बढ़ाने की बात हो रही है, ये जो सहयोग है इसके लिए क्या नए मैकेनिज्म्स बनाए गए हैं, और ये जो बदलती इंडो पैसिफिक सुरक्षा स्थितियां हैं उसके बीच में इस सहयोग का क्या महत्व है?
2: आपको पता ही है कि दोनों ही मैरिटाइम पावर्स हैं, मैरिटाइम नेशंस हैं, और दोनों के सामने बड़े चैलेंज है, और चैलेंज आजकल दो तीन तरह का है। एक तो ये कि किस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ देश फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को नहीं मानते हैं और उस बात को पूरी तरह नकारा करते हैं, लेकिन भारत इस बात को मानता है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सिक्योर इंडो पैसिफिक जो है वो ट्रेड हो या इन्वेस्टमेंट्स हो या आपका मैरिटाइम कनेक्टिविटी हो, उस सब के लिए बहुत आवश्यक है। और जिन देशों ने ये अनक्लॉज जो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉ ऑफ द सीज को साइन किया हुआ है, उनको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि भारत मानता है कि ये ग्लोबल कॉमन्स और ग्लोबल गुड्स के रूप में है। तो इसलिए यही न्यूजीलैंड का भी मानना है इस बारे में, एंड देयरफॉर हम लोगों का जो भी कई सारे एमओयू जो हमने साइन किए हैं इसके बीच में, डिफेंस के अंदर में हो, चाहे मैरिटाइम सिक्योरिटी में हो, हाइड्रोग्राफी होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट में है, मैरिटाइम हेरिटेज के बारे में है, तो ये सारे एमओयू जो है यही बताते हैं कि हमारा जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी में कॉपरेशन है या इंटेलिजेंस कॉपरेशन है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। और इसी तरह से ओशन जो है उनका पॉल्यूशन कैसे कम किया जा सकता है, किस तरह से जो ब्लू इकोनॉमी है उसको हार्नेस कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो है मैं समझता हूँ इसके अंदर में आती हैं, और उससे काफी बड़ा फायदा होता है दोनों देशों को।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज घोषणा की कि भारत और न्यूजीलैंड भारत के यूपीआई और न्यूजीलैंड के पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और हमने देखा कि सप्ताह की शुरुआत में प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया की यात्रा के दौरान भी एक ऐसा ही समझौता किया गया था। तो फिनटेक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नई दिल्ली और अन्य देशों के बीच ये इस तरह का जो सहयोग बढ़ रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं?
2: देखिए, दुनिया में हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जो युद्ध हुए हैं इतने सारे, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, इसके समय पे हमने ये देखा है कि ज्यादा से ज्यादा जो देशों को एक ऐसा आपस में ट्रेड करने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए कोई थर्ड कंट्री की करेंसी की आवश्यकता ना हो। और इसी तरह आजकल कोऑपरेशन फिनटेक एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ मीडियम बन गया है, और टेक्नोलॉजीज हैं जिसके जरिए दो देश काफी कुछ कर सकते हैं आपस में। और भारत ने जो अपना यूपीआई डेवलप किया है, यूनाइटेड पब्लिक इंटरफेस, उसको आप सोचिए कि कम से कम 25 देशों के साथ में हमने एग्रीमेंट साइन किया है। इसका मतलब है कि हम उस देश की करेंसी के साथ डायरेक्टली बिना किसी थर्ड कंट्री की करेंसी के जाए बिना व्यापार कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, टूरिज्म में लोगों को बड़ा फायदा होता है, बड़ा आसानी होती है जाने में, ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर रिमिट करने में एक क्लिक के ऊपर आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें दुनिया ने देखा है, और आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने भी भारत के यूपीआई को बहुत सराहा है।
1: जी।

0: आपने देखा पीछे जब फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ आए थे, तो जब उन्होंने चाय पी और
1: जी बिल्कुल
0: अपना QR कोड के जरिए वो दिया, तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि किस तरह भारत का UPI ज्यादा से ज्यादा देशों में एक्सेप्ट हो रहा है, और ये दोनों के ही भले की बात है।
1: आज न्यूजीलैंड में जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात की कि कैसे न्यूजीलैंड और भारत दोनों महिलाओं के लिए अवसर पैदा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
1: अम्बेसडर त्रिगुणायत, बात चाहे महिलाओं के योगदान की हो या जिस देश का भी दौरा प्रधानमंत्री करते हैं वहां भारतीय मूल के जो लोग रह रहे हैं उनके योगदान की बात करते हैं वो हमेशा, तो जब प्रधानमंत्री इस तरह की बात करते हैं अपने दौरों के दौरान भारतीय मूल के लोगों की उस देश के विकास में, तो ये कितना बड़ा एक मोराल बूस्टर होता है और दो देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करने में कितना महत्वपूर्ण है।
0: यहाँ तक हमारा इंडियन डायस्पोरा है, वो 10,000 करीब लोग वहां पर थे जिन्होंने उनको सुना, और आपने देखा कि वहां के प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ में गए,
1: जी
0: और यही दर्शाता है। और ऐसे ही हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, इंडोनेशिया में आपने देखा कि वहां पे तो उन्होंने कहा कि DNA ही है हमारे अंदर, उनके राष्ट्रपति ने। तो जिस तरह हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं भारतीय मूल के लोग जो वहां पर हैं या NRIs हैं, वो किस तरह वहां के लोगों के साथ मिलजुल करके उनके देश के डेवलपमेंट के लिए इतना काम कर रहे हैं, तो उसको वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। भारत ये अप्रिशिएट करता है कि हमारे भारतीय लोग या भारत मूल के लोग जो हैं वो एक लिविंग ब्रिज की तरह हैं दोनों देशों के बीच में। और रही बात जहां तक वुमेन लेड डेवलपमेंट की, तो आपको याद होगा जब हमने G20 समिट की थी तो उस वक्त प्रधानमंत्री ये नहीं कहे वुमेन एम्पावरमेंट को छोड़ के उसकी जगह एक नया एक मंत्र दिया था जिसको कहते हैं वुमेन लेड डेवलपमेंट, मींस हर हर क्षेत्र में स्त्रियों को और से ज्यादा सुविधा मिले और उनको उस तरह का, तो ये जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती है दोनों देशों के बीच में उनको हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक दूसरे को बढ़िया बना सकते हैं, तो उसका मतलब मैं समझता हूँ इस बारे में था। और जहां तक हमारे जो डायस्पोरा है, मैं कहूंगा कि वो तो हर जगह कहीं पर भी जाते हैं तो उनकी एक तारीफ होती है, और उनका जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन उस देश की बढ़त के लिए होता है उसको सब लोग अप्रिशिएट करते हैं।
1: कृषि के क्षेत्र में दोनों देश हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी उद्योग में सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए हैं। इन क्षेत्रों में न्यूजीलैंड की जो एक्सपर्टीज है और भारत का एक जो बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार और एग्री टेक टैलेंट है, वो एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एक दूसरे को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं।
0: देखिए, जैसा हम हमेशा से सुनते आए हैं, भले ही हम टेक्नोलॉजी में, IT में और सब चीजों में काफी प्रोग्रेस कर गए हैं, लेकिन आज तक हम यही कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है।
1: जी
0: ये तो बात सब जानते हैं इस बारे में, और भारत में भी बड़े रिवोल्यूशन हुए हैं, चाहे वो ग्रीन रिवोल्यूशन हो, चाहे वो येलो रिवोल्यूशन हो या व्हाइट रिवोल्यूशन हो। तो न्यूजीलैंड के बारे में अगर देखें, उनकी इकोनॉमी में भी डेयरी और एग्रीकल्चर का बड़ा योगदान है, लेकिन उन्होंने भी टेक्नोलॉजी को, एग्रीटेक जिसको बोलते हैं, उसमें रिसर्च करी है। तो ये जो हमारा एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन है दोनों देशों के बीच में, ये हमारे बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने में और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस के एक्सचेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी एक्सचेंजेस हैं, उस सब में और भी ज्यादा बढ़ावा देगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट एक मैकेनिज्म बनाई गई है, और इसीलिए ये जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं रोड मैप के अंदर में, उनको मॉनिटर करने के लिए एक फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पे एक बड़ी कमिटी का गठन किया गया है दोनों देशों के, जो उसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि भाई खाली बोलने के बाद ही नहीं है कि हम चले गए, विजिट खत्म हो गई, लेकिन यह है कि इसके बाद क्या प्रोग्रेस हुई हर चीज के ऊपर में। और मैं समझता हूँ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को बनाना एक अच्छी बात है।
1: लोगों के स्तर पर यानी कि पीपल टू पीपल लेवल पर सहयोग के वो कौन से क्षेत्र हैं जिन पर आज दोनों देशों ने एक सहमति बनाई है और वो कितने महत्वपूर्ण है।
0: देखिए, जहां तक पीपल टू पीपल है तो टूरिज्म एक बड़ी चीज है, तो उसमें अगर फैसिलिटेशन होता है हमारा वीजा के ऊपर में। दूसरा चीज ये है कि भारतीय लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा सर्विसेज इंडस्ट्री में हैं, वो वहां पर जाते हैं। कल्चरल कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें, एक दूसरे के जो कल्चर को जाने वहां की माओरी जैसे है ट्रेडिंग, उनको बुलाया जाए, उनको यहाँ पर किया जाए, उस तरह बहुत सारे हर एक देश की अपनी अपनी प्रोजेक्शन होती है। तो भारत की जो है जैसे अब योगा है वो वहां बड़ा पॉपुलर है, तो ये सब चीजें होने से जो है पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस तभी बढ़ेंगे जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे कल्चर को देखते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, और उसमें भी जो हमारा जो डायस्पोरा है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है।
1: अम्बेसडर अनिल त्रिगुणायत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा से प्रमुख क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: Surgióme.
1: कार्यक्रम सुर्खियों में का प्रसारण अभी किया जा रहा था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले सुनते हैं मजरू का लिखा और लता मंगेशकर का गाया ये गीत फिल्म कारवां से। इसे संगीत दिया है R.D. बर्मन ने।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म घर से। गुलजार के लिखे बोल और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ।
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना, कुछ तो।
1: ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ।
0: फिर ना कभी कहना दे।

आनंद बख्शी का लिखा गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था अजनबी और इस गीत को संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुनते हैं फिल्म हमजोली से। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें हैं। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी का लिखा गीत, संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है दो कलियाँ।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज़ों में। साहिर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है ओ पी नैयर ने। फिल्म का नाम है नया दौर।

0: श्रोताओं, फिल्म नया दौर के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण होगा इस छोटे से अंतराल के बाद, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: न सनसनी, न सनसनी, न सनसनी, न उत्तेजना, न उत्तेजना, न उत्तेजना, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम

0: विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 9831789154239155237143 और 8433452041

0: 114 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम हैं। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है माँ और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
3: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़,

0: हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो तीन दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में 1 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताज़ा समाचार मिलने तक बिना विकेट गंवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi departs for home after concluding landmark New Zealand visit. Says bilateral trade agreement between two countries will accelerate India's journey towards a developed nation. 15 Indians killed in a boat mishap in Vietnam. President, Vice President and Prime Minister express condolence. West Bengal government forms 9-member committee headed by a retired judge to examine draft bill of uniform civil code. Legendary

0: कमेटी तश्कील दी है। जुनूबी भारत की सरकर्दा गुलुकारा एस जानकी का इंतकाल हो गया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 4-5 दिन के दौरान मुल्क के शिमाली और मशरकी हिस्सों में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। फीफा वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा, जबकि मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। और मैड्रिड में तीरंदाजी वर्ल्ड कप के चौथे मरहले में भारतीय खवातीन की कंपाउंड टीम ने चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का 2 दिन का तारीखी दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस आने के लिए रवाना हो गए हैं। पिछले 40 साल में किसी भारतीय वजीर आजम का न्यूजीलैंड का ये पहला दौरा था। जना मोदी के इस दौरे से बाहमी ताल्लुकात को बड़ी तकवीयत मिली है। इस दौरे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के अपने हम मनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत की। दोनों रहनुमाओं की मौजूदगी में मुख्तलिफ शोबों में 5 मुफाहमतनामों का तबादला किया गया। इनमें दिफा, सियाहत, खेल, कुदरती आफात से पैदा सूरत हाल से निमटना, डेयरी और मवेशी परवरी शामिल हैं। जना मोदी के इस दौरे की एक बड़ी खासियत ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में कम्युनिटी का प्रोग्राम था, जिसमें भारतीय बिरादरी के 10,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए जना मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का मुस्तकबिल एक दूसरे के साथ मुंसलिक है और दोतरफा तिजारत के समझौते से एक तरक्की याफ्ता मुल्क की समत भारत के सफर में तेजी आएगी।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: इस मौके पर न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत को एक भरोसेमंद दोस्त करार दिया और न्यूजीलैंड की तरक्की में भारतीय बिरादरी के लोगों के रोल की सताइश की और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत को सराहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जनाब क्रिस्टोफर लक्सन की गर्मजोशी और मेहमान नवाजी के लिए तशक्कुर का इजहार किया और कहा कि भारत न्यूजीलैंड ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज हुआ है। किसी भारतीय वजीर आजम के गुजश्ता दौरे के बाद से 40 साल के वक्फे का तस्करा करते हुए जना मोदी ने कहा कि अगले दौरे में इतना वक्त नहीं लगेगा।
1: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है, ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूँ। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था।
0: आज वियतनाम के फू क्वोक जजीरे के नजदीक एक कश्ती के डूब जाने से 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई है। वियतनाम में भारतीय सिफारतखाने ने तस्दीक की है कि महलुकीन में 13 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर सिफारतखाने ने महलुकीन की वो फहरिस्त पोस्ट की है जो वियतनाम के अहलकारों ने फराहम की थी। सिफारतखाने के मुताबिक हलाक होने वालों में से 10 का ताल्लुक तमिलनाडु से, 3 का आंध्र प्रदेश से और 2 का केरलम से था। इस कश्ती में 36 लोग सवार थे, जिनमें 32 भारतीय सयाह, अमले के 3 अफराद और एक अटेंडेंट शामिल था। 17 मुसाफिरों और अमले के 4 अफराद समेत 21 अफराद को बचा लिया गया और अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। जिंदा बच जाने वालों में से 2 की हालत नाजुक है और इंतहाई तिब्बी निगहदाश्त में उनका इलाज चल रहा है। बचाव मिशन के दौरान वियतनाम के साहली गार्ड रीजन 4 कमांड ने अपने अहलकार तैनात किए और बचाव से मुतालिक सामान का इस्तेमाल किया। मुतासर कुनबों को मालूमात और मदद फराहम करने के लिए हो ची मिन शहर में भारतीय कौंसल जनरल में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इसके नंबर इस तरह से हैं, +84362107930, +84915527314 और +84334520414। सोशल

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। वर्षा भारत के लिए केवल एक ऋतु नहीं बल्कि नवजीवन का उत्सव है। बादलों का आगमन, धरती की सोंधी गंध, खेतों की हरियाली और लोकगीतों की स्वर लहरियां, ये सब मिलकर हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा बनते हैं। भारतीय मनीषा ने जल को सदैव जीवन का मूल माना है। ऋग्वेद का ये मंत्र कहता है, आपो हिष्ठा मयो भुवा, यानी जल ही सुख, समृद्धि और कल्याण का स्रोत है। यही कारण है कि भारत ने जल का केवल उपयोग नहीं किया, उसका सम्मान भी किया। कहीं बावड़ियां बनी, कहीं तालाब, कहीं कुंड, तो कहीं मंदिरों के सरोवर। वर्षा

0: की हर बूंद को संजोना हमारी जीवन पद्धति का एक हिस्सा ही था। आज परिस्थितियाँ थोड़ी बदल रही हैं, तो कहना चाहिए बदल चुकी हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप भी बदला, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अल्पवृष्टि और कई क्षेत्रों में लगातार गिरता भूजल स्तर, ये संकेत हमें सचेत करते हैं कि जल संरक्षण अब विकल्प नहीं आवश्यकता है। इसी सोच को जन भागीदारी का स्वरूप देने के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया। इसका संदेश है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी जहां भी वर्षा हो, जब भी वर्षा हो, उसकी प्रत्येक बूंद को सहेजिए। प्रधानमंत्री ने मन की बात के अनेक संस्करणों में भी जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में तालाबों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और सामुदायिक प्रयासों के प्रेरक उदाहरणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जल संरक्षण तभी सफल होगा जब ये शासन का नहीं समाज का संकल्प बने। ये अभियान वस्तुतः आधुनिक भारत को उसकी ही प्राचीन जल संस्कृति से जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास है। बारिश की हर बूंद प्रकृति का उपहार है, उसे सहेजना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के उस मूल भाव का सम्मान भी है जो हमें सिखाता है कि प्रकृति से जितना लें उतना उसे लौटाएं भी। प्रकृति के प्रति श्रद्धा भारतीय संस्कृति को उसकी अनोखी अनूठी पहचान देती है। यही सांस्कृतिक चेतना हमारे पर्वों में भी दिखाई देती है, हमारे उत्सवों में भी दिखाई देती है, जहां आस्था और लोक जीवन एकाकार हो जाते हैं।
1: यो यो जोगनाथो चोड़ी नंदी।
0: इसी क्रम में पुरी की विश्व विख्यात श्री जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक समावेशिता, लोक आस्था और शिल्प परंपरा का एक अद्भुत उत्सव है। और इसी पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति नित्य नीलाचल।

0: जैसा शरीर वैसा देह, अर्थात शरीर के लिए जो आवश्यक है देह पूजन भी उसी विधि के अनुसार होना चाहिए। इस भावपूर्ण विचारधारा का प्रतीक है उड़ीसा के पुरी में अनुष्ठित हो रही यह नवदिनात्मक यात्रा। भक्त और भगवान के बीच सारे व्यवधान को तोड़कर प्रभु बलभद्र, देवी सुभद्रा और प्रभु श्री जगन्नाथ रथारूढ़ होकर रत्नवेदी को छोड़कर पुरी बड़दांड में यात्रा करते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रहकर बाहुड़ा यात्रा में भाई बहन श्री मंदिर को वापस आते हैं। यह यात्रा भाव की यात्रा है, समन्वय की यात्रा है। कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथमेवतु। रथ यात्रा की महानता के बारे में गवेषक अशोक पांडे कहते हैं,
1: भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को बड़े आकार में अनुष्ठित होती है। प्रत्येक वर्ष सरस्वती पूजा यानी वसंत पंचमी से काष्ठ संग्रह का कार्य शुरू होता है। रथ निर्माण में लगभग 205 प्रकार की सेवाएं कार्य करते हैं।
0: साल में एक बार अनुष्ठित इस रथ यात्रा की प्रस्तुति बहुत पहले से होती है। श्रीनगर के सम्मुख स्थित रथ खला में पवित्र अक्षय तृतीया से ही रथ का कार्य आरंभ हो जाता है। इसमें विश्वकर्मा महाराणा, रूपकार, चित्रकार, धोई सेवक, करतिया सेवक, ताम्र विशोई, ओझा महाराणा और अन्य सेवक हिस्सा लेते हैं। रथ निर्माण के परंपरा के ऊपर प्रकाश डालते हुए पुरी के मुख्य विश्वकर्मा सेवक विजय कुमार महापात्रा जी का कहना है,
2: मैं नंदीघोष रथ का मुख्य महाराणा सेवक हूँ। 1971 से हम एक कार्य कर रहा हूँ। भगवान जी जो रथ का काम होता है ना, ये

0: हर साल बैसाख महीने अक्षय तृतीया तिथि से शुरू होता है और आषाढ़ श्रीगुंडीचा के पहला दिन नेत्रोत्सव के दिन समाप्त हो जाता है। तीनों रथ में सबसे प्रथम का लकड़ी है फांसी। फांसी का लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है, फांसी। इसके बाद ढोरा और एक लकड़ी है, इसका नाम है असन। फांसी, ढोरा, असन की लकड़ी में ये तीनों रथ निर्माण किया जाता है और मही शिमली का लकड़ी में ये निर्माण किया जाता है। हमारा विश्वकर्मा के साथ सहयोग करने के लिए अर्थात लकड़ी को उठाने के लिए भोई सेवक है। इसके बाद लोहे का काम करने के लिए कमार सेवक है और चित्र का काम करने के लिए चित्रकार सेवक है, रूपकार सेवक है, लकड़ी में रूप देता है। महाराणा, भोई, कमार, रूपकार, चित्रकार सेवक के द्वारा यह रथ का कार्य संपन्न होता है। अक्षय तृतीया तिथि से जब भगवान जगन्नाथ जी का रथ का कार्य शुरू दिया जाता है, इसके बाद रथ का काम शुरू होता है। इसके बाद ये जो नृसिंह चतुर्दशी तिथि आता है और एक काम जोड़ दिया जाता है, इसका नाम है गुज्जर। जगन्नाथ जी का चंदन यात्रा होता है ना अक्षय तृतीया तिथि से, जो भोर तिथि आएगा चंदन यात्रा के आखिरी दिन में दोनों पहियों में एक अर्घ संजोग किया जाता है प्रभु के आज्ञामण आने से बाद। हर कार्य यहाँ पर प्रभु के आज्ञा से होता है। अक्षय तृतीया तिथि से प्रभु आज्ञा देता है, मेरा रथ को शुभारंभ करो। इसके बाद रथ का कार्य शुरू किया जाता है। भौरी तिथि में प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को खड़ा करो। इसके बाद दोनों पहिया में एक अर्घ संजोग किया जाता है। नेत्रोत्सव तिथि से प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को मेरे दरवाजे पर लाओ। आज्ञा माल आने से बाद खींच के ले जाएंगे प्रभु दरवाजे पर। जगन्नाथ जी का रथ सबसे बड़ा है और बलभद्र जी का रथ जरा छोटा है, सुभद्रा माई का रथ सबसे छोटा है। जगन्नाथ जी का रथ में 16 पहिया लगता है, बलभद्र जी का रथ में 14 पहिया लगता है और सुभद्रा माई का रथ में 12 पहिया लगता है। इस तीनों रथ ऐसे बना जाता है और कोई जगह में इसी तरह रथ नहीं बना जाता है।
1: श्रीक्षेत्र धाम में भक्त के साथ भगवान के अपूर्व मिलन के दो मुख्य यात्राएं होती हैं। पहला स्नान यात्रा, दूसरा गुंडीचा यात्रा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मंदिर के स्वर्ण कुएं से 108 घड़े जल से श्री बलभद्र, देवी सुभद्रा, श्री जगन्नाथ और श्री सुदर्शन को स्नान कराया जाता है। इस दिन प्रभु श्री जगन्नाथ गजानन वेश धारण करते हैं। आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा से तीनों ठाकुर अणसर घर में रहते हैं। इस समय अणसर घर की पट्टी में तीनों ठाकुरों की एक चित्रपट की पूजा की जाती है, इसे पट्टदिया कहते हैं। दैतापति सेवक हलधर दास महापात्र के अनुसार,
2: मैं हूँ हलधर दास महापात्र, बलभद्र जी का 12 ग्रही दैतापति हूँ। प्रभु स्नान का बाद में अंदर जाते हैं, हमारा सेवा शुरू होता है, श्रृंगार करते हैं, वेश करते हैं। रात को समय भगवान अनसर पिंडी को चल जाते हैं। ये सेवा हमारा अमावस्या तक सेवा होता है। ये सेवा 15 दिन में चलते हैं। यहाँ अनुसर का घर में शुक्ल वस्त्र परिधान होगा और शुक्ल फूल लगी होगा। एकादश का दिन महाप्रभु जी की रंगीन परिधान होगा। आयुर्वेद पक्षी पंचन होता है, आम, केला, कनस, सपुरी, कपटा, ये 5 प्रकार फल भोग होता है। पक्षी होता है मुख और नारियल का कोरा जल, लवंग, जायफल दे के, चंदन दे के इसको पानी खिलाते हैं और पान भी खिलाते हैं। जितना शब्द होता है कीर्तन का, भजन का, जो बाजा सब गाना होता है मंदिर का अंदर में कुछ चलेगा। सुस्त होने के बाद में रथ यात्रा होगा, द्वितीया तिथि में रथ का ऊपर जाएगा।
1: अणसर खत्म होने के बाद प्रभु आरोग्य लाभ करते हैं। साधारण मनुष्य के जीवन में जो घटित होता है वही श्री मंदिर में भी होता है। अणसर के बाद नेत्रोत्सव, उसके बाद रथ यात्रा। ताल ध्वज, देवदलन और नंदी घोष तीनों रथ सुशोभित होकर सिंह द्वार के सम्मुख प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। धाड़ी पहंडी में कब आएंगी चतुर्धा मूर्ति?
3: रथ खला से तीनों ही रथ सज धज करके तैयार करके लाए जाते हैं और श्री मंदिर के महाद्वार के ठीक सामने उत्तर दिशा की तरफ मोड़ करके खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ अपने रत्न वेदी का त्याग करके बाहर निकलते हैं और पहंडी विजय करते निश्वानंद सरस्वती महाराज अपने परिकरों के साथ तीनों ही रथों का वे अवलोकन करते हैं और रथों पर जाकर के

अपना आत्मनिवेदन चतुर्धा देव विग्रहों को देते हैं। उनके वापस आने के बाद सीधे श्री नाहर से पुरी के गजपति महाराज भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक तीनों ही रथों पर वे सोने के मुठ वाले झाड़ू से छेरा फोरा करते हैं। और इस तरह से भगवान जगन्नाथ जब जाते हैं अपने गुंडीचा घर में जाकर वहां 7 दिन तक विश्राम करते हैं, उसको गुंडीचा महोत्सव कहते हैं।

0: रथ यात्रा की समाप्ति बाहुड़ा यात्रा में होती है। यात्रा तो समाप्त हो जाती है पर प्रभु की अनंत लीला सिमंदर के रत्न सिंहासन में चलती रहती है। सिमंदर के शिखर पर पतित पावन की ध्वजा लहराती रहती है। उसी ध्वजा में सारे विश्वास का समन्वय होता है। ऐसा लगता है जैसे सबकी सांसें तरंगित हो रही है महोदधि में। और कवि इस दृश्य को शब्दबद्ध करते हुए भाव विभोर होके गाने लगते हैं, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल।
1: ये था लघु रूपक नित्य नीलाचल। मूल उड़िया आलेख तरुण कांति राउत का था, जिसका हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर रश्मि रेखा जिन्ना ने। वाचन और प्रस्तुति थी प्रज्ञा पारमिता साहू की, आकाशवाणी कटक से। भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक सुंदर पक्ष ये भी है कि यहाँ ऋतुएं केवल मौसम नहीं बदलती बल्कि अपने साथ स्वाद, रंग और उत्सव भी लेकर आती हैं। इसी स्वाद और विरासत की एक अनूठी झलक मिलती है दिल्ली में हर साल आयोजित आम महोत्सव में। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से लाई गई सैकड़ों किस्मों के आम न केवल प्रदर्शित किए जाते हैं बल्कि भारतीय बागवानी, कृषि अनुसंधान और फल संस्कृति की समृद्ध परंपरा का भी परिचय कराते हैं। पत्रिका में हमारी अगली प्रस्तुति है इसी आयोजन पर। ये आम कुछ खास हैं।
2: मैं डॉक्टर एके सिंह, एक्स प्रिंसिपल साइंटिस्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और मैंगो के विषय में आपको ये बताना चाहूंगा कि आम महोत्सव जो हमारा करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हम पूरे कंट्री से सभी जगहों से एक दूसरे को एक मिठास के रूप में ये परिचित करा सके। और चूंकि एक आम ऐसा फसल है जो कि ट्रॉपिकल से लेके सब ट्रॉपिकल रीजन माने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर जगह उगाया जाता है। केवल अंतर ये होता है कि हर जगह की जलवायु में प्रजाति विशेष का विशेष महत्व होता है और उस सूक्ष्म जलवायु में जो क्षेत्र विशेषता होता है उसमें आम का स्वाद अलग ही होता है। तो हमारा उद्देश्य होता है कि हर क्षेत्र के आम यहाँ पे आए और वो अपनी मिठास पूरी जनता के बीच में ले जाए और जनता सभी प्रजातियों के बारे में जान सके कि उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कौन सी प्रजातियाँ उगाई जाती है। इस बार देखिए वैसे तो आए थे 25 पार्टिसिपेंट ऐसे आए थे जो ग्रोवर्स थे और 6 पार्टिसिपेंट ऐसे आए थे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे और वो हमने कवर किया था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तो 5-6 स्टेट ही हमने पूरा कंप्लीट कवर किया।
3: डॉक्टर नितिन विक्रम सिंह प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। हमारे पास हमारे संस्थान से विगत 15 वर्षों में लगभग 10 संकर किस्में विकसित की गई है आम की। उषा सूर्या है, उषा सूर्या एक सिलेक्शन है, बाकी सारी संकर किस्में है। अरुणिमा है, आपका प्रतिभा है, श्रेष्ठ है, पीताम्बर है, लालिमा है, अभी रिसेंटली हमने पीपीठा भी रिलीज की है। मोस्टली अमरपाली और संकरण के संकरण से बना है पर कुछ किस्में जिसमें दशहरी और लाल सिंदरी भी सम्मिलित। जैसा आप सभी देखे ऐसे आम महोत्सव यहाँ चल रहा है और आम के नाम से देखे दिल्ली एक जगह में कितने लोग, कितनी भीड़ यहाँ उमड़ी। आम केवल एक फल नहीं है, आम एक इमोशनल कनेक्शन है लोग। जैसे आप यूपी की बात कर लें तो वहाँ दशहरी है, आप वेस्ट बंगाल की बात कर लें वहाँ मालदा बहुत फेमस है, बिहार में जरदालू है, किशनभोग है, आप साउथ में चले जाए, आंध्रा में चले जाए तो वहाँ बैगना पल्ली है, महाराष्ट्र में चले जाए तो अल्फांसो है, गुजरात में केसर है। ऐसे ही विभिन्न

0: लोगों को इसी तरह जोड़ती है।
1: मेरा नाम भरतराज सिंह यादव है, मैं एमपी कटिवाड़ा से आया हूँ। ऊर्जा ये साइज में सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा आम है और ये हमारे कटिवाड़ा में होता है, हमारे गांव में। और भी बहुत सारी वैरायटीज है लेकिन हमारे सीजन अभी खत्म हो चुका है तो हम लोग इतनी लेके आए।
2: मेरा नाम रामकिशोर मौर्या है, मैं मलिहाबाद लखनऊ से हूँ। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की प्रजातियों के आम पाए जाते हैं जिनको लोग जानते नहीं, इसलिए दिखाने के लिए कि लोग जाने पहचाने। हम अकेले 250 वैरायटी यहाँ आम की वैरायटी प्रस्तुत किए हैं, जिसमें खट्टे मीठे हैं और कुछ चूस कर खाने वाले हैं, कुछ काट के खाने वाले हैं, कुछ अचार की वैरायटियाँ विशेषकर, जो कि सभी प्रजातियों का अपना एक अनूठा स्वाद है, ताकि इन लोगों को मार्केट में जहाँ भी दिखे उनका स्वाद ले और खाए, तभी उसके बाद हमारे किसान की आमदनी बढ़ेगी। जो हमारी पुरानी हमारे पैतृक वैरायटियाँ है वो जीवित रहने अन्यथा विलुप्त हो जाएंगी।
3: मैं कदीम चंदन नर्सरी मलिहाबाद लखनऊ से आया हुआ हूँ। मेरा नाम शेख शादाब अली है। मेरा पुरखों से ये काम चला आ रहा है नर्सरी का, जो अलग अलग वैरायटी को डेवलपमेंट करते हैं, तैयार करते हैं, पौधे नए नए निकालते हैं। हमारे पास तमाम सी वैरायटी हैं, सुरखा बर्मा है, गुलाब खास है, हुसनारा है, दशहरी है, रामकेला है, चन्नत पसंद है, साजिद पसंद है, बनारसी है, रस कपूर है, तमाम सी वैरायटी। इतनी वैरायटी है कि यहाँ पे आपको हम गिनाते हुए थक जाएंगे। अदर की तमाम सी ऐसी वैरायटी है जो आप एक दूसरे को मिलाती है, उसकी मिठास इतनी मिठास होती है जो दिल को खुश कर देती है और दिलों में मोहब्बत पैदा कर देती है। जो भी आम खाते हैं और दिल से हमको दुआएं देके जाती
4: है। ये आम कुछ खास हैं। दिल्ली के वार्षिक आम महोत्सव के बहाने भारत की फल समृद्धि, कृषि परंपरा और विविधता की रोचक यात्रा अभी आपने सुनी। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। भारत की सांस्कृतिक धरोहर केवल परंपराओं से नहीं, उन कलाकारों से भी समृद्ध होती है जो अपनी साधना से लोक और शास्त्र के बीच एक सेतु बन जाते हैं और देह के परे जाकर समय पर अपने हस्ताक्षर अंकित कर देते हैं। दुख की बात यह है कि बीते कुछ समय में ऐसी ही दो विशिष्ट विभूतियों ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। सबसे पहले बात लोक गाथा की विश्व यात्री पद्म विभूषण तीजन बाई की। छत्तीसगढ़ की लोक गाथा पंडवानी को गांव की चौपाल से अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने वाली तीजन बाई ने अपने सशक्त गायन, प्रभावशाली अभिनय और अद्भुत कथन शैली से लोक कला को नई पहचान दिलाई। उन्होंने परंपरागत सीमाओं को तोड़ते हुए पंडवानी की कपालिक शैली को अपनाया और अपनी अनूठी प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय लोक नाट्य को विश्वव्यापी सम्मान दिलाया। उनके स्वरों में लोक जीवन की मिट्टी, महाभारत की कथा और भारतीय लोक संस्कृति की आत्मा एक साथ सुनाई देती है। सुनते हैं तीजन बाई से आकाशवाणी रायपुर के लिए रिकॉर्ड किया गया उनका एक पुराना साक्षात्कार।

माता ने अटारी हमारे ध्रुव वह के जन्म है। उस दिन हम अटारी में रहें, फिर हमला छोटपन में पकड़ के गनियारी में ले इस वहाँ हमार लालन पालन हुई। हमार माँ के नाम सुखबती और पिताजी के नाम छनुक लाल रही से। छह भाई बहनी रहे हैं, दो भाई चार बहनी। गरीब होने के नाता ऐसे गुजारा बहुत दिन ले चलत रही से। अब जब मैं बड़े लड़की हूँ तो संज्ञान हो गए तो लोग लैका ला छोड़ के चल देवे, भाई बहनी बन के पूरा देखभाल ला मैं करूँ। हमन छह भाई बहनी में कोनो पढ़े लिखे नहीं है। हमार दाई है बांस गीत गावे और हमार बाबू बांस बजावे। माँ के साथ गुनगुनाए के जो आदत पड़ीस तो ऐसे पड़ीस कि वो एकदम लट लग गए। लट लगे तो मैं कर्मा ददरिया सुआ पड़की बांस गीत गा लेते रहे हूँ। माँ गावे आर

बाटी भोरा भी अब्बड़ खेलत रहे हूँ, कबड्डी खेलत रहे हूँ, सुर खेलत रहे हूँ, खो खो खेलत रहे हूँ। तो रास्ता में मोर नाना के घर पड़त रही से, छोटे नाना के दनियारी गांव में, तो छोटे से नौकर झोपड़ा रही से, ते में भीतर में बैठ के पंडवानी के गायन गात रही से। बिजलाल पारधी मोर नाना जी के नाम, और वो ऐसे टेर लगाईस द्रौपदी बन के श्री कृष्ण जिला, तो वो आवाज सुने के बाद तो मोर रोम रोम एकदम खड़ा हो गई। अरे बाप रे, हाथ कतेक सुंदर एक आवाज, और कतेक बढ़िया भगवान ला पुकारत है। अब ये लोग मन हा बिजलाल नाम रही से, पर भगवान के नाम जपे ना तो ओला जपरी कहा भी। 11-13 के लगभग में रहे हूँ मैं, तो ये बच्चा कतेक सुंदर एक दिल में लगाओ है। तो सुने पर आते कि के वो छोटे से चटाई निकाली सब कथे में बैठ बेटा में बैठ। कतका कन सुने ऐसे कि कही तो एक हफ्ता के जतका कहानी सुनाए रही से नहीं, तेला 5-10 मिनट में खत्म कर दियो। तो नाना के आंखी में आंसू आ गए। उसी समय वो बोली कि बेटा मोर घर में हीरा है हे प्रभु, और मैं नहीं परखे सके हूँ इसे की। आज भी गुंजा थे तेर के आधार पे ही मैं टेर लगा था जब पंडवानी गाता हूँ तो।

से गंगा रूपी जो जनता जनार्दन के सम्मान हमला मिलते वो गदगद कर देते। ऐसे लग जाते कि हम धरती में नहीं कि स्वर्ग में हनका ऐसे लागते मोह मन लागते भाई। जब अच्छा कथा में हम डूब के उन मन लसनाथन और उन मन कोई कोई जगह रोए धोए की बात है वो मन रोना शुरू कर देते। हम उसका सम्मान पाके अपन आप ला हम पूरा उकरे ऊपर अर्पण कर देते। हमला कई कौन सी मिट्टी बना के हमला भेजी घर से हमला सब लोग ले सम्मान और प्यार मिला थे। ये में अब बड़ा आनंद आते आज भी वही है। अब आगे बस मालिक के हाथ।

0: मैं तो एक तो नारी हूँ है ना, और नारी के पात्र कहे माँ मोला कोई कष्ट नहीं पड़े और आनंद आते ज्यादा, पर जब भीम के रोल करता हूँ तब दो गुना आनंद आते। मैं अपन आप लग, मैं भीम समझे लग जाता हूँ कि मैं ही भीम हूँ, कि वो की जोशीला गदा पकड़ के रिंग था, तेकर कारण वही है कि मैं सचमुच में वो समय मैं भीम की रोल नहीं करके मैं खुद भीम हूँ, ऐसे अनुभव लागते। चाहते हो तो मैं पंडवानी ला आजकल के आधुनिक युग में आधुनिक रूप से काम कर सकत रहे हूँ, ओला ऐसी तेती बहका सकत रहे हूँ, वो मैं अच्छा अच्छा रोचक डाल सकत रहे हूँ, पर वो रोचक डाले में वो चीज नहीं दिखती, वो तो बर्बाद हो जाती ना, फिर नाम कहाँ होती। तो ये चीज बचाए के खातिर हम ला सब जने जुल मिल के अपन संस्कृति ला अच्छा सजा के रखे माँ, हम ला फायदा है, हमारे आने वाले पीढ़ी मन ला फायदा है, सिखाए में जो आनंद आते मैं अब कुछ मुला अच्छा नहीं लगे। कतको लेकर रोते रोवत रोवत गाते आ तो बोले भूर यारो कुछ चुचकारो ये गाड़ रही ते गाड़ रही बेटा बहुत सुंदर गाले था, बोले बढ़ावा भी दो, तो ये में बड़ा आनंद आते मैंने गुरु बन के काम करो तो आपके समय में मुला बहुत अच्छा लगते, लेकर मुला सिखा के दे दो।
1: तपी करत मैं धुरुला भेटे हूँ और नरसिंह ला भेटे हूँ खंभा माँ, भूर बिनत सौरी ला भेटे हूँ क्यों टल भेटे हूँ गंगा माँ।
2: और अब स्मरण करते हैं भारतीय रंगमंच की एक महान विभूति विजया मेहता का। विजया मेहता आधुनिक भारतीय रंगमंच की उन अग्रणी निर्देशकों में थी जिन्होंने मराठी रंगभूमि को नई सौंदर्य दृष्टि, प्रयोगशीलता और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने शास्त्रीय और आधुनिक रंग भाषा के बीच एक सशक्त सेतु बनाया। अभिनय, निर्देशन, रंग प्रशिक्षण और नाट्य चिंतन, हर क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उनके व्यक्तित्व और योगदान पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर।
3: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। एक छोटी सी बात मैं

0: कह दूं कि विजया जी के बाद जितनी भी अभिनेत्रियां मराठी स्टेज पे आई और बड़ी अच्छी अभिनेत्री, उन सब पे और जिन्होंने विजया जी के साथ काम किया था, उन सब पे विजया जी के अभिनय की छाप इतनी जबरदस्त थी कि ये कौन से स्कूल से आई है ये बताने की जरूरत नहीं रहती थी। मतलब उनके करियर के शुरुआत से आखिर तक उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ दी मराठी रंगमंच पर कि जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया और अलग अलग प्रायोगिक नाटक उन्होंने पेश करना शुरू किया। उन्होंने एक अपना प्रेक्षक वर्ग बनाया जो बढ़ते गया। और विजया जी के बारे में एक बात कहना बहुत जरूरी है और समझना, विजया जी ने उनकी शुरुआत प्रायोगिक रंगमंच से की, लेकिन वहां से वो मेन स्ट्रीम रंगमंच पर चली गई और मेन स्ट्रीम रंगमंच पर उन्होंने अभिनय भी किया और निर्देशन बहुत ज्यादा किया। सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
1: भारतीय लोक कला और रंगमंच की ये दोनों विलक्षण साधिकाएं अपने अपने क्षेत्र में सृजन, समर्पण और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता की ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। भारतीय संस्कृति की शक्ति उसकी निरंतरता में है। प्रकृति के संरक्षण से लेकर लोक आस्था तक, कृषि परंपरा से लेकर सृजनशील कलाकारों की विरासत तक, हर धारा एक ही सांस्कृतिक प्रवाह का विस्तार है। इसी विश्वास के साथ आज की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती यहीं संपन्न होती है। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी है। नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर रामावरपू माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वीणा रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय डॉक्टर रामावरपू माधुरी देवी।
0: डॉक्टर रामावरपू शरत बाबू और श्रीमती विजयलक्ष्मी की बेटी डॉक्टर आर माधुरी देवी ने वीणा वादन की शिक्षा अपनी माताजी वीणा गुरु श्रीमती रामावरपू विजयलक्ष्मी के पास प्राप्त की। आपने संगीत की बारीकियां सुप्रसिद्ध वीणा विद्वान डॉक्टर ई मणि शंकर शास्त्री से सीखी। मनोधर्म का पालन करते हुए वीणा पर लयबद्ध तरीके से रस और भाव का प्रदर्शन डॉक्टर रामावरपू माधुरी देवी की विशिष्टता रही है। वीणा वादन में आकाशवाणी द्वारा ए ग्रेड प्राप्त डॉक्टर आर माधुरी देवी ने कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आपको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है।
1: बॉर्न टू डॉक्टर रामावरपू शरद बाबू।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है कापी राग में वनमाली या जीआर स्वामी की रचना जानकी रमणा, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: You have been listening to a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi in tonight's national program of music. She is accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the Mridangam and Sri Mavaduru Surya Prasad on the Ghatam. Continuing her presentation, Dr. Madhuri Devi will now present Janaki Ramana, a composition of Vanamaliya J.R. Swami in Kapi Ragam Aditalam.

0: कन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री महादासु येड़ुकोंडलु ने और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद ने। डॉक्टर रामवर्पु माधुरी देवी आज के कार्यक्रम का समापन बिहार राग में डॉक्टर मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्णाकृत तिल्लाना से कर रही हैं, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Taniyavartanam on the Mridangam by Sri Mahadasu Erukondalu and on the Ghatam by Sri Mavuduru Surya Prasad. Dr. Ramavarapu Madhuri Devi concludes her performance this evening with a Tillana of Dr. Mangalampalli Balamurali Krishna. It is in Behag Ragam Aditalam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी तक आप डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्यप्रसाद। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही संपन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi. She was accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the mridangam and Sri Mavaduru Suryaprasad on the ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 11:10 पर समय होगा आपकी फरमाइश कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी विशेष संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के

0: चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए उस आरोप की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फु कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम में से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले जा रहे 5 T20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 193 रन बना लिए हैं। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic two-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Mr. Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations. Referring to the 40-year gap since the last visit by an Indian Prime Minister, he said the next visit would not take so long. Defence Minister Rajnath Singh today said that India is building a strong, self-reliant and future-ready defence force by strengthening both conventional defence capabilities and advanced technologies. Mr. Rajnath Singh said this while addressing the commissioning ceremony of the INS Mahindragiri, the 6th Project 17A Indigenous Stealth Frigate, into the Eastern Fleet at Visakhapatnam. He said the commissioning marks another milestone in strengthening India's maritime power and indigenous defence capability. 15 Indian tourists were killed after a boat capsized near Vietnam's Phu Quoc Island today. The Embassy of India in Vietnam confirmed that the deceased include 13 men and 2 women. According to the embassy, 10 of the deceased were from Tamil Nadu, 3 from Andhra Pradesh and 2 from Kerala. The boat was carrying 36 people, including 32 Indian tourists,

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं विराम लेती है। कल प्रातः 5:51 पर हमारे कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।